और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो। और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

0: शान।
1: आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: मुदहम्मतान,
0: दोनों खूब गहरे सब्ज़।
1: फबिया

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें नेक सीरत खूबसूरत औरतें हैं।

रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जो मातूब नहीं हुए, जो भटके हुए नहीं है। हमारे रब, हमसे भूल चूक में जो कसूर हो जाएं,

لله الأسماء الحسنى فادعوه بها. صدق الله العظيم.

ادعوا الرحمن أيما تدعوه فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

0: صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة.
1: نسأل

0: अपनी दूसरी इनिंग्स का खेल कल के स्कोर 52 रन 2 खिलाड़ी आउट पर आज फिर शुरू करेगा। अब तक का स्कोर है पाकिस्तान 133 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर 52 रन, इंग्लैंड 453 रन। इंग्लैंड को 3 सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल है। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम बल्तिस्तान और महका पहाड़ी इलाकों में मतला जुजवी तौर पर अबरालूद रहने और बाज मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज बड़े शहरों का दर्जा हरारत, इस्लामाबाद और कराची 26 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 29, पिशावर 28, क्वेटा 22, गिलगित 16, मरी 15 और मुजफ्फराबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर के लिए महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मतला जुजवी तौर पर अबरालूद और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, शुपियां और अनंतनाग में 18 डिग्री सेंटीग्रेड, पुलवामा और बारामूला 19, जम्मू 27 और लेह 8 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज़ियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिठी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, अबटाबाद एंड कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबाउट एफएम 1111।

क्योंकि किन्न ठीक ठाक है, मन है, फिट है, मजे में है, खूब इंजॉय करें अपनी जिंदगी को। इट्स 8:04 अब से लेके ठीक काफी देर तक मेरा आपका साथ रहने वाला है। सो खूब सारी मस्तियां, लॉट्स ऑफ फन ओनली ऑन एफएम 101। टुडे इज फ्राइडे 11th of September 2026। आज का दिन है जुम्मे का, और जुम्मे के ब्लेस्ड डे में आप सबको कहेंगे खुशामदीद अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।

तो जनाब कैसी गुजरी आपकी जिंदगानी? डेफिनेटली बड़ा अच्छा चल रहा होगा सारा सिस्टम, और अगर नहीं भी चल रहा तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। कभी कभार कुछ आजमाइशें, कुछ चीजें ऐसी हुआ करती हैं जो कि ना चाहते हुए भी जिंदगी में आ जाती हैं। उनको लेकर चलना और मैनेज करना ही जिंदगी है। सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना तो टेंशन हो जाती है। सब अच्छा चल रहा है सकून किसे पसंद नहीं जी जिंदगी में पसंद है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर तरह का एक जो है वो सिलसिला रखा है जिंदगी में। अच्छा वक्त भी आता है, थोड़ा सा बुरा वक्त भी आता है, मुनासिब भी होता है, कुछ जो है आजमाइशें भी होती हैं और कुछ बहुत पीक पे भी हम जाते हैं। तो ये सारी जो चीजें इन सबको मिला के ही लाइफ कहा जाता है, जिंदगी कहा जाता है। ये सब जिंदगी का हिस्सा है। खूबसूरत से आवाज के साथ आवाज है जी मेरी नूर जहां और मेहदी हसन साहब की, एंड द ट्रैक इज मुझसे तुझको चाहने वाला। मैंने कहा क्यों ना आज थोड़ा सा ओल्डी गोल्डी नंबर से इसको प्रोग्राम में शामिल किया जाए, स्टार्ट किया जाए, आगाज किया जाए। सो हियर वी गो लेडीज एंड जेंटलमैन, रहिएगा हमारे साथ साथ। आप सुन रहे हैं FM 101, मुझे कहते हैं साहिल खान।

This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: उठा लो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This is FM 101.
1: अच्छा फील्ड का जो काम होता है ये थोड़ा सा टफ होता है जिसमें

0: ਗੱਲ ਸੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ
1: I love FM 101.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: This is FM 101।
2: मुत्तहिद पाकिस्तान, मजबूत पाकिस्तान। हमारा वतन पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद है, जहां मुख्तलिफ रंगो नसल, जबान, मजहब और समाजी अकदार के हामिल अफराद आबाद हैं। यहां मुसलमान अक्सरियत के साथ अकलियती बराद मजबूत पाकिस्तान। हमारा वतन पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ते की मानिंद है, जहां मुख्तलिफ रंगो नसल, जबान, मजहब और समाजी अकदार के हामिल

0: बाकी चीजें क्या होंगी, तो इसको किस तरह हम देखते हैं?
1: आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, जो आईन के अंदर जो आपने अपने बड़े मकासद तय किए हैं उनको हासिल करने के लिए आपको अलग से कानून साजी करनी है। अब क्या वो कानून साजी हुई है या नहीं, और अगर हुई है तो क्या वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है, क्या उसके ऊपर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उस कानून साजी के ऊपर अमल करने के लिए आपने उसके लिए रिसोर्सेज भी रखे हैं या नहीं रखे, ये बिल्कुल जो है वो बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं जो कि करने चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस हवाले से बात करूं कि मजहबी अकलियतों के आप बात करूं, तो आपने पर्सनल लॉज का जिक्र किया, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बहुत पुराना जैसे आपने कहा, इसी तरीके से डाइवोर्स एक्ट बहुत, मुझे याद है 2014 में मैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में लीगल एडवाइज़र था, तो हमने उस वक़्त एक बिल ड्राफ्ट किया था क्रिश्चियन मैरिज को अमेंड करने के लिए और उसको अप टू डेट करने के लिए। 4-5 साल तो मैं वहाँ पे जो है वो रहा लीगल एडवाइज़र, और हमने बेशुमार कंसल्टेशंस की पाकिस्तान भर में इधर, लेकिन ये कि पर्सनल लॉज को अमेंड करना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें विदन एक मज़हब के अंदर भी जो तबकाती तकसीम है, जो मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस हैं, उनका जो मज़हब के बारे में जो नज़र है वो बहुत ही मुख्तलिफ है। जैसे मुसलमानों के भी अगर आप देखें तो हमारे बड़े उसमें वो जो मुख्तलिफ फ़िरके हैं मुख्तलिफ अंदाज से उसको इंटरप्रेट करते हैं एक ही, तो उसको ये बहुत रियासत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो सबको एक ही जगह पे कैसे आप इकट्ठा करें। वेरी इंटरेस्टिंगली कामरान माइकल खुद माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते थे, क्रिश्चियन थे, और वो मिनिस्ट्री ऑफ वो मिनिस्टर थे फॉर ह्यूमन राइट्स, और उन्होंने खुद अपनी सरबराही में मुख्तलिफ जो है वो कंसल्टेशंस की, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन वो अपने दौर के अंदर क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को अमेंड करने में जो है वो नाकाम रहे। वजह सिर्फ ये कि जो मुख्तलिफ उसके अंदर डिनोमिनेशन हैं उनका इख्तलाफ था। तो एक तो ये कि ये इन इट सेल्फ बहुत ही चैलेंजिंग काम है।
0: बिल्कुल,
1: जो अंग्रेज ने कानून बनाया था तो उसने आपसे पूछ के तो नहीं बनाया था
0: जी।
1: उसके तो जो उनके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बना के दिया और गवर्नमेंट ने, अंग्रेज गवर्नमेंट ने उसको लागू कर दिया, लेकिन अब जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सबसे पूछ के आप कानून साजी करेंगे, आपने उसको असम्बली में भी लेके जाना है, उसके ऊपर बहस भी करनी है, उसके बाद उसको कमेटीज़ में भी लेके जाना है, पब्लिक ने अपनी ओपिनियन भी देनी है, तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग और मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि सूरत हाल इस लिहाज से हौसला अफजा है कि कुछ ना कुछ जो है वो होता रहा। माइनॉरिटीज़ कमीशन का लॉ अभी रिसेंटली पास हुआ। अब आपके पास देखो माइनॉरिटीज़ के राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया जो सिर्फ यही देखेगा कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स जो हैं, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ हैं, वो पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। तो लेकिन अच्छा, अब ये लॉ अभी पास हुआ है,
0: बिल्कुल
1: कैबिनेट डिवीजन का 1990 का एक नोटिफिकेशन है जिसमें जो है वो ये एक कमीशन बना था जो कैबिनेट के नोटिफिकेशन, लॉ नहीं था,
0: लॉ
1: नहीं था, लेकिन इस जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है इसको पूरा करने के लिए कैबिनेट लेवल के ऊपर जो है वो सोचा गया कि कुछ तो होना चाहिए। तो उस वक्त एक जो है वो नोटिफिकेशन हुआ और एक माइनॉरिटीज़ कमीशन उस नोटिफिकेशन के तहत जो है वो चलता रहा, और वो किसी जाहिर है कि एक लॉ के तहत एक बिल्कुल ऑटोनमस बॉडी तो वो नहीं थी, वो एक आप कह लें कि एक मिनिस्ट्री का एक पार्ट था, लेकिन बहरहाल उसके ऊपर भी जो है वो आप कह लें कि किसी ना किसी तरीके से ये काम चलता रहा। सेम एज चाइल्ड राइट्स, अब कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन है, ऑटोनमस बॉडी है, खुद से फैसला कर सकते हैं, बॉडी कॉरपोरेट है। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब ये है कि वो किसी के मातहत नहीं है, वो उसका जो बोर्ड होगा वो फैसले करेगा,
0: ठीक है,
1: इवन वो गवर्नमेंट को भी जो है वो पूछ सकते हैं। तो सेम जो कमीशन था मतलब माइनॉरिटीज़ का भी था। तो मैं ये समझता हूँ कि प्रोग्रेस शायद सुस्त है, बहुत सुस्त है, लेकिन है ज़रूर।
0: अच्छा।
1: मतलब कमीशन का बन जाना, ये कानून साजी हो जाना कि एक ऑटोनमस बॉडी जिसका 12 उसके मेंबर्स बोर्ड है, जो कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर ही सारे के सारे मेंबर्स माइनॉरिटीज़ से हैं, वो माइनॉरिटीज़ को जो है ना वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो इसका मतलब ये है कि एक ऑटोनमस बोर्ड बेस्ड ऑन जो रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का, और वो इवन गवर्नमेंट को भी रास्ता दिखाएंगे कि जो अकलीतें हैं उनके हकूक़ की कैसे तहफ़्फ़ुज़ की जाए.
0: बिल्कुल ठीक है. थोड़ा सा अभी जैसे आपने बात की, थोड़ा सा हम और इस तरफ आएंगे कि आपने एक बहुत अच्छी तरह से बहस को शुरू किया कि आईन इट्सेल्फ एक आइडियल स्टेट, उसके क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नुकात होने चाहिए वो बयान करता है, और उसको डोमेस्टिसाइज़ करने के लिए हम लेजिस्लेशंस करते हैं, हमारी असम्बलीज लेजिस्लेशंस करती हैं, और उस लेजिस्लेशंस में आपके ख्याल के मुताबिक पर्सनल लॉज पे काम करना किसी भी बरादरी की, चाहे वो मुस्लिम बरादरी हो या क्रिश्चियन बरादरी हो या हिंदू बरादरी हो, उनके पर्सनल लॉज पे काम करना मुश्किल होता है, क्योंकि ना सिर्फ मुख्तलिफ फ़िरके होते हैं हर मज़हब में और तबकात होते हैं जिनके मफादात मुख्तलिफ होते हैं, तो इसलिए एक कोई कानून साजी करना, क्योंकि वो हर एक की ज़ाती ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है, तो वो मुश्किल होता है. लेकिन अब मैं इसी के साथ ही मैं आपसे अगला सवाल करूंगी कि और कौन कौन से कमीशन हैं जो कि अकलियतों को सपोर्ट कर सकते हैं.
1: पाकिस्तान में पिछले 10-15 सालों में जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी हफाजत के लिए और उनके पूरे तौर पे उनको इन्फोर्स करने के लिए, और ख़ासतर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो ओवरऑल जो इंसानी हकूक हैं उनसे मुख्तलिफ नहीं हैं, बिल्कुल उनसे सिमिलर हैं. तो उनको इन्फोर्स करने के लिए पिछले 10-15 साल में पाकिस्तान ने बहुत काम किया है.
0: ठीक है,
1: इसमें एक पूरी हमारी हिस्ट्री है. सबसे पहले जो है 2012 में जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो बना, 2012 में कानून साजी हुई, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स बना. अब नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो एक ऐसी स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक ऑटोनमस बॉडी है, जो कि किसी, ये वाहिद ऑटोनमस बॉडी है कि जो किसी भी केस के अंदर पर जाके पार्टी बन सकता है.
0: ठीक है,
1: अगर आपका ये इतना ताकतवर इदारा है कि वो पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन को पूछ सकता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन का अगर कहीं पे भी कोई इशू आता है तो ये पूछ सकता है. अब जाहिर है कि
0: कतई नजर के वो किस से ताल्लुक रखते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल कोई इससे नहीं. तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है उससे जो अकलियतें हैं वो भी उसी तरीके से मुस्तफीद हो सकती हैं जिस तरीके से कोई भी और मजहबी अक्सरियत है वो उससे फ़ायदा उठाती है. ये कमीशन बना, बहुत मेरा ख्याल है इफेक्टिवली चला. इवन ये कि इस कमीशन के चेयरपर्सन जो है, जो लास्ट चेयरपर्सन थी वो बजाते खुद खातून थी, और उस पर प्रीवियसली ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी भी रहीं. उससे पहले एक वो जज जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सर्व कर चुके थे, फौत हो गए वो. मतलब ये कि बड़े सीनियर लेवल के ऊपर जो है वो इस कमीशन के मेंबर्स और लोग जो है वो आए और इसको लेके चलते रहे, और स्टैट्यूटरी वो इंडिपेंडेंट कमीशन है. अब ये सफ़र चला, फिर आगे नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन बना, जो कि खासकर ख्वातीन के हकूक के लिए, वो भी रिगार्डलेस इसके कि वो ख्वातीन, ऐसा नहीं कि सिर्फ अक्सरियत जो मजहबी अक्सरियत की ख्वातीन है उनके लिए था, बल्कि सबके लिए, और वो
0: तमाम
1: ख्वातीन के लिए. और वो उसके जो बुनियादी काम है उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि वो रियासत को एडवाइस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं कि भाई इस तबके की ख्वातीन के ये राइट्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं, या इन राइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए रियासत को क्या करना चाहिए, कौन सा कानून बनाना चाहिए. आपने चाइल्ड मैरिज की बात की थी, तो इसके ऊपर भी बुनियादी तौर पे इस लॉ की ज़रूरत है, जो इस लॉ को, जो 1929 का लॉ, उसको अपडेट करने की ज़रूरत है. तो ये रास्ता इसी कमीशन ने जो है वो हुकूमतों को, सूबाई और जो वफाकी हुकूमत है और सूबाई हुकूमतों को, इसी कमीशन ने ये रास्ता दिखाया था. तो बिल्कुल पावरफुल कमीशन मौजूद है. उसके बाद 2017 में जो है वो नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड जो है वो बना. इत्तफाक से मुझे वो कानून लिखने का मौका मिला, और वो उसके बाद उस पर भी 2018 में कमीशन बन गया, उसका सेकंड टेन्योर है. और फिर लेटेस्ट जो है वो ये कि माइनॉरिटीज़ का अपना इंडिपेंडेंट कमीशन. तो अगर आप देखें तो ये एक सफ़र है कि 2012 में दो लॉज आए, جو ایک اس میں نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس جو اوور آرچنگ ہیومن رائٹس کو دیکھ رہا ہے,
0: جی.
1: پھر اسی سال ہی جو ہے وہ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن, جو کہ اس کو افیکٹو ہونے میں ٹائم لگا. وہ کمیشن پہلا تھوڑا بعد میں آئی تھنک کہ 2015 میں فارم ہوا, پھر 2018 کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ کمیشن بن گیا, بچوں کا کمیشن بن گیا. پھر 2025 کے اندر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اسپیسیفائڈ, مطلب صرف وہ کیبنٹ کے نوٹیفیکیشن سے آگے چل کے باقاعدہ ایک لاء پاس ہوا جس میں 12 جو ہے وہ لوگوں کا کمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا, جو گورنمنٹ کے کام پہ نظر بھی رکھے گا اور گورنمنٹ کو ایڈوائس بھی کرے گا کہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کی کیسے تحفظ کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے صوبوں نے اپنے طور پہ, یہ تو ہم وفاق کی بات کر رہے ہیں, تو صوبوں نے اپنے طور پہ بھی
0: بالکل, اچھا یہ بہت اہم سوال ہے, ایک بہت اہم یہ جہت ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد, آئین میں 18ویں ترمیم کے بعد جو قانون سازی ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا پروونس ہے. سو اگر آپ تھوڑا سا اس پہ بتا سکے کہ نیشنل لیول پہ تو آپ نے بتایا کہ بہت سارے کمیشنز بنے ہیں, لیکن پروونشل لیول پر بھی کیا قوانین جو ہیں وہ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے ہیں؟ جیسے سندھ تو بہت پروگریسولی کر رہا ہے اس کی طرف.
1: سندھ نے سندھ کے اندر, سندھ شاید پہلا اس میں صوبہ تھا اس حوالے سے کہ جس نے مائنورٹیز کے پرسپیکٹیو سے پہلے سندھ ہیومن رائٹس کمیشن بنایا. مطلب ایک تو فیڈرل ہیومن رائٹس کمیشن تھا, سندھ نے اپنا ہیومن رائٹس کمیشن بھی بنایا. اچھا, اس کے علاوہ جیسے ہم نے خواتین کے کمیشن کی بات کی تو سارے صوبوں میں موجود ہے, لیجسلیشن موجود ہے. چائلڈ رائٹس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو چائلڈ رائٹس کمیشن, ان کے نام مختلف ہیں, پنجاب چائلڈ کمیشن ویلفیئر بیورو کہتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے, بلوچستان کے اندر بھی جو ہے وہ, اور آئی سی ٹی کا قانون جو ہے وہ اسلام آباد کیپیٹل ٹیریٹری کا آلموسٹ سملر ہے. ایون یہ کہ اے جے کے اور جی بی کے اندر بھی اس وقت سارے بچوں کے حقوق کے حوالے سے سارے صوبوں میں جو ہے نا کہ وہ قوانین جو ہے وہ موجود ہیں. تو یہ مطلب انسانی حقوق کے حوالے سے, یہ جن کو ہم وہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں کولیکٹیولی, وہ چاہے وہ بچوں کے ہیں یا خواتین کے ہیں یا اقلیتوں کے حوالے سے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے کہ پچھلے جو 10-15 سال کا پاکستان کا سفر ہے وہ بڑا اچھا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ کمیشن بنائے ہیں, اب یہ کتنا افیکٹیولی اپنا کام کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے ان محروم طبقوں کو جن کے لیے یہ بنائے گئے تھے؟ یہ
0: چلیں پھر اس کا جواب دیجیے, آپ بتائیے آپ کی نظر میں کیا ہے.
1: دیکھیں یہ ان ایون سفر ہے,
0: ٹھیک,
1: اگر آپ اس کی بات کریں تو میرے خیال میں قانون بنانا اور قانون کے اوپر پورے طور پہ عمل کرنا, اس کے درمیان میں ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے. میں اس پہ بھی حوصلہ افزا بات کروں گا, بجائے یہ کہنے کے کہ یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا, اس کمیشن نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا, یہ کہنے کے بجائے قانون بنایا تو یہ آپ کی سوچ ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے. کے لیے آپ کو انسان کیپیسٹی چاہیے, آپ کو اس کے لیے پیسے چاہیے آپ کو, اور پھر یہ کہ جب کوئی بھی نیا ادارہ بنتا ہے تو وہ شاید اتنا افیکٹولی کام نہیں کر سکتا. دیکھیں پرانی یونیورسٹیاں ہوتی ہیں, سال لکھا ہوتا ہے. ایون یہ کہ عام کوئی جیولرز کی دکان ہے تو وہ بھی اوپر سال لکھتے ہیں کہ 1870 سے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس اتنا پرانا ایکسپیرینس موجود ہے. ہم یونیورسٹیوں کو دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی اتنی پرانی بنی, مطلب یہ کہ یو پراؤڈلی ٹاک اباؤٹ یور ہسٹری. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے یہ بڑے ہوں گے, ابھی یہ بچہ انسٹیٹیوشنز ہیں, میں ان کو اس طریقے سے کہوں گا کہ دے آر ان فینسی. جو ان کے اپنے اپنے, میں کسی ایک کی بات نہیں کر رہا, کلیکٹیولی بات کر رہا ہوں کہ ابھی ان کے پاس ریسورس کنسٹرینٹ بھی ہوگی, ہیومن کنسٹرینٹ بھی ہوگی, ان کے پاس شاید جو ان کو اپنے اختیار پہ عمل کرنے کے لیے وہ سارے جو آپ کہہ لیں کہ عوامل جن کی ضرورت ہے شاید وہ بھی ان کے پاس نہ ہوں, لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج وہ انسٹیٹیوشنز موجود ہیں آپ کے پاس موجود ہیں. ایسا بھی ہے کہ ایک خاتون امریکہ سے آئی, ایئرپورٹ سے اس کو اغوا کر لیا گیا, وہ مرڈر ہو گئی, اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا وہ کدھر ہے, کوئی ایف آئی آر نہیں رجسٹر ہو رہی تھی. نیشنل ٹرسٹ آف ویمن نے اس کا فالو اپ کیا, وہ ایف آئی آر بھی رجسٹر ہوئی, پتہ بھی چلا, الٹیمیٹلی جو ہے وہ کیس رجسٹر ہوا, انویسٹیگیشن ہوئی, ٹرائل ہوا, اس میں سزا بھی ہو گئی, اور اس کے اندر وہ کلپریٹ جو کہ بالکل ایک اندھا قتل تھا اور ایک کمیشن نے فالو کیا. इसी तरीके से मैं बाकी कमीशन्स की भी अगर बात करूं तो बहुत सारे केसेस, अगर मैं मतलब उनका हवाला नहीं देना चाहता, लेकिन हमारे पास इस वक्त भी मुख्तलिफ केसेस जो है ना कि जो अंडर ट्रायल हैं, चल रहे हैं, और यही इंस्टीट्यूशन जो है ना, एक ऐसा केस यहीं इस्लामाबाद में चल रहा है, एक बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ था, वो बच्ची पंजाब का जो ब्यूरो है वहाँ वो प्रोटेक्शन के लिए मौजूद है, और जो

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

FM 101, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
2: दिस इज FM 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आइए सामेईन, अब समाअत फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
5: आज हम बयान करेंगे, पारा है दूसरा, सूरह मुबारक है सूरह बकरा, आयत मुबारक है 172 and 173। अऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलु मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरु लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहम अल-खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिग़ैरिल्लाह फमन इत्तुरा वग़ैर बाग़िन वला आदिन फला इस्मा अलैह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। सदाकल्लाहु अज़ीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, ईमान वालों से मुखातिब है अल्लाह ताला, कुलु के खाओ, मिन तय्यिबात हमारी तरफ से जो दी हुई चीज है पाक, तय्यिबात मैंने पाक चीज खाओ, मा रज़क़नाकुम जो हमने तुमको दिया रिज़क, वश्कुरु लिल्लाह और शुक्र करो। इससे पता लगा कि अल्लाह ताला की नियमतों पर शुक्र वाजिब है। लिल्लाह अल्लाह, इन कुंतुम इय्याहु अगर तुम हो, इय्याहु ताबुदून उसी की बंदगी करते, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत इन्नमा बेशक वो दरहकीकत हराम किया गया, क्या अलैक मैता था तुम पर मुर्दार, वद्दमा और खून, वलामल खिंजीर और सूअर का गोश्त। सारा अल्लाह ताला बयान कर रहा है कि उसके क्या क्या चीज है हराम तुम पे। वो मा उहिल्ला वा मैंने और मा मैंने जिसे उहिल्ला भी बगैर अल्लाह, अल्लाह के बगैर जिसका नाम लिया गया है वो हराम है वो चीज जिसके ऊपर। फमाने तुर्रा बस जो मजबूर हो जाए, जैसे दियारे गैर में किसी मुल्क में बंदा फंस जाता है जंगल में इधर उधर, वगैरह भाग तो सरकशी ना करते हुए, वाला आदम और ना हद से बढ़ते हुए, फला इस्माल है तो उस पर हरज नहीं कोई, इन्ला गफूर रहीम बेशक अल्लाह ताला बाद में फिर माफ भी कर देता है, अल्लाह गफूर रहीम है इसलिए वो माफ कर सकता है। इन्नमा हर्रमा, इन्नमा हर्रमा, हर्रमा से मुराद वो जानवर जिस पर ज़िबा करते हुए गैर अल्लाह का, गैर अल्लाह का नाम लेना, जो हलाल जानवर बगैर ज़िबा किए मर जाए, इसको तरीके शरा के खिलाफ मारा गया, मसलन गला घोट कर या लाठी या पत्थर ढीले या उन्हें किसी तरह से भी उसे हलाक किया गया हो, किसी तरह से भी वो गिर कर मर गया हो, ज़िबा ना किया गया, या किसी जानवर ने सींग से मारा हो या किसी दरिंदे ने हलाक किया हो, उसको मुर्दार कहते हैं और उसी के हुक्म में दाखिल है। जिंदा जानवर का वो आदमी जो काट लिया गया है, मसलन मुर्दार जानवर का खाना हराम है, मगर उसका पक्का हुआ चमड़ा काम में लाना और उसके बाल सींग हड्डी फटे सुम से फायदा उठाना जायज है और दाखिल है। जिंदा जानवर का वो आदमी जो काट लिया गया है, मसलन मुर्दार जानवर का खाना हराम है, मगर उसका पक्का हुआ चमड़ा काम में लाना और उसके बाल

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर
1: बिग रेडियो बिग स्टाइल FM 101

0: next. 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। बाबा कौम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की आज 78वीं बरसी मनाई जा रही है। वजीर आजम ने फी एकड़ जरई पैदावार में इजाफे के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान शराकत दारी पर जोर दिया है। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने उड़ान पाकिस्तान इकदाम के तहत 21 अरब रुपए से जायद मालियत के मंसूबों की मंजूरी दी है। और अफगानिस्तान में नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट, फ्रीडम फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट ने जुलाई से इस माह की यकम तारीख तक तालिबान के खिलाफ 73 हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।
1: I love FM 101.
2: And now you are tuned into
3: FM 101.
4: FM 101.

अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 101.2 पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आपके अपने होस्ट, अपने दोस्त आरजे अली रजा की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101 अपने आरजे अली रजा के साथ साथ। जुमे की ये खूबसूरती शाम है, 5:04 हो गए हैं, 11 सितंबर 2026। आपको मेरा साथ रहने वाला है ठीक 7 बजे तक, 5 से 7 तक हम और आप साथ साथ होंगे। कहीं भी सुन रहे हैं, बड़े गौर से सुन रहे हैं, काम करते हुए सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो सुनते रहे FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिंदास होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपने अपनों के साथ बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से लम्हात गुजार रहे होंगे। और स्टूडियोज़ में हम आ चुके हैं, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। एक स्टूडियो में एक बंदा है यार, लेकिन मुझे नज़र नहीं आ रहा, कैसे हो सकता है यार, हो जाता है, ऐसे भी होता है। राइट वे जी, बातें करेंगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे, चिट चैट करेंगे। एक प्रोग्राम में हमेशा की तरह एक मौजू हमारा रहता है, उस मौजू पे भी बात करेंगे, आपकी राय जानेंगे, एक सवाल आपके दरमियान फेंक देंगे बस, और वो सवाल घूमता रहेगा 2 घंटे। लाहौर के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम बहुत ही जबरदस्त नहीं है। वेल, लास्ट शो जब मैं करने आया था, मौसम बहुत ही जबरदस्त था, बारिश थी और बड़ा आला मौसम था। अब जो है गर्मी है, लेकिन वो जो गर्मी का एक खुमार होता है ना, कड़कदार गर्मी, वो ख़त्म होने जा रही है। और जो देसी महीना है, जो 15 को शुरू होने वाला है, आई थिंक अस्सू का महीना है, वो महीना शुरू होने जा रहा है। और उसकी जो सुबह होती है ना, सुबह के टाइम ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, और ये आगाज़ होता है इस बात का कि मौसम बदलने वाला है। और सुबह टाइम भी ठंड सी भी लगती है, फिर बंदा फिर रजाइयाँ लभदा है, कंबल लभदा है। राइट वे जी, आप मुझ तक पहुंचेंगे, मुझ तक पहुंचने के 3-4 तरीके हैं, और तरीके बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101 है लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम पैगाम लिखिएगा, भेज दीजिएगा 4471 पर। और आप हमें कॉल कर सकते हैं 04-2111-0101, आपका अपना जाना पहचाना नंबर। facebook.com/fm101 लाहौर के पेज पर पोस्ट अपलोड हो चुकी है, और जो पोस्ट है वो हाजिर हिदमत है। आइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। प्रोग्राम है जी हमारा फन ऑन 101, हम करने हैं बहुत सारा फन, चाहे किसी को बर्दाश्त होवे ना होवे। अच्छा जी, गाना चलाते हैं जी, गाना यस, ये वाला गाना चलाते हैं। पहला ट्रैक है दिल लौना नी तेरे बिना, मैं कर ले फैसला, एहो जे फैसले मैं कर लेना होना। राइट जी, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक, फिर मैं जाएगा सुंदरी FM 101 स्टेशन ऑफ द नेशन।

ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੋਹਣਿਆ, ਦੂਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਜੱਚਦਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਮਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੱਚਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋਤੇ ਹੈ ਜੋ ਏਕ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੱਚਦੇ ਹੈ। ਹਮ ਉਨਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲ, ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੁਛ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸਾਥ ਦੇਖ ਕਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਤੇ, ਵੋ ਉਨਕੇ ਦਿਲੋ ਦਿਮਾਗ ਮੇਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। एनीवेज जी, कभी आपने सोचा है कि हम बड़े हो गए हैं, और वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या दिन थे जब हम जिनते नहीं। मैं आज के टॉपिक पे बेसिकली आना चाह रहा था कि कभी आपने सोचा है कि हम बड़े हो गए हैं, और वो भी क्या दिन थे जब खुश होने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती थी। एक हम बचपन में एक नई पेंसिल ले लेते तो हमें बड़ी खुशी मिलती थी, और बारिश, जब बचपन की बारिश जो होती थी वो बारिश को देख के हम बड़े खुश होते थे, एक्साइटेड हो जाते थे, नहाने लग जाते थे, खेलने लग जाते थे, और जब अम्मी पसंद का खाना बना लिया करती थी तो तब भी हम बहुत खुशी होते थे, ये खुशी थी हमारी। और जब दोस्त बुलाने आता था, जब दोस्त की आवाज़ आती थी अली आ जाओ वेल हमने तो एक सीटी रखी हुई थी, और वो सीटी भी ऐसी थी कि बस वो हमें ही पता था कि जनाब ये कॉल वो वाली है कि आ जाओ, बस हम आ जाओ, पाइन पंगा पै गया, आ जाओ जल्दी ना। ये सारी खुशियाँ होती थी हमारी, हम खुश हुआ करते थे इन सारी चीज़ों से, नई नई चीज़ें होनी तो हमने खुश होना। और आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, खुशी के लिए हमें सैलरी चाहिए, वीकेंड चाहिए, वेकेशन चाहिए, और अच्छा मूड भी चाहिए, और फिर कभी कभी खुशी नहीं मिलती। तो आज हम बात करने जा रहे हैं, बेसिकली आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करने जा रहे हैं कि क्या हमारे अंदर का बच्चा अभी भी ज़िंदा है, या वो बच्चा कहीं ना कहीं खो गया है, बच्चा कहीं ना कहीं मर गया है या हम जिम्मेदारियों, मसरूफियात और लोग क्या कहेंगे। वेल ये भी एक बात है ना कि लोग क्या कहेंगे, जब बड़े हम हो जाते हैं ना तो बहुत सारे कामों में हम ये सोचते हैं यार लोग क्या कहेंगे, तो लोगों की परवाह किए बैठे हैं और लोगों की परवाह के नीचे दब बैठे हैं। तो आज का हमारा मौजू समझ लिया ना आपने कि जनाब आज हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है या कहीं खो गया है। राइट वे जी, मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है, अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाइएगा, 101L लिखेगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखेगा, अपना पैगाम लिखेगा, मुझे बताइएगा कि आपके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है या कहीं वो खो चुका है, या उसकी आवाज किसी ने दबा दी है, ताड़ी केसट खराब हो गई है।

अच्छा बचपन में ना सुबह जल्दी उठने का दिल नहीं करता और छुट्टी वाले दिन जल्दी आंख खुल जाती। ये भी होता मेरे साथ। तो यार ये अभी भी हो रहा है क्या? मेरा अभी भी बचपन चल रहा है क्या? जिस दिन ऑफिस जाना हो ना, वो मतलब ऑफिस तो रूटीन में पूरे वीक ही जाते हैं, लेकिन जब ऑफिस डेज चल रहे हों तो आंख नहीं खुलती यार। आधा घंटा और सो लूं, अलार्म मैंने 5 अलार्म लगाए हुए हैं, और मैं कहता हूँ कि यार पहला अलार्म बजा, ये तो यार इस अलार्म की मैं कोई वैल्यू ही नहीं है यार, मैंने नहीं इस पे उठना, मैं उसको बंद करके सो जाता हूँ। फिर जो अगला अलार्म है वो अच्छा यार जब आगे अगले वाला बोलेगा फिर देखी जाएगी। तो इस तरह घंटा गुजर जाता है। तो जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन जल्दी आंख खुल जाती। ये क्या सीन है यार, ये क्या सीन है, इसके बारे में मुझे कोई कुछ बताए। और स्कूल जाने के लिए हम बहाने कर रहे होते हैं, और खेलने के लिए भी 100 बहाने कर रहे होते हैं, और घर वापिस आने के लिए कोई बहाना नहीं होता हमारे पास। हम कहते हैं कि जी बस हम खेलते जाएं। और उस वक्त हमारे जहन में ना, हमारे दिलो दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है, और वो ये चल रही होती है, एक बात चल रही होती है, वो ये बात होती है कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं। बस यार वो देखो वो बंदा बड़ा हो गया, वो इतना पैसा कमा रहा है, यहाँ पे जॉब कर रहा है, ये बिजनेस कर रहा है, यार मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, मुझे तो मैथ में ही मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मेरी तो अंग्रेज़ी भी बड़ी कमज़ोर है। तो ये सारी चीज़ें हम सोच रहे होते हैं, मैं जल्दी से बस बड़ा हो जाऊँ। और जब बंदा बड़ा हो जाता है फिर उसका दिल करता है काश एक दिन के लिए दोबारा बच्चा बन जाए। तो ये सीन भी हमारे साथ चल रहा होता है। तो आपने मुझे बताना है कि आपके अंदर का बच्चा अभी भी बाकी है, अभी भी जिंदा है, या वो कहीं खो गया है। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस को प्रोग्राम का हिस्सा भी बनाएंगे। अगर आप हमें ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं आपको हम वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। अगर आप कहीं भी काम करते हुए, कुछ भी करते हुए हमें सुन रहे हैं, या वेले बैठे हुए हमें सुन रहे हैं, या बड़े दिलो जान से हमें सुन रहे हैं, या अपनी मसरूफियत में से अपना कीमती वक्त निकाल के हमें सुन रहे हैं, तो आपको हम वेलकम करेंगे, खुशामदीद कहेंगे, जी एनु कहेंगे, और दिल से कहेंगे, दिल से। facebook.com/fm101 लाहौर का पेज हाजिर है, आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। एक गाना चलाते हैं, और हाँ ये वाला गाना चला देते हैं, और इस गाने के बाद आपको मिलते हैं एक दफ़ा फिर। आपने करना ये है, इस गाने को एंजॉय करना है, मेरी बातों को एंजॉय कर रहे हैं, सुनते रहिए FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है RJ अली रजा की। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप फन 101 हर जुमे की शाम 5 से 7।

चल चलिए, कभी कभी बंदे का दिल कर रहा होता है, इंसान का दिल कर रहा होता है कि यार इस दुनिया को छोड़ के कहीं ना कहीं दूर चला जाए। और जब वो दूर जाने का सोच रहा होता है ना, तो कहता मेरे को तो किराया ही नहीं है दूर जाने का।

0: smile and dial 111-000-101 FM.
1: Keep smiling and drive carefully, okay?

0: आपके अपने होस्ट अपने दोस्त आरजे अली रजा की 5:22 हो गए, आपके मेरा साथ रहने वाला है ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक 7 बजे तक। आप मेरे साथ है ना, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते जाइए और हमें मैसेज करते जाइए, कॉल करते जाइए। हमें ऑफर कॉल की थी मोहम्मद शहजाद साहब ने, थैंक यू सो मच शहजाद, आपने कॉल की, हमसे बात की, कहते जी आपको सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और हाजिरी लगवा रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, वेलकम करते हैं आपको, खुश आमदीद कहते हैं। अभी बहुत सारे प्यारे से अच्छे से क्यूट क्यूट से लिसनर सुन रहे हैं, आप उनके नाम को भी शामिल करते हैं, फिर देखते हैं जी कौन कौन है हमारे साथ। फेरोज आलम जान, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कहते हैं जी शो इज़ ऑलवेज गुड, शो इज़ गोइंग ऑसम, और बहुत सारी दुआएं इन्होंने मुझे भेजी हैं बहुत ही पाक सरजमीन से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। माशाल्लाह सदा सलामत रहें, हमेशा की तरह सुपर शो, नंबर वन आरजे, नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 101 लाहौर, थैंक यू सो मच फिरोज, बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मलखेल सुन रहे हैं जी, हमदुल्ला कहते हैं जी मैं आपको क्वेटा से सुन रहा हूँ, वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, और कहते हैं जी आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी गैर मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। वाह वाह वाह वाह, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, बेशक कोई शक नहीं इस बात में। नज़ीर खोसो सुन रहे हैं हमें सोबतपुर बलोचिस्तान से, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया। मलिक उमैर सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। मियां हुसैन सुन रहे हैं, अली भाई मैंने आपको ट्यून इन कर लिया है, थैंक यू सो मच। हमें मुजाहिद सुन रहे हैं, अली भाई मैं आपके साथ साथ हूँ, थैंक यू सो मच जी, साथ ही रहें। हमें शाहिद ने कॉल की थी और शहजाद ने कॉल की थी और शाहिद ने भी कॉल की थी, शाहिद कह रहे थे अली भाई मैं आपका प्रोग्राम फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ और इन्जॉय कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। दिल तो बच्चा है, दिल बच्चा है ना, तो आपके अंदर का जो बच्चा है वो जिंदा है या कहीं खो गया है, ये आपने मुझे बताना है। हमें शाजिया सुन रही हैं, अली भाई मैं आपको सुन रही हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा बचपन में ना हम बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ और गेम्स इस तरह की खेला करते थे, बहुत सारे खेल खेला करते थे, दौड़ा करते थे, भागा करते थे, पकड़ा करते थे एक दूसरे को, और क्रिकेट खेला करते थे, हॉकी खेला करते थे, फुटबॉल खेला करते थे। अब आप हमारे मैदानों को देखें, हमारी ग्राउंड्स को देखें, वो वीरान लगती हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे वीरानी का मंज़र लगता है ग्राउंड्स में, और ख़ुसूसन उन ग्राउंड्स में जिन ग्राउंड्स में हम अपने बचपन में खेला करते थे। जब मैं कभी वहाँ से गुज़रता हूँ, उन ग्राउंड्स में जाता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे फील हो रहा होता है कि यार कोई बंदा खेलने वाला रहा ही नहीं, क्या हो गया, क्या हो गया हमारी जनरेशन को, कहाँ हमारी जनरेशन चली गई, कहाँ हमारे यंग बॉयज़ चले गए, कहाँ हमारी यंग जो लॉट है वो चली गई। तो हमारी जो यंग लॉट है ना, वो उन्होंने जनाब क्रिकेट फुटबॉल और ये छुपन छुपाई बर्फ़ पानी ये जो खेल थे ना हमारे गिल्ली डंडा, ये इन खेलों से वो बहुत दूर हो गए, ये खेल नहीं वो खेल रहे अब वो फ्री फायर, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टा, इन चीज़ों में वो मस्त हो चुके हैं, इन चीज़ों में वो गुम हो गए हैं, इन चीज़ों में वो खो गए हैं, और अपने जो अंदर का बच्चा है वो भी उन्होंने शायद भी मार ही लिया हो, उसको भी गायब ही कर दिया हो। सबसे बड़ी वजह भी यही हो सकती है कि हम इंस्टाग्राम पे अगर हम रील्स देखने पे लगे हुए हैं, तो टिकटॉक पे हम रील्स ही देखी जा रहे हैं, वीडियोस ही देखी जा रहे हैं, और वो एक ऐसी आदत बन चुकी है कि जब भी हमने फ़ोन अनलॉक करना है तो हमने ये काम करना ही करना, फ़र्ज़ हो गया। वैसे पहला काम तो हम ये करते हैं ना कि जैसे ही बंदा नींद से बेदार होता है, नींद से उठता है, तो सबसे पहले बंदा थोड़ा सा ना ऐसे पागल सा हो जाता है, ओ किथे गया जे, ओ किथे इत्थे ही रखिया सी, ओ फोन दी गल कर रहे हैं फोन ढूंढना शुरू हो जाता है। अगर फोन ना मिल रहा हो तो बंदा थोड़ा सा ना वो बावला सा हो जाता है और वो परेशानी में टेंशन में आ जाता है, यार फोन किथे चला गया। और शादीशुदा लोग तो इस टेंशन में आ जाते हैं, फोन किथे बेगम दे आते नहीं लग गया तो ये टेंशन, ये परेशानियां, ये टेंशन, ये परेशानियां लेके बैठ गई इंसान को। अच्छा जी, हमें मिशी सुन रही है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और कोई सॉन्ग मेरे नाम करें, बिल्कुल जी बिल्कुल करते हैं। गाना, मैं गाना चलाना चाह रहा था और वो गाना मैंने अभी तक क्यों नहीं चलाया और क्यों नहीं ढूंढा मैंने वो गाना, क्यों नहीं अभी तक मैंने सर्च किया, क्योंकि मैं आप लोग से बातें कर रहा था और दिल की बातें कर रहा था। आप भी 4471 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, 0422111001 पे आप कॉल भी कर सकते हैं। और गाना हम चलाएंगे जी, अब्रुल हक की आवाज़ में प्ले करना चाह रहा था। हाँ, ये वाला गाना था। अच्छा जी, आपने करना ये है, आपने कहीं जाना, मन मन को सुनते रहना है। गाना मैं चलाना चाह रहा हूँ अब्रुल हक की खूबसूरती आवाज़ में। इस गाने को एंजॉय करेंगे मैं और आप, और स्टूडियो का माहौल बिल्कुल बदल चुका है, ये खूबसूरत गाना लग चुका है और इस गाने में हम पूरी ऐसे धमाल डालने वाले हैं। इस गाने में ये गाना बस लग जाए लग जाएगा ना, हाँ लग जाएगा जी, लग जाएगा। ले जी, गाना सुनिएगा। मोटी मोटी अख,
1: मोटी मोटी अख,
0: इत्थे रख क्या बात है, डांस कर ले। होए होए होए।

33 मिनट हो गए हैं, आपको मेरा साथ रहेगा ठीक ठीक 7 बजे तक। आज पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड, तीसरा टेस्ट जारी सारी है और तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन का खेल इस वक्त हो रहा है और लंच हो चुका है। पाकिस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की और 133 रन्स पर ऑल टीम आउट हो गई। उसके जवाब में इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में 453 वाई यार बड़ा स्कोर मारा और उसके मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग अभी जारी है। 184 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं और इस टाइम देखते हैं कि लंच के बाद क्या करते हैं। बाबर आजम आ चुके हैं क्रीज पे और शान मसूद एक अच्छी इनिंग्स के साथ 83 स्कोर किया है, 123 बॉलों का उन्होंने सामना किया है। बाबर आजम ने 26 रन्स बनाए हैं और 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और 184 रन्स और 136 रन्स अभी बाकी हैं, 136 की ट्रेल अभी भी बाकी है। ऑल राइट, ठीक है जी, ये है जी मैच का स्नैरियो, ये स्नैरियो चल रहा है मैच का।

0: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: I love FM 101.
2: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुने FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज़ है आरजे अली रजा की और उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल हंसते मुस्कुराते होंगे, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे होंगे। वेल, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है या कहीं खो गया है। मैं बात कर रहा था ना प्लेग्राउंड्स की, कि प्लेग्राउंड्स खाली रहते हैं, और इसी से मुझे एक बात याद आई कि वो बचपन की बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं और याद रहती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम कभी भुला नहीं पाते। जैसे कि आपके जहाँ पे आप रहते थे, जहाँ पे आपका बचपन, आपका लड़कपन गुजरा है, वहाँ की कोई दुकान, वो दुकान के साथ एक बड़ी उनसीयत, बड़ी मोहब्बत सी हो जाती है, क्योंकि सुबह शाम हमने उस दुकान से चीज़ लेके आनी होती है, सौदा लेके आना होता है, सामान लेके आना होता है, घर का कोई राशन वगैरह भी लेके आना होता है। तो वो उस दुकान वाले के साथ, उस दुकान के साथ एक बड़ी एक मोहब्बत सी रहती है। और जब भी आप कभी बड़े हो जाएं और वहाँ से गुजरें, तो आपको वो दुकान, वो जगह, वो आपका बचपन आपको याद आ जाता है कि आप कभी यहाँ पर खड़े होके कुछ चीज़ ले रहे होते थे, कुछ खा रहे होते थे। और कभी कभी उस जगह से आप गुजरें, अपने मोहल्ले से आप गुजरें, तो उस मोहल्ले की खुशबू, उस मोहल्ले की खुशबू नहीं बदलती, उस मोहल्ले का वो एटमॉस्फेयर नहीं बदला होता, और आपको वो खुशबू से अपना पूरा वो बचपन, अपना पूरा वो लड़कपन याद आ जाता है। और कभी कभी एक गाना सुन लें जो आप बचपन में दोस्तों के साथ गाया करते थे, दोस्तों के साथ सुना करते थे, और जिस गाने पे आप दोस्तों के साथ डांस किया करते थे, वो आप कभी सुन लें, तो फिर उस पे भी आपको बचपन याद आ जाता है, उस पे भी आपको अपना वो दोस्तों के साथ गुजरा हुआ एक एक पल याद आ जाता है। वो एक गाना भी हम चलाएँगे, हमारे पास एक गाना भी है जो मैंने तो एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ उस गाने को खूब इंजॉय किया हुआ है, तो वो गाना मैं आप सबके लिए भी प्ले करूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ आज वो गाना एंजॉय करें। गाना आपका जाना पहचाना है, ये मैंने गाना निकाल लिया। हाँ हाँ हाँ हाँ, आगे जी आगे। आप कुछ लोग तो समझ गए होंगे मैं कौन सा गाना चलाने जा रहा हूँ, तो ये है जी हमारा गाना। अच्छा, आपने वन वन को सुनते रहना है, कहीं नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहना है। ये गाना चलाते हैं आपके लिए और इस गाने को हम करेंगे इंजॉय। चल रहा भाई, क्या बात है इस म्यूजिक की, ओए होए होए होए, क्या याद आ गया। आपको भी आया ना याद पुराना जमाना, अपना बचपन, अपनी जवानी।
3: पुरानी जी
2: और गिटार, आए हाय, नया नया शौक पैदा हुआ था,
3: और मेरे
2: मोहल्ले की छात और मेरे यार,
3: जागना
2: हम इतना नहीं जागते थे,
3: सुबह घर जाना, कूद के दीवार,
2: ऐसी कभी नौबत नहीं आई,
3: सिगरेट पीना,
2: ना ना ना,
3: गली

0: और गिटार,
1: पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार। वाह वाह वाह वा, क्या गाना है जी, क्या ही गाना है, क्या ही गाना है। इस गाने ने बहुत सारी पुरानी यादों को झिंझोड़ के रख दिया है, छेड़ के रख दिया है और दिल के तार भी बज उठे हैं। फिलहाल तो 5:49 हो चुके हैं। आप सुनिए एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर, ये आवाज़ है आपकी जानी बजानी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका आरजे अली रजा, आपके साथ साथ ठीक 7 बजे तक हम और आप साथ साथ होते हैं। आज अगर आप ड्राइव करते हुए ये सुन रहे हैं तो आपको मैं कहूँगा ध्यान से ड्राइव चाहिए, ड्राइव कीजिएगा, अपनी लेन और लाइन की हिलावर्जी मत कीजिएगा और सीट बेल्ट लाजमी बांधिएगा। अगर आप बाइक पर सफ़र कर रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। ट्रैफिक के जितने कानून हैं उनकी पासदारी कीजिएगा और ट्रैफिक के जितने कानून आप जानते हैं उन वो बहुत अच्छी बात है, और जिन कानून को आप नहीं जानते उनको भी जल्दी से जान जाएं, उनको भी जल्दी से पढ़ लें, उनको भी जल्दी से अडॉप्ट कर लें। ये आपकी बेहतरी के लिए, आपकी जान की बेहतरी के लिए, क्योंकि जान से कीमती कोई शय नहीं, जान है तो जहान है। हमें बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और मैसेजेस हम शामिल करते हैं। बहुत सारे लिसनर्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमें अमरजा चौधरी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। रमज़ान गुजर हैं जी। अली साहब ऑन ड्यूटी की वजह से आज सुपर हिट शो आपका नहीं सुन सकूँगा। चलिए कोई मसला नहीं है यार, आप शो नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, आप ड्यूटी पे हैं, ये आपका जेन्युइन मसला है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मोहम्मद नईम सुन रहे हैं जी हमें, नईम टेलर सुन रहे हैं, कहते हैं जी मैं आपको सुन रहा हूँ, पूरी टीम को सलाम भेजा है, गुड शो अली भाई, सलामत रहें, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। हमें मैसेज भेजा है जी अमरजा ने, और अमरजा ने सबको सलाम भेजा है, स्पेशल सलाम भेजा है जी उन्होंने, हमारा बेग साजदा जी, मोहम्मद हफीज़ बकर वाले, गुल यासीन नाज, रफ़ीक अंसारी, उस्ताद जीरा, हनीफ ड्राइवर, ज़बरदस्त शो कह रहे हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे चाय भी भेज रहे हैं, वेल चाय की बड़ी तलब है यार, बड़ी तलब है चाय की इस टाइम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, जो हम अपने अंदर के बच्चे की बात कर रहे हैं ना, ये बच्चा कहीं ना कहीं हमारे अंदर ज़िंदा रहना चाहिए, और जैसा भी माहौल हो ना उस माहौल में हमें ढल जाना चाहिए। जैसे शादी का माहौल है, भाई की शादी है, बच्चे की शादी है, बहन की शादी है, कोई भी कज़न की शादी है, आप शादी पे गए हुए हैं तो आपको ऐसा होना चाहिए कि यार ये बंदा रौनक ला देता है, यार ये बंदा रौनकिएगा, तो वो बंदा बनना चाहिए आपको, रौनकी बंदा बनना चाहिए। बैंड बाजा बज रहा है तो आपको डांस करना चाहिए, गाने बज रहे हैं तो आपको उस पर फुल अपना ना एक जलवा दिखाना चाहिए। तो वो जो बंदा ये सारे काम करते हैं ना शादियों में, उसको फिर कहते हैं यार किटा जिंदा दिल इंसान है। अगर कोई बुजुर्ग कर रहा हो उसके लिए भी कहते हैं यार वे बुढ़ा हो गया पर अंदर दा बच्चा नहीं है ये तक मरिया, जिंदा उन्होंने जिंदा कीती रखे। तो जो अपने अंदर के बच्चे को जिंदा किए रखते हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं, वो ज़िंदगी को इंजॉय करते हैं, वो ज़िंदगी के हर पल हर लम्हे को वो बहुत ही आला अंदाज में वो इंजॉय कर रहे होते हैं। और अपने अपने दोस्तों के साथ हो, अपने घर वालों के साथ हो, किसी के साथ भी हो, वो खूब अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे होते हैं। डबल 4-7-1 पे आपके मैसेजेस आ रहे हैं, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस का, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें कॉल्स भी आ रही हैं, हमें ऑफर कॉल की किसने की थी, एहसन खान ने हमें कॉल की थी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। हमें साजिदा ने कॉल की थी, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमें मुजम्मिल ने कॉल की थी, थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमें और किसने कॉल की थी, हमें माजिद ने भी कॉल की थी, थैंक यू सो मच, आप सबकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। गाना चलाते हैं यार, गाना सुनो, मस्त मलंग चकी तई, डाडा दिल तंग चकी तई, आय हाय, एंजॉय करें खूबसूरत गाना। आपको मिलूंगा अब न्यूज ब्रेक के उस पार, कहीं मजा आएगा, सुनते रहिए एफएम 101, दिस इज योर होस्ट आरजे अली रजा।

0: ओके जी लिसनर्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आप सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। ये आवाज है आरजे अली रजा की। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फन ऑन 101 आरजे अली रजा के संग, और मेरे आपका साथ रहने वाला है ठीक ठीक 7 बजे तक। अब मेरे साथ साथ हैं और दूसरा घंटा शुरू हो गया, 6:05 हो गए हैं। आपकी लाइव कॉल के सिलसिले को हमने शुरू कर दिया है 04221100101, और मैसेज कर सकते हैं आप अपने मोबाइल की राइट मैसेज ऑप्शन में जाके 101 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम पैगाम लिखें, हमें भेज दें 4471 पर। facebook.com/FM101 लाहौर का पेज हाजिर हिदमत है। आज हमने आपसे पूछा है कि आपके अंदर का बच्चा जिंदा है या कहीं खो गया है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं।
1: जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक।
0: रिमशा बात कर रही हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: जी रिमशा, कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको आज का प्रोग्राम?
1: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है पहले जैसा।
0: अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगी?
1: मैं तो ये कहूँगी, मेरे तो अभी अंदर का जो बच्चा है वो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं है।
0: अच्छा, अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है, कैसे? कोई एक बात
1: वो कैसे क्योंकि मेरी शरारतें अब भी वैसी की वैसी हैं, क्योंकि मतलब कि मैं शादी के बाद भी शरारतें करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं बदली।
0: अच्छा, अभी भी आप शरारतें करती हैं?
1: बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा तंग करती हूँ सबको।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, और बचपन की कोई शरारत जो आप अभी भी करती हैं वो हमें बताएं।
1: बचपन की शरारत जो मैं अभी भी करती हूँ, वो बचपन की शरारत मेरी हमेशा से एक ये रही है कि जब भी सारे सोए होते हैं ना, तो उनके चेहरे पे कुछ ना कुछ लगा देना, या उनका मेकअप कर देना, या कोई मतलब सुरमा लगा देना, उनका चेहरा काला कर देना। अब तक ये मेरे अंदर आदत है। अच्छा। अब मैं ये भी करती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही,
1: क्योंकि ये आदत मैं कर चुकी हूँ। और ये प्लान मतलब कि ये शरारत मैं अपने हस्बैंड के साथ भी कर चुकी हूँ। वो सोए हुए थे, मैंने उनके चेहरे का मेकअप किया है, अच्छी तरह नेल पॉलिश उनके मुंह पे लगाई।
0: वाह वाह वाह वाह, फिर तो उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पे डाली थी कि नहीं?
1: नहीं, ये टिकटॉक पे मैंने फिलहाल अपनी स्टोरी पे डाली थी, तो खूब लाइक आए थे, मैं खूब हंसी थी। जब वो सोकर होते थे वो देख कर हैरान हो गई कि मेरे साथ हुआ क्या।
0: ये तो आपने बड़ी बड़ी नाइंसाफी की आपने। वैसे
1: थोड़ी देर के लिए मैंने डाली थी, और थोड़ी देर में ही टिकटॉक के ऊपर स्टोरी के ऊपर इतने लोगों ने उनको देख,
0: मिलियंस में आ गए होंगे व्यूज।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सही सही, चलें ठीक हो गया रिमशा।
1: और आप इसी तरह आज तक मुस्कुराते हैं, आपने भी अपनी बचपन की कोई शरारत बतानी है?
0: जरूर मैं बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। 04221100101, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, आपको तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है मेरे साथ?
2: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ लाहौर से।
0: जी मोहम्मद सलमान भट्ट, कैसे हैं आप?
2: हाँ जी, वो बचपन की
0: तो पहले बताएं, तबीयत कैसी है आपकी, ठीक ठाक है?
2: मैं फिट फाट हूँ अल्लाह का शुक्र
0: है। अच्छा ठीक है, अब बताएं बचपन की, और बचपन की क्या बात करने लगे थे आप?
2: बचपन की ये है कि मैं छोटी बात है, मैं एक दिन शादी पे गया बेटे के साथ, उधर वो म्यूजिक से चला तो मैं सोफे पे बैठे हुए थे, तो टांग ऐसे म्यूजिक के साथ मेरी हिलाने लग गई, आदत पड़ी हुई है ना वो म्यूजिक के साथ साथ खेलने की, तो वो बच्चा मेरी टांग को बाहर, मैं उठ के चला जाना, मैं चला जाऊंगा, ये क्या कर रहे हैं आप?
0: अच्छा।
2: तो आप कहते हैं मतलब तो जिंदा रखो, ये बच्चे आप रखने नहीं देते। तो मैं टांग लाऊं जरा, वो पकड़ ले, वो बच्चे शर्मिंदगी महसूस करते हैं, वो
0: करंडे
2: तो वो ये बात है। वैसे मैं तो, मेरी पोतियां आती हैं, मैं बिल्कुल उनके साथ बच्चा, वो 3-3 घंटे नहीं हिलती, मैं बिल्कुल जैसे बच्चों जैसी आवाज निकाल लेता हूँ, उन्हें कहानियाँ, उन्हें कभी घोड़ा बन के झूले देता हूँ, वो बिल्कुल, वो और घर में इतने मेंबर हैं 8-10, वो किसी के पास ठहरती नहीं है, वो मैं बच्चों के साथ बच्चा बन जाता हूँ,
0: बच्चे बन जाते हैं, और बच्चा भी चाहता है मुझे एक बच्चा मिले जो मेरे साथ खेले कूदे।
2: मैं इस तरह बन जाता हूँ जैसे मैं, वो एक 3 साल की है, एक 2-4 साल की,
0: जी जी,
2: मैं 2-3 साल की 4 साल का मैं भी बन जाता हूँ।
0: आप तो एक्सपीरियंस्ड बच्चे बन जाते हैं ना, फिर आपको तो सारे पता है सारी चीजों का,
2: आवाज बच्चों जैसे निकाल लेनी, वो फिर उठती नहीं है 3-4।
0: आवाज तो हमें निकाल के दिखाएं, कौन सी बच्चों वाली आवाज आप निकालते हैं?
2: वो ना मेरी छोटी आती है पोती, मैंने एक दिन का कशफा क्या कर रही हो दादा, आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं मुझे भी दो, आपका गला खराब हो जाएगा, आपका गला खराब हो जाएगा। मैं आपका नहीं होता, लेकिन मैं तो रोज खाती हूँ।
0: अच्छा,
2: 3 साल की अभी छोटी सी।
0: अच्छा,
2: लगा रहता हूँ बच्चों जैसी बात आवाज में निकाल के, उन्हें ऐसे ऐसे जॉग दिखाता हूँ वो हिलती नहीं है, मैं कहता हूँ चार चार घंटे ना उन्हें खाने की फिक्र नहीं पीने की।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, खुश रहें, खुश रहें। 04-2111-0011 हमसे रब्ते का नंबर है, बैक टू बैक कॉल्स ले रहे हैं, कॉल चलाते हैं उसके बाद गाना आप प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानो वन, कैसा जी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ।
0: 04-2111-0011 हमसे रब्ते का नंबर है, बैक टू बैक कॉल्स ले रहे हैं, कॉल चलाते हैं उसके बाद गाना आप प्ले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: ओके जी लिसनर्स, एक दफा पिछले प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दिस इज योर वेरी ओन आरजे अली रजा, 04221100101 हमसे रब्ते का नंबर है। हमें बहुत सारे प्यारे से लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं क्या हाल चाल है?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक
1: है? मैं ठीक हूँ। प्रोग्राम कैसे लग रहा है आज का?
2: जबरदस्त, हमेशा की तरह।
1: अच्छा
2: दुमाल
1: अच्छा,
2: और
1: ठीक है।
2: बचपन में मैं इतनी शरारती नहीं।
1: आपका तो अभी भी बचपन ही चल रहा है, क्या हो गया?
2: नहीं अब बचपन
1: देख लो, मैंने तो बचपन बनाया था, अब आपने खुद ही बचपन कहा है भाई, मैंने नहीं कुछ कहा।
2: आपको कैसे पता कि मैं मेरा बचपन चल रहा
1: है? नहीं मुझे तो पता है ना, लेकिन आपने तो बचपन कह दिया ना।
2: हाँ जी,
1: बचपन ही सही है।
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
1: अच्छा
2: अल्लाह ऐसे ही रखे।
1: तो कोई ऐसी शरारत बताएं बचपन की जो अभी भी आप करती हैं, कोई हरकत आपकी, कोई शरारत ऐसी?
2: मेरी बातें ही शरारतों वाली है।
1: अच्छा
2: मैं स्कूल लाइफ,
1: हाँ वो तो हमें दिखता है।
2: हाँ जी स्कूल लाइफ में ये था कि मेरी फ्रेंड्स नेक्स्ट वो डेस्क पे बैठी होती थी तो उनका स्टॉलर एक दूसरे साथ गिरा लगा देती थी, और या उनके शर्ट के साथ वो रैपर पेज लेके ना उसके अंदर सुराख करके तो उनकी शर्ट के अंदर पीछे लगा देना।
1: अच्छा
2: की है, या एक दूसरे की बुक्स लेके ना वो एक दूसरे के बैग में चेंज कर देना, एक्सचेंज कर
1: देना। सही, कभी आपने ऐसे किया था कोई बैठने लगे तो पीछे से चेयर खींच दी?
2: हाँ ऐसे भी अक्सर किया है, बड़ी शरारतें किया, लेकिन ये था के हमेशा टीचर्स की फेवरेट रही हूँ, कभी डांट नहीं पड़ी।
1: जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छी बात।
2: और शरारतें ऐसी की हैं कि जो किसी की दिल आजारी ना हो।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त जबरदस्त,
2: बहुत अच्छा शो।
1: थैंक यू सो मच।
2: भांजी की बर्थडे आज समिया समीर की और अली हसन बेग की, तो उनको मेरी तरफ से विश कर दीजिएगा अगर हो सके ना। तो लास्ट वो जिशारो क्रीगा गाना है छलड़े छलड़े वाल,
1: ठीक है? अच्छा समिया और हसन की है?
2: हाँ जी अली हसन की जी।
1: चलो
2: दोनों ट्विन्स है ना तो उनकी बर्थडे।
1: ओके, और ये बर्थडे कब है उनकी?
2: आज थी
1: ओ चले हम उनको विश करते हैं। ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। लेकिन आज है जी दो क्यूट उसकी बर्थडे, समिया की और अली हसन की, आप दोनों को हम हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। समिया एंड अली हसन, आप दोनों को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक हो?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप ठीक हैं?
3: हाँ जी बिशेरा मुझे निमकोरा चुनिया मरहिदो।
1: क्या बात है, क्या बात है, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, क्या हाल है आपका?
3: अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक ठाक?
1: बहुत शुक्रिया जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, तड़ियां दुआवां ने।
3: अरे बचपन दिया ना, पहले भाइयां ना मिट्टी का तेल होंदा सी ना,
1: होंदा सी
3: मिट्टी का तेल होंदा सी,
1: ओ हुण ही की हो गया जी?
3: नहीं हुण भी है। हां
1: यार, नहीं इस तरह के काम नहीं करने चाहिए वैसे वैसे।
3: गल कर रहे हैं, गल
1: जी जी,
3: पेट्रोल पाके शादी दे।
1: हाँ हाँ मैंने देखी है वो वीडियो, मैंने देखी है, बड़ा वो अनफॉर्चुनेट।
3: सारा मुंह ही सड़ गया
1: जी जी जी जी जी जी, बिल्कुल
3: सारा मुंह ही सड़ गया,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
3: मेरा पेट्रोल है खतरनाक,
1: खतरनाक चीज है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए,
3: मिट्टी तेल है ना खतरनाक नहीं है।
1: सही सही,
3: मैं भाई दी गल सुन रहा भैया, मैं भी हुणे हुणे फोन किया।
1: सही सही, चलो जी खुश आमदीद कहने, तुहानू वेलकम, बहुत शुक्रिया कॉल करने वास्ते। خوش رہو جی, خوش رہو, خوش رہو, اللہ حافظ. 04-2111-0101 بیک ٹو بیک کالز ہیں ہمارے پاس, کالز کا تانتا بن چکا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ کی نا آواز کٹ رہی ہے. ہاں جی اپنی بات کہہ دیں, اپنی بات کہہ دیں, کہہ دیں اپنی بات.
4: چلو
1: 04-2111-0101 ہم سے رابطے کا نمبر ہے, اور امیر صاحب کی کال ملی تھی لیکن کچھ ڈسٹورشن تھی اس لیے ہمیں کال کاٹنی پڑی. اچھا جی ہمیں میسج کس نے بھیجا ہے, کچھ میسیجز کو شامل کرتے ہیں. ہمیں اکبر سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. ہمیں آصف سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. نعیم سن رہے ہیں, بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. ہمیں ساجد سن رہے ہیں لاہور سے, علی بھائی میں آپ بھی آپ کو سن رہا ہوں, ویلکم کرتے ہیں جی آپ کو بھی. اور ہمیں میسیج بھیجا ہے جی, کس نے بھیجا ہے ہمیں میسیج, امرزہ سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. امرزہ کی کال نہیں آئی ویسے ابھی تک. ریاض بھٹی سن رہے ہیں, تھینک یو سو مچ, کہتے ہیں جی کمال شو, زبردست شو جناب, کیا بات ہے آپ کی, چھا گئے ہیں, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ. اور ہمیں میسیج بھیجا ہے سیم تبسم نے, ماشاء اللہ جناب, اللہ پاک خوش رکھے, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.

0: आज के शो में मेरी एब्सेंट लगा दो। लगा दी है जनाब, पहले ही लगा चुका हूँ मैं आपकी एब्सेंट रमजान गुज्जर साहब। रेहाना खान सुन रही हैं, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान भक्कर से, वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया। सैम तबस्सुम, अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है भाईजान? आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और अंदाज़ बहुत प्यारा है। अल्लाह पाक राज़ी हो, आपसे खुश हो। मैं आपको पेरिस फ्रांस में सुन रहा हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया पेरिस फ्रांस से हमें सुनने के लिए। एम रज़ा चौधरी के बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे पास, थैंक यू सो मच एम रज़ा चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। और देसी ठुमका ना लगा दें, और देसी ठुमका का
1: नौमान खाली। मैनू पैण भुलेखे तेरे।

0: Wired Radio. Dave's best music. Q101. Electric.
1: Okay, listeners, welcome back once again. 042-111-0011. Assalamu alaikum, listeners. Who is with me?
2: Waalaikum salam. Ehsan Khan baat kar raha hoon.
1: Ji, Ehsan Khan baat kar rahe hain. Kya haal hai aapka?
2: Allah ka shukr hai, theek thaak. First class, aapka show sun rahe hain. Bahut maza aa raha hai aur apna bachpan yaad aa raha hai.
1: Thank you so much, ji. Bahut shukriya, bahut shukriya.
2: To jo hamara ki koi jo bhi hai, mujhe samajh nahi aayi. Jo naam wagaira bataye hain, to unko hamari taraf se happy birthday.
1: जी बिल्कुल, हसन अली हसन और समिया की सालगिरह.
2: हाँ हाँ, अली हसन और समिया. जब बंदा 55 में पहुंच जाता है ना, चीजें भूल जाती हैं.
1: बिल्कुल, होता है, ऐसे भी होता है.
2: तो अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और इनकी लंबी जिंदगी करे.
1: आमीन.
2: तो अब आपके टॉपिक की तरफ आते हैं. तो
1: जी,
2: एक दफा ना हमने तीन लड़कों ने ना मशवरा किया कि कल छुट्टी करते हैं. तो हमारे यहाँ जो है ना लड़के उस वक्त पैदल ही स्कूल जाया करते थे.
1: अच्छा.
2: सुबह सुबह निकले, फिर थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस हुआ. जो भी आता था ना, हम कहते थे स्कूल से छुट्टी है. वो सारों ने छुट्टी कर ली. जब अगला दिन आया तो सारे मुर्गे बने हुए थे.
1: अच्छा, सही.
2: शरारतें ही होती हैं जो इंसान को जरा हंसने पे मुस्कुराने पे.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है.
2: जो रिक्वेस्ट आई है ना हमारा की तरफ से छलड़े छलड़े वाल की, अगर ये ओरिजिनल वाला आप प्ले कर देना, शफाउल्लाह खान रोखड़ी का, ये 61 दौर सॉन्ग है और बहुत ज्यादा हिट हुआ.
1: अच्छा.
2: और उस वक्त लोगों ने स्पेशल इस सॉन्ग की वजह से छलड़े छलड़े वाल रख लिए थे.
1: वाह वाह वाह.
2: हमारे बचपन में आया था 61, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी. और क्या ही कमाल गाया शफाउल्लाह खान रोखड़ी ने, जो ईशान खान रोकड़ी.
1: चले हम जाते जाते ना उनका गाना चला देंगे. ये वाला
2: रजा भाई को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम.
3: अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम. एम रजा
3: जी, वेलकम टू द शो. जी रजा चौधरी आ गया मेरे क्यू से. सज्जन बेली मित्र ने मुझे याद किया. मैं चल सर,
1: क्या
3: जुती नहीं पानी.
1: क्या बात
3: यार, सदे तो जुती ना बंदा पावे थे. नहीं आना. तो वेलकम टू द शो सभी सुनने वालों को जो समाज कॉल कर रही है, एसएमएस कर रही है, उनको रजा चौधरी का नाचीज बंदे का सलाम कबूल हो. तो प्रोग्राम सर आपका ग्रेट है. बचपन की याद दिला दी स्कूल में. सर हमें ऐसे करते थे, जब स्टूडेंट बैठते थे ना, हमने पीछे से उनकी कमीजें बांध देते थे.
1: अच्छा.
3: तो जब पता चलता, मैं तो वैसे मासूम जहा बन जाया करती, मैं तो वैसे पहले मासूम बना लेते. वो टीचर को शिकायत थी कमीजें बांध दी है.
1: सही.
3: तो वो कहते हैं ये शरारत रजा की होगी. मैं कहा सर देखो मैं लगता हूँ शक्ल से लगता हूँ ऐसा. कहता नहीं, ये तो मासूम जहा मुंडा है. सर वो भी बड़ी याद है, लेकिन मुझे याद है एक दरख्त था हमारे स्कूल में आज से 15 साल पहले या 16 साल पहले. मैंने वहां अपना नाम लिखा था.
1: वाह.
3: वो दरख्त अभी भी है और मेरा नाम भी लिखा.
1: वाह जी वाह, वाह जी वाह.
3: तो जब जाता हूँ ना तो याद तो आता है. सर बचपन जब थे ना, तो हमें हमारे साथ कितने रिश्ते थे, खाला मासियां पुपियां ताए चाचे. जैसे जैसे हम बड़े होते गए वो रिश्ते हमसे दूर जाते गए.
1: बिल्कुल, बिल्कुल
3: चले गए.
1: बिल्कुल.
3: तो
1: बिल्कुल.
3: कमी तो यही है हमारे जो अजीज दुनिया चले गए हैं. जब बचपन में थे तो सभी पास थे. जब हम जवान हुए मतलब शादीशुदा हो गए तो वो रिश्ते हमसे दूर चले गए.
1: बेशक,
3: बेशक. तो जो भी चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत दुश्मन आलम काम था फरमाए. सर मैंने कभी आपके शो में रिक्वेस्ट नहीं की.
1: कभी नहीं की हमारा यार.
3: नहीं, बड़े वर्षा हो गया पहले की बात है. 2025 में की थी.
1: अच्छा.
3: तो हमारा के जो अजीज हैं बच्चे उनके सालगिरह में तो हैप्पी बर्थडे टू यू. सर अली बग्गा और एमा बेग का सॉन्ग है वशमले. ये इन बच्चों के नाम करना है वशमले.
1: चले ठीक हो गया, कर देते हैं जनाब.
3: जरूर लगा के जाना है.
1: लगा देते हैं, लगा देते हैं. ओके ओके ओके ओके. Thank you so much. Thank you so much.

हमें सुन रहे हैं जी, अहद अहद कहते हैं जी, भाई मैं आपको सुन रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी मेरे अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है और बड़ी खुश आइंद बात है ये। हमें सुन रहे हैं जी कल्बे अब्बास, थैंक यू सो मच कल्बे अब्बास, हमें इस्लामाबाद से ट्यून इन किए बैठे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमें साजिद भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच साजिद, आपको भी बहुत शुक्रिया। और हमें हमें कौन सुन रहा है, हमें जाहिद सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। गाने की फरमाइश आई और हमने गाना प्ले कर दिया। अली हसन और समिया के नाम, एम रजा की फरमाइश।

0: There's only one station that keeps you moving. Hotwired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: ओके जी लिसनर्स, 6:52 हो गए हैं। एक दो फिर से हम प्रोग्राम में वापस आ चुके हैं। आप सुन रहे हैं 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। प्रोग्राम है जी हमारा फन ऑन 101 आरजे अलीज़ा के साथ साथ। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं 5 बजे से लेकर 7 बजे तक हर जुमे की शाम। आपका मेरा खूबसूरत ये साथ रहता है। और आज के साथ में हमने आपसे सवाल पूछा था कि आपके अंदर का बच्चा अभी तक जिंदा है या आपने उसको कहीं खो दिया है। सो हमें मोस्टली मैसेजेस ये मिले कि हमारे अंदर का बच्चा जो है वो अभी जिंदा है। तो ये जो अंदर का बच्चा है इसको जिंदा ही रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, लास्ट कॉलर।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। साजिदा हमारी लास्ट कॉलर बन गई हैं।
2: हाँ जी, मैं कब से कोशिश कर रही लेकिन अब लगी गई कॉल।
1: फाइनली आपकी कॉल लग गई जी। साजिदा क्या कहेंगी आप?
2: हाँ जी, मैं कहना चाहूंगी आपने वाकई हमें बचपन में ले गए हैं।
1: अच्छा।
2: बहुत इतनी यादें वो याद आ रही है ना बचपन की जो।
1: अच्छा।
2: हम करते थे अलग अलग।
1: चलो एक याद हमें भी बता दो।
2: तो शाम के टाइम ना अक्सर गर्मियों में स्टापो खेलना सारी लड़कियों ने, खड़े वो बाहर गलियों में जाके ना ये सबको बुलाना और स्टापो खेलना, फुटबॉल खेलना, लूडो खेलनी, ये सारा बोलना याद आ रहा है। पार्को में जाना, स्लाइड लेनी, पिंग लेनी, वो सारा कुछ ना ऐसे वो याद आ रहा है बहुत ज्यादा।
1: अच्छा, और आपकी सबसे फेवरेट एक्टिविटी क्या होती थी?
2: मेरी ज्यादातर होती थी लिट्टो खेलना।
1: अच्छा। सही ठीक है।
2: तो बहुत ज्यादा खेलते थे और उसमें मैं जीत भी जाती थी अक्सर।
1: वाह,
2: जो दूसरे होते थे ना वो
1: आपकी लक अच्छी होगी ना, आपकी लक अच्छी होगी।
2: हाँ जी, और वो ना किसी को 6-6 कमाते थे, मेरे ज्यादा आते थे और मैं ज्यादा मैं जीत जाती थी।
1: जबरदस्त, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, बहुत शुक्रिया।
2: जी जी, मैं सबको सलाम कहना चाहूंगी, रिमशा को, बिस्मा को, और शहजाद अली लाडला को, एहसन खान को और रजा चौधरी को।
1: ठीक है,
2: भाई आए थे उनको भी, शमीमा पी को भी, आज बसी वाले भाई नहीं आए और वो आए दर्जी, सलीम दर्जी को,
1: ये थी हमारी आज की आखिरी कॉलर। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। वेल ये था आज के प्रोग्राम। थैंक यू सो मच तमाम कॉलर्स का, तमाम मैसेज करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मैसेजेस सब के शामिल हो चुके हैं। बिल्कुल अमरजा चौधरी, थैंक यू सो मच, और रियाज भट्टी आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे पास थे जी रमज़ान गुजर साहब आपका शुक्रिया, और लतीफ़ साहब आपका शुक्रिया, आसिफ आपका शुक्रिया, और अकबर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमें सुन रहे थे जी फिरोज आलम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये था आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को 5 से 7। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जिनका आप जो आपका ख्याल रखते हैं। तो आरजे अलीज़ा साइनिंग आउट कर रहा है, जा रहा है यहाँ से, जुमे को आऊँगा। इस गाने की फरमाइश हमें हुई थी तो ये गाना हम चला रहे हैं जाते जाते। इंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे को। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बान।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.
1: तमाम सुनने और देखने वालों की खिदमत में तौसीक हैदर का आदाब। प्रोग्राम है पैदा करो नई सोच, और इस वक्त हमारी आवाज पंजाब भर में मुख्तलिफ रेडियो एफएम स्टेशंस के जरिए आप तक पहुंच रही है और अपने रेडियो के पॉडकास्ट पे आप हमें देख भी रहे हैं। पैदा करो नई सोच के हवाले से साथियों, अक्सर आपसे मुलाकात होती है हवा के दोष, और बात होती है कि हम अपनी फैमिली को कैसे प्लान करें, खानदानी मंसूबा साजी कैसे करें। और पंजाब भर में पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको कैसे उनको इस्तेमाल में लाएं, ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो बच्चे अपनी फैमिली को कैसे प्लान करें, खानदानी मंसूबा साजी कैसे करें। और पंजाब भर में पंजाब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उनको कैसे

0: से मुराद ये है कि हम किस तरह से उन फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके अपने घराने को अपने वसाइल में रहते हुए बेहतर और सेहतमंद जिंदगी दे सकते हैं। जब भी हम ये बात करते हैं तो एक जिक्र साथियों जरूर आता है कि इस्लाम इस हवाले से क्या कहता है, हमारा खूबसूरत हमारा प्यारा दीन इस्लाम का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है। तो हमने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के एक नामी गरामी रिलीजियस मजहबी स्कॉलर को बुलवाया जाए। डॉक्टर साजिद महमूद अल अजहरी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। डॉक्टर साहब जैसा कि इनके नाम में भी हवाला मौजूद है, ग्रेजुएट है अल अजहर यूनिवर्सिटी मिस्र यानी इजिप्ट के, हलाल स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम्स और इस्लामिक अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर से इनका ताल्लुक है। सोशल मीडिया पे आप में से बहुत से लोग इन्हें फॉलो करते हैं और रेडियो टीवी पे सुनते भी हैं। डॉक्टर साहब यहीं से बात शुरू करते हैं कि हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है, क्या हमारा दीन इस पे कोई पाबंदी लगाता है कि जी दो साल का वक्फा होना चाहिए या अपने वसाइल को जहन में रखते हुए अपनी आबादी को अपने घर की आबादी को बढ़ाना चाहिए, इस्लाम क्या कहता है?
1: तो शेख साहब जब आप इस्लाम की बात करते हैं इस हवाले से खानदानी मनसूबा साजी के हवाले से तो इतना आसान प्रिंसिपल दे दिया है कि इसमें कोई ऐसी जैसे उलमा के इल्मी मबाहिस होती हैं डिबेट्स होते हैं ऐसा है ही नहीं है। इस मामले में इस्लाम ने बहुत वाजे और क्लियर तालीमात दी हैं और वो क्या हैं?
0: क्या
1: हमारे यहाँ फिक्र में कायदा है अल असलु फिल अशियाई अल इबाहा, जितनी भी चीजें हैं अपनी असल के एतबार से वो बाई डिफॉल्ट जायज हैं मुबाह हैं और परमिजिबल हैं। अगर कोई चीज मना है तो उसका हुक्म आ जाएगा कि ये मना है आपने इसे अवॉइड करना है, इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं वो हलाल हैं और जायज हैं आप उनको कर सकते हैं।
0: तो बड़ा आसान कर दिया
1: बिल्कुल। और अब ये जो मनसूबा साजी के हवाले से है इसके मना के हवाले से कोई एक नस कुरान मजीद में और हदीस नबवी में नहीं है,
0: कहीं भी
1: नहीं है कि आपने खानदानी मनसूबा साजी नहीं करनी है, ऐसा कोई आपको कुरान मजीद की ना आयत मिलेगी ना हदीस मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला मामला जो हमारा असल कायदा है कि तमाम चीजें अपनी असल के एतबार से बाई डिफॉल्ट वो परमिजिबल हैं जायज हैं उसके दायरे में आ जाएंगे, लिहाजा वालदेन के लिए मियाँ बीवी के लिए इसमें इतनी इजाजत है कि वो जैसे भी बेहतर समझें बच्चों की सेहत के हवाले से उनकी निगहदाश्त और माँ की सेहत और उसके तहफ़ के हवाले से जैसे भी वो मनसूबा साजी करना चाहें, दो साल का वक्फा तीन साल का करना है चार साल का करना है पाँच साल का करना है अपने वसाइल को सामने रखते हुए, क्योंकि आप देखें ये आपके ऊपर फर्ज है कि जो बच्चे आप पैदा कर रहे हैं आपने उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है, उनको उनकी तालीम तरबियत ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इसमें गफलत बरतेंगे तो आपने अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयतिही, तुम में से हर कोई रिस्पॉन्सिबल है और उससे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। तो आपको तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली की दी थी कि आपने इसकी माँ की सेहत का ख्याल रखना है, बच्चों की सेहत का ख्याल रखना है, इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल, आपने तो वो किया ही नहीं है। आप तो अपने वसाइल को देखे बगैर वो आप बच्चे पैदा करते रहे, अब वो सारे जो है ना उनकी सेहत अच्छी है ना उनकी तालीम अच्छी है। आपने शुरू में इंट्रो में बताया 2.5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, उनको स्कूल में होना चाहिए था तो वो क्यों स्कूलों से बाहर है, ये आप क्योंकि आपने उसको प्लान नहीं किया है
0: तो इसकी भी जवाबदेही
1: इसकी जवाबदेही आपसे होनी है।
0: अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि फिर ये जो कहा जाता है ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके है, लेकिन ये जो कहा जाता है कि भाई हर जान जो है वो अपना रिस्क खुद ही लेकर आती है और रब ने कहा है कि मैं रिस्क, तो इसको ये कोई कुछ आपको कॉन्फ्लिक्टिंग सी बात नहीं लगती?
1: ये बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमने इसको कॉन्फ्लिक्ट बना दिया है क्योंकि हमने तवक्कुल और ये रिस्क वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको अकॉर्डिंग टू शरिया समझा ही नहीं है, खुद अपना तवक्कुल का मफहूम बना दिया कि तवक्कुल ये है, तवक्कुल ये नहीं होता। अरबी के अंदर दो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, एक होता है तवक्कुल दूसरा होता है तवाक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है कि आपने पहले असबाब इख्तियार करने हैं प्लान करना है और उसके रिजल्ट अल्लाह के ऊपर छोड़ देने हैं, ये तो हो गया तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है कि अंधाधुंध लगे हुए हैं, ना प्लान कर रहे हैं ना मनसूबा साजी कर रहे हैं और अंधाधुंध वो किए जा रहे हैं और अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। अल्लाह ने तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं बगैर असबाब इख्तियार किए तुम्हारे घर में रिस्क आ जाएगा, तुम दरवाजा नॉक होगा बाहर जाओगे तो वो रिस्क बड़ा होगा।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

ਚੱਲ ਬੁਲੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਹਵਨ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ। Assalamualaikum, Assalamualaikum Pakistan, Assalamualaikum Lahore and Assalamualaikum 101. Radio Pakistan FM 101 ke Lahore studio se main hu aapke sath aapka mezban Farhan Khan. Is umeed aur is dua ke sath aap jahan rahe khush rahe, haste muskurate rahe. Radio Pakistan FM 101 international ki is transmission mein aap sabko khush aamdeed kehte hain. 11 September san 2026 ki ye khoobsurat si raat The Late Night Show with Farhan Khan में आप सबको वेलकम कहते हैं। अपने दिल की बातें लेके हाजिर होते हैं, वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं, वो बातें जो हम आपसे कहना चाहते हैं, वो बातें जो आप हमसे करना चाहते हैं। आज का शो जो है ना, बड़ा एक एक्सक्लूसिव सा शो है और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का शो है। सो जनाब, आज के शो में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। हमेशा की तरह जो हम कहते हैं कि दिल वालों की जो बज़्म है ये सच चुकी है, और दिल वालों की बज़्म में आप हमारे साथ रहेंगे अब से लेके ठीक 12 बजे तक। अपने दिल की बातें लेके हम हाजिर होते हैं, वो बातें जो हमारे दिल में होती हैं और आपके दिल में होती हैं। सो जनाब, हमेशा की तरह दिल वालों की बज़्म जो है, जिसको हम हमेशा कहते हैं, महज एक महफिल नहीं बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी दुनिया जहाँ जज्बात की कदर होती है, जहाँ मोहब्बत अपनी पूरी शिद्दत के साथ सांस लेती है, जहाँ अल्फाज दिलों की ज़ुबान बोलते हैं। ये वो जगह है जहाँ एहसासात ज़ख्मों पे मरहम बनते हैं और जहाँ हिजर की तड़प को समझा जाता है और वसल की खुशबू महकती है। सो जनाब, दिल वालों की बज़्म में आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आप इस शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमारा साथ निभा सकते हैं। फेसबुक पेज पे FM 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे आप हमारे साथ रह सकते हैं, और इसके अलावा 04211100101 हमारे रابطے का नंबर है जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रابطے के लिए 4471 इज़ द नंबर जिस पे आप हमारे साथ शामिल रह सकते हैं आज के शो में। और जनाब, आज का शो एक्सक्लूसिव क्यों है और आज का शो ख़ास क्यों है, इसकी वजह है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े ख़ास होते हैं, कुछ लोग आपके लिए बड़े ख़ास होते हैं, और वो ख़ास लोग जब आपके साथ होते हैं ना, तो आपको मज़ा आ जाता है, आपको पता चलता है कि यार कमाल है, आज तो कमाल होने जा रहा है, आज तो बड़े ख़ास किस्म का शो होने जा रहा है। सो जनाब, आज का जो ख़ास शो है, और इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, आज के ख़ास शो में मेरे साथ बड़े बड़े ख़ास लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उन ख़ास लोगों को शामिल करने से पहले आज के मौजू के हवाले से मैं बता दूँ आप सबको। आज का मौजू थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, और कुछ ज़िंदगी के पैरामीटर्स होते हैं, हम ज़िंदगी को मुख्तलिफ जगह मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे देख रहे होते हैं, नाप रहे होते हैं, जांच रहे होते हैं। हम अपने आप को जांचते कम हैं लेकिन दूसरों को ज़्यादा जांचते हैं। अच्छा, हमारा अपने लिए जो मेयार है ना, वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन दूसरों के लिए हमारा मेयार मुख्तलिफ होता है। हम अपने लिए ज़िंदगी मुख्तलिफ अंदाज से गुजारना चाहते हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी दूसरे अंदाज से गुजारने की ख्वाहिश रखते हैं। हम ख़ुद को बदलना नहीं चाहते लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया बदल जाए। अच्छा, इंसान भी बड़ी अजीब मखलूक है, दूसरों की एक गलती उसे बरसों याद रहती है, मगर अपनी 10 गलतियों के लिए उसके पास 10 खूबसूरत जवाब मौजूद होते हैं। हम दूसरों के माजी को उनके हाल का आईना बना देते हैं, मगर अपने माजी को कहते हैं वो वक्त ही कुछ और था, हालात ही ऐसे थे, मुझसे गलती हो गई। हम चाहते हैं कि लोग हमारी गलतियों को समझें, हमारे हालात को देखें, हमारी मजबूरियों को महसूस करें और हमें एक मौका ज़रूर दें। लेकिन जब किसी दूसरे से कोई गलती हो जाए ना, उस वक्त हम फौरन फैसला सुना देते हैं। फैसला सुनाने में तो हम बड़े तेज़ हैं, जजमेंटल बड़ी जल्दी हो जाते हैं, और फौरन से पहले कहते हैं अच्छा यार बस ठीक है। सो हमारा जो मेयार ज़िंदगी, अपने लिए कुछ दूसरों के लिए कुछ, क्यों ऐसा? मैं आज, जैसा मैंने कहा, मेरा आज का फैसला सुनाने में तो हम बड़े तेज़ हैं, जजमेंटल बड़ी जल्दी हो जाते हैं,
और फौरन से पहले कहते हैं अच्छा यार बस ठीक है। सो हमारा जो मियार है ज़िंदगी अपने लिए कुछ

0: ने आज की ये बहुत ही जो खूबसूरत सी शब है रेडियो पाकिस्तान लाहौर की, आपने इस खूबसूरत सी शब का मुझे हिस्सा बनाया।
1: इट्स ऑनर सर, हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है आप हमारे साथ हैं।
0: इट्स माय प्लेजर।
1: सो अपने सुनने वालों को बताते चलें जनाब, इस वक्त आरजे अली कुरैशी हमारे साथ हैं जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सियालकोट भर में इनकी आवाज़ आप सुनते रहते हैं, आज लाहौर 101 इंटरनेशनल से इनकी आवाज़ को सुना जा रहा है। अहमद भट्ट भी हमारे साथ हैं, हमारे न्यू आरजे हैं, अभी ट्रेनिंग पे हैं। एंड वेलकम अहमद, कैसे हैं आप?
2: अपने साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका देने के लिए, और आप बताएं आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, ऑल गुड। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का शो बड़ा ख़ास होने लगा है, होने जा रहा है आई एम श्योर। अली भाई
0: जी
1: आज आप 101 इंटरनेशनल पे हमारे साथ हैं, आपका हमारा साथ।
0: थैंक यू सो मच मैनेजमेंट का, सबसे पहले उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम यहाँ पे हैं, और ये उनका ही एक हमारे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए एज़ाज़ की बात है
1: सर। बहुत बहुत
0: एफएम 101 लाहौर के लिए।
1: एफएम 101 जो है वो पूरी दुनिया में आप सब जानते हैं, एफएम की जो फ्रिक्वेंसी है उसको सुना जाता है, पसंद किया जाता है। सो आप ये कह लें कि इंडस्ट्री के अंदर एक पॉइंटर के तौर पर हैं आप। इवन मैं आपको बताऊँ कि मीडिया में बहुत से हमारे दोस्त जो इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम कर रहे हैं, उनका ताल्लुक भी रेडियो पाकिस्तान से है, एफएम इंडस्ट्री से है, एफएम से कहीं ना कहीं उनकी जुड़त होती है, क्योंकि रेडियो इज़ अ नर्सरी एक नए बंदे के लिए, उसकी इब्तिदा जो है।
0: बिल्कुल सही।
1: अब जितने भी बड़े आर्टिस्ट पुराने वक्तों के भी देखें और अब के भी, सो उसका जो बेसिक इंस्टीट्यूट है ना वो रेडियो है और रेडियो पाकिस्तान है। सो रेडियो पाकिस्तान के साथ जुड़ना, चाहे वो किसी भी स्टेशन से आप हों, आपके लिए, हम आप सब के लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात होती है, और यकीनी तौर पे आज आप भी हमारे साथ हैं। अली भाई, 101 इंटरनेशनल की ट्रांसमिशन को इस वक्त सुना जा रहा है पाकिस्तान भर में, और आपकी आवाज़ पाकिस्तान भर में गूंज रही है। रेडियो इंडस्ट्री जो है ना, ये बड़ी मज़े की है।
0: बिल्कुल सही।
1: सो आप भी सिंस लॉन्ग टाइम यू आर इन अ रेडियो इंडस्ट्री, कैसा लगता है आपको रेडियो में काम करना, रेडियो में लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, माइक्रोफोन के साथ दोस्ती?
0: खान साहब, बात यह है कि रेडियो ने बहुत कुछ सिखाया है। रेडियो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एकेडमी है। ऑल्दो आई सेड मेनी टाइम्स के मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ को देखने का, घूमने का इत्तेफाक हुआ, स्टडी भी की, लोगों से इंटरेक्ट भी किया, लेकिन जितना रेडियो पाकिस्तान से सीखा
1: सर,
0: आज मैं अगर कुछ भी जैसा भी बोलता हूँ और कुछ भी कहता हूँ तो इट्स ऑल अबाउट, सारा का सारा जो क्रेडिट है वो रेडियो पाकिस्तान का।
1: क्या बात है।
0: और ये रेडियो पाकिस्तान का जो माइक है, इसकी जो एक वो वैल्यू है, उसका एक अपना क्रेज़ है, अपना चार्म है। और रेडियो डेफिनेटली हमारे लिए, हम कहीं पे भी जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं, तो रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 जो है हमारा है, हम उसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं।
1: अच्छा, वो हमारे साथ रहता है वैसे तो।
0: हमारे साथ रहता है
1: और ये हमारे साथ धड़कता है। अच्छा सर, आज अहमद साहब हमारा जो मौजू है, इट्स अ वेरी डिफरेंट, और नॉर्मली हम ना अपने बारे में जो सोचते हैं अली भाई, वो डिफरेंट होता है।
0: बिल्कुल।
1: और हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं वो डिफरेंट होता है। जैसे मैं, हमारा जो मौजू थीम ये है कि क्या हम दूसरों के लिए भी वही मैार रखते हैं जो हम अपने लिए रखते हैं।
0: yes.
1: ये एक्चुअली इट्स अ सेल्फ असेसमेंट, ये अपना मुहासबा है हम सब का कि हम दूसरों के लिए क्या मैार रखते हैं। यानी कि हम, अब इसमें दूसरों से मुराद ये कि कुल्ली तौर पर सब हमारे साथ जुड़े लोग, जो रिश्ते हैं हम उनकी बात करेंगे, हमारे साथ हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे साथ हमारे कारोबारी जो लेन देन या जॉब के जो मामलात हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें जो ना इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। सो दिस इज़ व्हाट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि हम दूसरों के लिए भी क्या वही मैार रखते हैं जो अपने लिए रखते हैं। क्या कहते हैं अली भाई आप?
0: हम सब, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो हमारी ज़िंदगी है बहुत ही प्यारी सी, जो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें अता की है, इसमें हम यूजली क्या होता है कि हम दूसरों के बारे में वो चीज़ नहीं सोच सकते जो अपने बारे में सोचते हैं। और होता कुछ इस तरह से है कि हमारी जो थॉट्स होती हैं वो अपने लिए कुछ हो रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ी सेइंग है कि दुनिया का सबसे आसान तरीन काम है क्रिटिसाइज़ करना।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: और दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है कि आपने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करनी है, खुद का एहतसाब। तो ये मतलब जब अपने पे बात आती है हमारे, तो हम बोल पड़ते हैं, हमारा जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो जाता है, और हम जो है ना बस वो हाई

0: पर होते हैं, अग्रेशन में आते हैं। और ये आजकल भी देखें ना, जो एक रिलेशंस की जो बहुत सारे रिश्ते हैं उसके जो फेलियर है वो इसी वजह से है कि बर्दाश्त कम है, और हम अपने लिए वो नहीं सोचते, दूसरों के लिए वो नहीं सोचते जो हमें ख़ुद के लिए सोचना है, और ख़ुद के लिए जो सोचते हैं वो दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये पॉसिबल हो सकता है।
1: बिल्कुल ऐसे ही। और हम बड़ी प्यारी आपने बात की बर्दाश्त, और वो कहते हैं ना दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत जो है ना वो कुव्वत है बर्दाश्त है।
0: सर ये भी एक बर्दाश्त है ना कि आपने खुद पे कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल करके आपने किसी की तारीफ करनी है और किसी के बारे में अच्छा सोचना है।
1: वाह वाह,
0: ये भी एक बर्दाश्त है ना कि आप बर्दाश्त करके अपने आप को मतलब उस अना के जो है उधर से निकाल के तो आप किसी के बारे में अच्छा सोचें, किसी के बारे में अच्छा जानें, किसी के बारे में अच्छी थॉट रखें। और बाज़ का हमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम एकदम से अपने, जैसे आपने कहा कि जजमेंट कर लेते हैं, फैसले सुना लेते हैं, लेकिन हम उसको जो है ना वो एक पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। अगर हम उस पर सोच से लें और मुस्बत सोचें कि यार हो सकता है कि इसका कोई दूसरा रुख बेहतर भी हो सकता है, तो उससे रिश्ते भी बचते हैं।
1: अच्छा, एक मज़े की बात यह है कि जब डिस्प्यूट होता है ना किसी के साथ, अहमद, हम क्या करते हैं कि हम फैसला सुना देते हैं। अच्छा, हम ये नहीं देखते कि यार जिससे डिस्प्यूट हुआ, जिसके साथ हमारे को मसला है, इसके साथ हमारा कितना अच्छा ताल्लुक रहा, गुजरा, वो अच्छे पल, वो अच्छी यादें, वो अच्छी मेमोरीज, वो अच्छे लम्हात, वो सब हम पसे पुश्त कर देते हैं। और फिर उसकी एक गलती जो होती है ना उसको हम बुनियाद बना के ना हम अपने ताल्लुक को और ख़राब कर देते हैं। सो कहीं जगह पे आपकी अच्छी मेमोरीज भी होती हैं, हम उसको याद नहीं करते। यू एग्री?
2: बिल्कुल ऐसे ही है। देखा जैसे बहुत अच्छा एक पॉइंट आपने रखा है कि जब इंसान गुस्से में होता है तो इंसान पिछली सारी चीज़ें भूल जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, टाइम। कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी नैरेटिव बनाने से पहले ना आपको उस चीज़ को टाइम देना चाहिए, बेशक वो कोई भी रिश्ता है। अगर आप टाइम देते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, तो आई गेस कि आप जो है ना उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकते हैं उस चीज़ को लेकर। वो आपके रिश्तेदार हों, आपके दोस्त अहबाब हो, या आपके ब्लड रिलेशन से कोई भी हो, तो मेरे ख्याल से जो ना टाइम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल ठीक है जी, वक्त सच में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर भी आपको सोचना चाहिए। अच्छा सर, कुछ कॉल्स का सिलसिला भी जारी है
0: जी, जी
1: तो हम वो भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरा दिल कर रहा है कि एक आपको ट्रैक ना सुनवाया जाए।
0: बिल्कुल सुनाना चाहिए।
1: म्यूजिक सुनते हैं आप?
0: हमारे लिस्टनर, हम सुनते भी हैं सुनाते भी।
1: अच्छा, किसको सुनाते हैं ज़्यादा? मैं सुनाऊंगा तो मैं दो खरी खरी सुना दूंगा, वो तो नहीं सुनाते?
0: नहीं बिल्कुल।
1: अच्छा, नहीं
0: माइक के ऊपर तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता।
1: माइक पर रिस्क नहीं ले सकते।
0: हमारे हमारा स्लोगन FM 101 का कि लोगों से अच्छी बात,
1: अच्छी बात, रेडियो पाकिस्तान का,
0: रेडियो पाकिस्तान का,
1: तो अच्छी बात
0: पॉसिबल ही नहीं है जी।
1: अच्छा, लेकिन वैसे आम जिंदगी में सुना देना
0: सर, पर्सनल और नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है?
1: नॉर्मल लाइफ में आप हो रहा है, रेडियो लाइफ में आप हो रहा है?
0: हाँ ऐसे हो सकता
1: है ना। अच्छा, इसको ये भी कह सकते हैं यार, जाहिर बात है आप रेडियो पे आपने आर्टिकुलेट करना होता है, थोड़ा एक्सप्रेशंस, थोड़ी चीज़ें, और आपको लोग सुन रहे होते हैं, आपका एक एक एक होस्ट का, एक सामने का एक बड़ा अच्छा ताल्लुक होता है। सो पीपल लिसन यू वेरी केयरफुली, सो बी केयरफुल।
0: सर
1: अहमद, आपके लिए खास तौर पे
0: मैंने फरहान भाई एक था वो आर्टिकल पढ़ा बहुत साल पहले, तो उसमें मुझे कुछ याद रह गया कि ऑथर ने लिखा हुआ था कि जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी कहीं ना कहीं लड़ाई होती है,
1: नॉर्मल लोगों की लड़ाई होती है।
0: और इट्स नॉट अ बिग डील।
1: अच्छा, वैसे ये भी कहते हैं कुछ बहुत ज्यादा लड़ता है ना उसको कहता है या तू नॉर्मल लगना है, तू नॉर्मल ही लगना मेरे।
0: ये भी पॉसिबिलिटी
1: है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ यार, लड़ाई से मुराद ये है कि आप इख्तलाफात हो सकते हैं, क्लैश हो सकता है ना। मुझे एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही, वो पिछले दिनों हमारे पास एक इंटरव्यू के लिए आया, तो उन्होंने कहा यार अगर आपको किसी से इख्तलाफ है, किसी से नाराजी है, या कोई आपने इनकार करना है, सो लर्न दैट, उसको सीखें, इनकार करना सीखें, कि कैसे इनकार करना, उसकी भी तहजीब होनी चाहिए, उसकी भी तमीज होनी चाहिए,
2: अल्फाज का चुनाव उसका आपको बेहतर होना चाहिए, कि लोगों को फील ना हो कि आपने जो है ना कुछ गलत किया वहां।
1: हां, लव सर, लव तो घायल कर देते हैं,
0: लेकिन फील बाजू का तो होता भी है।
1: हाँ, होता है,
0: होता है
1: सर, ये लव्स
0: सेंसिटिव लोगों को होता है,
1: ये लव्स घायल कर देते हैं और ये लव्स ही माइल भी कर देते हैं। तो इसीलिए बड़ा एहतियात, लव्स जो है ना ये सर, ये बहुत बड़ा हथियार है।
0: बिल्कुल,
1: आप यकीन है जंग ही सारी लफ्ज़ों की है
0: सर, वो है लफ्ज़ों से सर, वो पहले आपने सुना होगा कि ये लफ्ज़ों की शरारत है।
1: हाँ,
0: संभल कर कुछ भी लिखना तुम। मोहब्बत लफ्ज़ से लेकिन यकसर हो भी जाती है।
1: अच्छा, इसमें हम जरूर आपसे पूछेंगे ये मोहब्बत लफ्ज़।
0: नहीं, मैं आपने सियालकोट में मुझसे शो किया उसमें पूछा था।
1: नहीं, मैं जा रहा हूँ कि ये जो लफ्ज़ शरारत है, आपने कही अक्सर हो जाती है एंड पे, ये
0: अक्सर हो भी जाती है।
1: अच्छा, इस पे हम जरूर बात करेंगे, ये अक्सर जो हो जाती है।
0: मैं उम्मीद रखता हूँ कि आज आप मेहमान बन गए हो तो आप कुछ एहतियात जो है बरतेंगे।
1: नहीं नहीं, आप मेरे सर आंखों पे
0: जी जी,
1: लेकिन इस फिक्रे के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। एक तो मोहब्बत हो जाती है
2: जी,
1: और अली साहब ने कहा मोहब्बत अक्सर हो जाती है।
0: अली साहब पे नहीं, मतलब हम सारे बैठे हैं, सारे मतलब कर सकते हैं बात।
1: चले, ये इस पे हम थोड़ा से बात तो कर सकते हैं ना। एक है मोहब्बत हो जाती है
0: जी जी,
1: फिर एक है मोहब्बत अक्सर हो जाती है। ये अक्सर वाला जो है ना, इस पे हम बात करेंगे। अभी एक अली भाई, आपको बड़ा ही दिलकश सा मैं गीत सुनाने जा रहा हूँ
0: जी सर,
1: और मैं इसको अपने शो के आगाज में इसलिए लगा रहा हूँ कि ये कह लें कि काइंड ऑफ सिग्नेचर सॉन्ग बन गया हुआ है। बट माय लिसनर रियली लव दिस, और आपको भी अच्छा लगेगा।
0: बिल्कुल सही।
1: और चूंकि मोहब्बत की बात हुई है, सो मोहब्बत में है ना अपना हाले दिल भी बयान करना होता है, और हाले दिल बयान करने के लिए आपको को दिल वाला चाहिए। आपके सामने अगर वो दिल वाला हो तो फिर ही आप अपना दिल का हाल बयान कर सकते हैं। सो जनाब, ये जो ट्रैक चलाने जा रहा हूँ ये भी कुछ इसी तरह है कि अपना हाले दिल। इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग ट्रैक एंड दिस इज़ फॉर ऑल द ब्यूटिफुल lovely and lively listeners of Radio Pakistan FM 101. This is RJ Farhan Khan from Station of the Nation, Lahore se meri awaaz Pakistan bhar mein jahan jahan pahunch rahi hai sabhi sunne walon ke naam.

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बढ़ती लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि किसी भी इलाके में बिजली की बंदिश 2 घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि डिजिटल मीडिया आवाम से राबता बरकरार रखने का एक मौसर जरिया बन चुका है। महकमे इंसदाद दहशतगर्दी ने आज पेशावर में फायरिंग के तबादले के दौरान 5 दहशतगर्द हलाक कर दिए। दुबई में खवातीन के T20 एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 4 विकेटों से हरा दिया।
1: This is FM 101.

0: बड़ी वजह ये भी है, आपकी लापरवाही, आपकी बेपरवाही, आपकी तवज्जो ना होना, आपका वक्त ना देना, आपको जो मोहब्बत का सलूब है ना उसको जानना तो बड़ा ज़रूरी है। मतलब आप किसी के लिए, अगर कोई आपके लिए इतनी चाहत कर रहा है, आपके लिए जान मार रहा है जैसे कह रहे हैं ना, आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है लेकिन आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, तो ठीक है। अब इंसान है, इंसानों से गलतियाँ भी होती हैं, 100% तो कोई होता नहीं ना। अगर आपके सारे पैरामीटर्स पे कोई पूरा उतर भी नहीं सकता, बाज़वा इसमें भी हम बात करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, लेट्स सी हू इज़ विद अस। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से रिमशा।
0: आप लाहौर से रिमशा बात कर रही हैं, रिमशा कैसी हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है कि आपके मेहमान भी ठीक होंगे और आप भी ठीक होंगे।
0: बिल्कुल, हम मज़े में हैं जी, बहुत ठीक हैं हम।
2: आपने बताया सबको कि मेहमान आए हुए हैं?
0: नहीं नहीं, उनको पता, मैंने बताया जी आपको। आप तो खैर वो क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट मेहमान है ना, वो इत्तेफाकन मेहमान है हमारे। अच्छा जी, जी रिमशा क्या कहेंगी आप? अच्छा रिमशा मुझे बताओ, ये एक बात तो बताओ, हम दूसरों की जो गलतियाँ ना वो याद रखते हैं, अपनी क्यों भूल जाते हैं?
1: अपने क्यों भूल जाते हैं? हम दूसरों की गलतियों से याद तो रखते हैं, लेकिन जो अपनी गलती होती है वो हम लोग इसलिए भूल जाते हैं कि हमारी याददाश्त में फर्क होता है थोड़ा बहुत। हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, हम गलती करके कभी भी नहीं मानने वाले, क्योंकि इंसान है ना, खता का पुतला है, वो कभी भी नहीं मानेगा। झूठ तो हमारी फितरत में रख रख के भरा हुआ है।
0: अच्छा
1: जी बिल्कुल, हम अपनी गलती कभी भी नहीं मानते, ये बात है इंसान के अंदर।
0: ये तो है, हर बंदा हर दर्जे पे कहीं ना कहीं अपनी गलती मान नहीं रहा होता, वो कहता यार नहीं मैं ही ठीक
2: हूं। फरहान भाई वो है कि सारा आलम हू का है,
0: झगड़ा
2: मैं और तू का है, तो ये वही है,
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
2: मैंने ये नहीं किया, मैंने ये कर दिया, आपने ये नहीं किया, आपने क्यों नहीं किया, ये जो क्यों है ना, ये भी बड़ा एक मुश्किल
0: करते हैं।
1: हम इंसान है ना, हम दूसरों की गलतियों को, हम दूसरे के नेचर के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम कभी अपने गिरेवान में जाके कभी भी नहीं देखते, लेकिन देखना चाहिए कि हम में क्या गलती है, हम क्या कर रहे
0: हैं।
2: तो आज फिर आप प्रॉमिस करती हैं कि आप नेक्स्ट देखा करेंगी आप?
1: लेकिन अगर मैं आपके टॉपिक पे बात करूं, आप जो कह रहे थे ना कि माफ कर देना चाहिए, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं माफ कर भी देती हूं और माफी मांग भी लेती हूं।
2: अरे वाह, वेरी गुड।
0: मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी मगर
2: फिर भी
0: हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब करता
2: है। क्या बात है, बहुत अच्छे, कमाल
0: है जी। तो बाज़ लोगों में ये फन होता है ना, वो झूठ बोल के भी लाजवाब कर देते हैं।
2: मुझे वो आ गया, एक बंदा याद आ गया।
0: अच्छा
2: आपको भी?
0: असल में हमारे साथ जुड़े बहुत से ऐसे बंदे हैं
2: जी जी,
0: वो जिनके पास बड़ा फन होता है, ओवरऑल दुनिया में हैं लोग जो झूठ बोलने का बड़ा फन होता है, और ऐसी बहादुरी और नफासत से झूठ बोलते हैं कि आपको सच के करीब लगता है।
2: बिल्कुल है, ये भी बहुत बड़ा हार्ट है।
0: रिमशा आप लाइन पे
1: हैं कि? चलिए भाई, ऐसा भी होता है ना कि हम लोग किसी को अगर कहते हैं ना कि हम किसी को माफ करते हैं या माफी मांग ले, वो अक्सर इंसान सोचते हैं कि हमारी शान ना कम हो जाए, हमारी वैल्यू ना कम हो जाए, इसलिए भी वो गुरूर के मारे जो है ना माफी नहीं मांगते ना माफी देते हैं। लेकिन इंसान को ये नहीं करना चाहिए, गुरूर नहीं रखना चाहिए, कि जो गुरूर होता है वो एक दिन टूट जाता है। शान हमेशा नहीं रहती इंसान के पास, शान और शौकत हमेशा इंसान के पास नहीं रहती है, वो तो जब वक्त बदलता है सब कुछ ही बदल जाता है। वैसे तो मैं ये है कि मैंने अपनी लाइफ में काफी कुछ बर्दाश्त किया, अगर मैं कहीं
0: अपनी अना के कैदी थे वरना हमारे बीच कोई दूसरा ना था।
2: अरे वाह क्या बात,
0: वो एक हमारे दोस्त हैं, उनका ये अना के ऊपर एक अक्सर हम कोट भी करते हैं, अना की बात है वरना मोहब्बत अब भी बाकी है। इमरान नदीम साहब, उससे मेरी मुझे उसकी जरूरत अब भी बाकी है। रिमशा बहुत शुक्रिया, जीती रहें, सलामत रहो, खुश रहो।
1: और मैं जाते जाते ये कहूंगी आप बादाम खा लिया करें प्लीज,
0: आप बादाम भेज दें ना, जल्दी से भेज दें।
1: नहीं मैं अगर वो जो ये आपके पास दो दो क्यूट क्यूट भाई आए हैं, मैं इनको कहती हूँ मैं आपकी बहन हूँ ना, इनको बादाम दे दें जरा मेरी तरफ से,
0: इनकी तरफ से बादाम आप गिफ्ट कर दें, मतलब अपने बादाम तोड़े थे पार। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: इनको बताएं मैं बिजनेसमैनों के शहर से आया हूं।
0: हाँ, डील के बगैर काम नहीं करते
2: ये।
0: अरे जनाब, दैट वाज रिमशा विद अस, थैंक यू सो मच रिमशा, जीती रहे, खुश रहे। और बादाम सर वो कह रहे हैं तुसी कुछ
2: भेजेंगे हमें?
0: हाँ नहीं नहीं, वो नहीं भेजेंगे मुझे, बादाम आपने गिफ्ट करने हैं रिमशा की तरफ से,
2: इजाजत नहीं, मेरा टाइम जाने का। अच्छा, हाँ जी मैंने जाना है।
0: नहीं नहीं सर,

0: वो रिमशा ने कहा है,
1: रिमशा ने तो मतलब हमें हिला के रख दिया, मतलब
0: नहीं सर बादाम ही गिफ्ट करने, उन्होंने कहा जी आप इनको बादाम खिलाएं,
1: कल बादाम का
0: मैंने इनको बताया है
1: जी,
0: मैंने बताया है जो इंग्लिश बादाम है वो बहुत ही महंगे हैं, मेरे ख्याल 2-2.5 हज़ार रुपए
1: महंगे है ना, वो लेके आएंगे तो जिस पर्पस के लिए आपका वो
0: पर्पस
1: भूल जाएगा,
0: मतलब वो आप वो जब खरीदने जाएंगे ना उसके बाद यार मैं क्या लेने आया था। तो एक कॉलर ने देखते हैं, लेट्स सी हू इज विद अस। अस्सलामुअलैकुम, हेलो,

0: यार को हमने जा बजा देखा, हाय हाय हाय हाय हाय हाय। और जनाब वेलकम बैक। और अली भाई किसी खास और किसी डीप सोच में थे मेरे ख्याल में।
1: बिल्कुल,
0: किसकी सोच में थे?
1: मैंने ये सुना एक बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में, बहुत ही प्यारा सा कलाम
0: आबिदा परवीन जी।
1: तो मुझे ना वो इसी हवाले से कहीं मैं खो गया तो अमजद इस्लाम अमजद साहब की वो एक,
0: अच्छा
1: मुझे याद आ गई कि ये मोहब्बत अब नहीं होगी,
0: नहीं होगी,
1: ये कुछ दिन बाद होगी।
0: कब?
1: गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी। सितारे जो दमकते हैं किसी के चश्मे हीरा में, मुलाकातें जो होती हैं जमाले अबरो बारा में, ये नाबाद वक्तों में दिले नशाद में होगी मोहब्बत अब नहीं होगी,
0: नहीं होगी,
1: ये कुछ दिन बाद होगी। गुजर जाएंगे जब ये दिन ये उनकी याद में होगी।
0: वाह,
1: अब आप खो गए।
0: वो कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
1: वाह
0: ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
1: अरे वाह।
0: अहमद आप कुछ सुनाना चाहेंगे?
2: सर मैं
0: सोच में पड़ेंगे।
1: अहमद अहमद का मैं बताता हूँ कि अहमद सोच रहे हैं कि हम तो फलक के लोग थे, साकनाने करियाए महताब थे।
0: हाँ
1: ये अहमद कह रहे हैं।
0: अच्छा,
1: अहमद कह रहे हैं कि हम तो फलक के लोग थे, साकनाने करियाए महताब थे, तुम्हारे हाथ कैसे आ गए, हम तो बड़े नायाब थे।
0: नायाब ऐसे नायाब तो हैं वैसे।
1: बिल्कुल है, इसलिए मैंने कहा
0: नायाब हैं तो आज यहाँ पे बैठे हैं।
1: बिल्कुल ऐसे
2: सर, आपका बहुत शुक्रिया।
0: नायाब हैं तो आज रेडियो पाकिस्तान के माइक के सामने ये बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये नायाब ही लोग हैं। सो जनाब 04221100101 हमारे रबते का नंबर जिस पे आप लोगों की कॉल्स हम मौसूल कर रहे हैं। अमारा बेग ने हमें कॉल की स्पेशली, और थैंक यू सो मच अमारा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और अमारा जो है ना कहती मैं आपसे नाराज़ हूँ
1: आपसे।
0: हाँ मैं माफ़ी मांग लेता
1: बनता हूँ आपसे, नाराज़ बनता मैं भी, ये भी कुछ देर के बाद हो जाऊँगा
0: अगर चाय ना मिली। मैं जनाब आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे आपसे भी
1: नहीं
0: हमारा से भी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम
0: जी सर। अल्लाह का शुक्र। कौन सा, कहाँ से
3: है जनाब? दोबारा कॉल कर दिए मैंने, सैयद गुलाम अब्बास करोड़ा से, सियालकोट से। अली भाई क्या हाल?
1: अरे वाह क्या होम ग्राउंड।
0: दोबारा ठीक हो
1: गुलाम अब्बास भाई? अल्लाह का शुक्र आप सुने ठीक ठाक हैं, हरियत से
3: अल्लाह के शुक्र।
0: क्या कहेंगे दोबारा, क्या कहेंगे?
3: दोबारा यही कहूंगा कि किसे भी कीस ना हुआ मैं, पहले अपनी ते मकावा मैं। हर गल दे हुंदे दो मतलब, बस खुद नू ए समझावा।
0: वाह वाह
1: क्या बात है,
0: बिल्कुल ठीक सर।
3: ये बात ये है कि जो ना हुक्मे इलाही हुक्मे रसूल सब अपनी जगह, लेकिन हमें दिखावे मार गए हैं दोस्त। हम दिखावों के कायल हो चुके हैं और दुनिया सिर्फ दिखावा है।
1: टॉकिंग अबाउट स्टेटस सिंबल।
2: Right, बिल्कुल।
3: तो हम इस चीज को समझने के लिए जो है ना हमारे पास एक बहुत बड़ा जरिया कुरान पाक है। हम इसको समझे इसके साथ से रहनुमाई लें ना, तो हमें वो कोई चीजें जो है ना वो दूसरी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं।
1: बिल्कुल सही।
3: और हमारे पास जो रोल मॉडल हैं, हमारे पास जो जिंदगियां हैं, हमें ये नहीं हमें एहसास होता कि रब ने ये कायनात हमारे लिए बनाई है। इस पूरी कायनात को सजा दी है, हमारे लिए सजाया है, और फिर हमारे अंदर वो आकर बैठा हुआ है, हमारा दिल का घर है, हर दिल में वो है।
0: बेशक।
3: तो जब हर दिल में वो है तो फिर हम एक दूसरे के बारे में ये एहसास रखें कि भाई उसके दिल में भी अल्लाह की ज़ात मौजूद है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बजा फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक सर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका, आपने दोबारा हमें याद किया। सलामत रहें, खुश रहें। ओके फिर।
3: अलामा इकबाल साहब का एक शेर है कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी।
0: थैंक यू।
3: अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी।
0: जनाब दैट वाज गुलाम अब्बास साहब हमारे साथ है ऑल द वे सियालकोट से, हमें कॉल करें। थैंक यू सो मच आप सबका। मैं क्विकली कुछ कॉल्स ले लूं ताकि कुछ दोस्त हमसे नाराज हो जाते हैं।
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से?
4: जी मोहम्मद यासीन कुरैशी।
0: जी यासीन भाई क्या कहेंगे आपके पास? आपकी कॉल लग गई सर, आप लाइव हैं इस वक्त।
4: मेहरबानी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया
0: सर। सर सर जी, यासीन भाई हमारे आज के मौजू के हवाले से कुछ कहेंगे?
4: मुझे मेरे को थोड़ा सा समझाओ, मैंने अभी अभी ये चार्ज करके बैटरी जो ना मोबाइल के अंदर डाली।
0: अभी असल में टाइम बड़ा कम है एक्चुअली, मैं चाह रहा हूँ कि क्विकली फिर कॉल्स ली जाए, एक दो कॉल और फिर उसके बाद हमने वाइंड अप करना है। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आपको खुश रखे।
1: और
0: जनाब आपकी पार्टिसिपेशन तो होगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से?
5: जी फरहान भाई।
0: जी जी कौन साहब?
5: मीर हसन बिरोई।
0: जी जी जी मीर हसन साहब क्या कहेंगे?
5: मेरा दुआ सलाम हो जाए फरहान भाई से बस, और खैरियत है ठीक ठाक?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह
5: को भी सलाम।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी दुआ
5: का। हमारा कस्टमर थोड़ा कड़ा है बस।
0: बिल्कुल आप कस्टमर से मिले, बिल्कुल वो पहले ग्राहक पहले
1: भाई को पहले देखो
0: यार। सलामत रहो भाई,
1: कस्टमर को देखो,
0: कस्टमर पहले। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम।
1: कस्टमर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
0: या कस्टमर फर्स्ट,
1: यस,
0: है बाकी सब लास्ट। सर सर सर कौन सा?
6: कैसे साजिद आलम है लाहौर से।
0: जी साजिद भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं, एक मिनट है आपके
6: बहुत
0: पास।
6: बात हो रही है, और जब हम हाईलाइट करते हैं ना खाने के बारे में दावतों तो हम करते हैं
0: सर,
6: जो चार बंदों को खिला दिया, 100 को खिला
0: सर,
6: दिया,
0: सर, सर, को खिला दिया। बिल्कुल ऐसे ही है,
6: तो हम उसको हाईलाइट करते हैं, ये बन जाती है रियाकारी।
0: बिल्कुल ठीक है।
6: जो जो मेरा अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह बेटा सर पे बैठा है,
0: बेशकों
6: को खिला है, सोचा हमने।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका।
6: कितने पत्थर में कीड़ा है उसको भी खिला रहा है,
0: बिल्कुल खिला
6: रहा है, किसी को बताता है कि मैंने किसको खिलाया है?
0: वो तो रब है ना सर,
1: वो
0: तो रब है ना, बेशक
6: जी,
0: वो तो रब है सर।
6: इनको कहते हैं ना, जो एक हाथ से किसी की मदद करे दूसरे हाथ को पता नहीं,
0: बेशक बेशक, बिल्कुल ऐसे जी, एक हाथ से मदद करे दूसरे हाथ को पता ना चले, और ये बड़ी बड़ी बात है अगर हम ऐसा कर लें।
6: जी है या नहीं जी? जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अल्लाह वाले
0: सर,
6: आज मस्जिद में बैठ कर खुतबा कर रहे थे खतीब साहब, वो कह रहे थे कि जो अल्लाह वाले किसी के पास गए, उनसे पूछा कि अल्लाह वाले यहाँ पे कौन रहता है, जिसका मर्तबा बहुत बुलंद है, उसने बोला कि एक मिस्त्री है, लोहा कूटने वाला है, जो मजदूर है, मजदूरी करता है सारा दिन।
0: सर सर सर सर आपके पास सिर्फ आधा मिनट है, क्योंकि कॉल बिल्कुल हम इख्तिताम पे हैं।
6: हाँ बस मैं एक मिनट टाइम लगा, तो उसने बोला कि इसकी इसके घर जाते हैं, घर गए तो वो उसकी वफात हो चुकी थी, बीवी से पूछा, उसकी बीवी से पूछा कि किसमें खास बात क्या थी, उसने बोला कि रात हमारे हमसाए में एक बादशाह रहता था, वो पूरी रात इबादत कर पूरी रात इबादत में लगा रहता था, तजद पढ़ता था, तो उसने उसने मतलब उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे भी जिंदा कितना देता, मैं भी दिन रात अल्लाह की इबादत करता। दूसरी बात उन्होंने बोला कि इसमें कौन सी अच्छाई थी, उसने बोला कि जब अजान आती थी ना हथौड़ा मार रहा होता था कि इसने आगे की तरफ हथौड़ा नहीं फेंकता था, वो पीछे की तरफ फेंक देता था, उठ कर मस्जिद की तरफ दौड़ निकलता था।
0: बिल्कुल ठीक, क्या बात है, बहुत अल्लाह की दुआ करता था, बेशक बेशक,
6: अल्लाह ताला ने उसको बहुत
0: सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच, आप सबका, आपकी कॉल्स अब भी चल रही हैं, लेकिन अली भाई आपको चाय भी पिलानी है, अहमद ने खाना खिलाना है,
1: मेरे पे मतलब मामला सारा ले हैं। लिसनर मुझे सोचते
0: नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको चाय पिलाएं, मैं टाइम ज़ाया ना करूँ, वक्त ज़ाया नहीं होना चाहिए आपको। अच्छी
1: समझ रहा था कि भजन आया तो लेके आएंगे कुछ,
7: उम्मीद पे दुनिया कायम है,
1: ये सैर सपाटा करके आ गए।
0: हाँ उम्मीद पे सच में दुनिया कायम है, और उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए,
1: बिल्कुल
0: उम्मीद कायम रहनी चाहिए, उम्मीद जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए ना,
1: बिल्कुल
0: पॉजिटिव होनी चाहिए, इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा।
1: हाँ साहब, जिंदगी की कामयाबी के लिए
0: सर
1: हर इंसान जो कामयाब होना चाहता
0: फार्मूला
1: है जी, फार्मूला जी
0: मैंने वो चाय कम पिए,
1: उसके लिए कि पॉजिटिव वाइब्स
0: ओके
1: और मोड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज बिलीव ऑन द पॉजिटिविटी ऑफ लाइफ, और फ्लेक्सिबल माइंड हमारे में इतना कंट्रोल होना चाहिए अहमद भाई कि अगर कोई हमें बात कर दे तो हम उसको थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। मैं समझता हूँ कि वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बाज़ बातें बर्दाश्त होती नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो कुछ थोड़ा सा कंट्रोल,
7: जैसे कि आपने मेंशन किया कि पॉजिटिव होना चाहिए ना, कोई बात कर भी रहा है अगर इतना पॉजिटिव आप सोचेंगे ना,
1: उसके साथ बैठ के
7: बिल्कुल
1: सोल्यूशन उसका कर सकते हैं, तो फिर हाँ साहब कामयाबी हो सकती है
0: सर।
1: बिल्कुल जी, اجازت لینی
0: جی احمد آپ کو چائے پلانی ہے
7: سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک پہلی بات تو بہت اچھی بات کی ہے کہ برداشت ہونی چاہیے اور انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک فارمولے کی بات کریں نا جس کے تحت آپ اسکول رہے ہیں آپ کو فرق نہ پڑے کسی چیز سے تو انسان سے نا ایکسپیکٹیشن کا لیول تھوڑا لو کر لیں.
0: بہت اچھا.
7: اگر ایکسپیکٹیشن لیول لو ہوگا آپ کو امید نہیں ہوگی اگلے سے تو پھر آپ کے لیے وہ کچھ بھی کرے وہ برا کرے اچھا کرے تو آپ کے لیے جانا اچھا کرے گا تو آپ بہت خوش ہو جائیں گے برا کرے گا تو آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی ہی نہیں ان سے. تو میرے خیال سے یہ چیز آپ کو فالو کرنی چاہیے اگر آپ چاہ رہے ہیں
0: جی علی
1: خان صاحب. اجازت چاہوں گا ریڈیو پاکستان لاہور ایف ایم 101 کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ, ہمارے پروڈیوسرز ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر جو یہاں پہ ان کا بہت بہت شکریہ, انٹائر ٹیم ہمارے بہت ہی پیارے آر جے ڈاک صاحب اور فرحان خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ایف ایم 101 کے لاہور کے جو لسنرز ہیں ان کا اسپیشلی بہت بہت شکریہ. اٹس اے بیوٹیفل میموری آف مائی لائف, اور آل دو کہ میں بہت ساری میموریز اکٹھی کرتا ہوں اپنی زندگی میں, یہ اللہ کی بلیسنگز ہیں. اور آج کا دن میرے لیے بہت بہت ایک پراؤڈ مومنٹس ہیں, اور میں نے یہاں پہ پروگرام کیا, لوگ آئے ان کے ساتھ بات چیت کی, تھینک یو سو مچ ہر انسان کا, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہاں صاحب ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو, حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو, چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو. سو فائنلی آر جے لیکوریش از گوئنگ ٹو سائن آؤٹ. ٹیک کیئر آف یور سیلف, ہیو اے بیوٹیفل نائٹ, گڈ نائٹ, سویٹ ڈریمس, اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ احمد علی بھائی, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں بھی چاہوں گا اجازت, اسی اپنے پن کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور زندگی نے تباہ کی سانسوں نے وفا کی. آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کے روز, اور اسی دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں, مسکراہٹوں کے دیپ روشن کرتے رہیں, اور زندگی بہت خوبصورت ہے, اس کو انجوائے کیجیے, معاف کیجیے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ نگہبان اینڈ لو ٹو آل.

0: ओए सारा दिन गाना सुनता रहे, पसंद रसूख हुए
1: दादाजी। दादा सुनो पेजने दाखो अली जफर दे।
0: होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देख, हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान मिल जाए।

मोहब्बत खुद बताती है कहां किसका ठिकाना है। मोहब्बत खुद बताती है कहां किसका ठिकाना है, किसे आंखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है, रिहा करना है किसको, किसे जंजीर करना है, मिटाना है किसे दिल से, किसे किसे तहरीर करना है। घनौदा कब गिराना है, कहां तामीर करना है, उसे मालूम होता है, उसे मालूम होता है सफर दुश्वार कितना है। किसी की चश्म गिरिया में छुपा इकरार कितना है, शजर जो गिरने वाला है वो सायादार कितना है, शजर जो गिरने वाला है वो सायादार कितना है। सफर की हर सऊबत और तमाजत याद रखती है, सफर की हर सऊबत और तमाजत याद रखती है, जिसे सारे भुला डाले मोहब्बत याद रखती है, जिसे सारे भुला डाले मोहब्बत याद रखती है। मोहब्बत खुद बताती है कहां किसका ठिकाना है, किसे आंखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है।

मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है कि ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताजा की जरूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से टपकती हो, लहू में जगमगाती हो, हजारों तरह के दिलकश हसीं हाले बनाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की कि जैसे जैसे तिफले सादा शाम में एक बीज बोए और शब में बारहा उठे जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहां तक है। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की खू है कि ये इकरार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती। बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ हो, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है। कहो मुझसे मोहब्बत है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, समंदर से कहीं गहरी सितारों से सिवा रोशन, पहाड़ों की तरह कायम, हवाओं की तरह दाइम, जमीन से आसमान तक जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, जिस कदर अच्छे मनाजिर हैं, मोहब्बत के किनारे हैं, वफा के इस्तारे हैं, हमारे हैं, हमारे वास्ते ये चांदनी रातें सवरती हैं, सुनहरा दिन निकलता है, मोहब्बत जिस तरफ जाए जमाना साथ चलता है। कुछ ऐसी बेसकूनी है वफा की सरजमीनों में कि जो अहले मोहब्बत को सदा बेचैन रखती है, कि जैसे फूल में खुशबू, कि जैसे हाथ में पारा, कि जैसे शाम का तारा, मोहब्बत करने वालों की सहर रातों में रहती है। गुमा के ख्वाहिशों में आशियां बुनता है उल्फत का, यहन वसल में भी हिजर के खदशों में रहती है। और मोहब्बत के मुसाफिर जिंदगी जब काट चुकते हैं, थकन की किरचियां चुनते वफा की अजरकें पहने, समय की राह गुजर की आखिरी सरहद पर रुकते हैं, तो कोई डूबती सांसों की डोरें थाम कर धीरे से कहता है, ये सच है ना, हमारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिखी थी। धुंधला सा जो निगाहों के करीबो दूर फैला है, इसी का नाम चाहत है, इसी का नाम चाहत है। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है।

तो जनाब टेलीफोन लाइंस आपके लिए खोल दी गई हैं 9202540920250 और इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051। आहिस्ता बोलता हूँ अब 9202540920250। इस्लामाबाद रावलपिंडी का सिटी कोड 051 आपने नंबर से पहले लगाना है अगर आप कॉल करना चाहें। इसके अलावा पैगाम पहुँचा सकते हैं 4471 यानी 4471 पर। पैगाम के आगाज में 101 लिख लीजिएगा तो ही आपका पैगाम मुझ तक पहुंचेगा। आज आगाज ही मोहब्बत से हो गया जनाब, और मोहब्बत जहां डेरे डाल ले वहां और क्या होता है, कुछ नहीं होता वहां। इश्क जहां होता है, इश्क हो जाए तो कुछ और कहां होता है, कुछ नहीं होता वहां। इश्क जहां होता है,

0: से कॉल ले लेते हैं जनाब, और उसके बाद कुछ बातें कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम लियाकत बारकारा सोनाबाद, कैसे हैं भाई जी? ठीक है,
0: बहुत अच्छा हूँ जी, बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है,
1: हाँ शुक्र लगा, ठीक है। जबरदस्त प्रोग्राम शुरू हुआ है आज, और मोहब्बत से ही बकैदी है,
0: मोहब्बत ही होगी जनाब, शुरू में ही होगी
1: पूरे हिंद से, बिल्कुल ऐसे। और मेरा एक सवाल है कि मोहब्बत क्या चाहती है?
0: किसको?
1: देखिए मोहब्बत मैं भी कहता हूँ आपसे, और आप भी कहते हो,
0: मैं तो नहीं करता आपसे,
1: आपसे नहीं करता, किसी को तो कहते ही होंगे ना?
0: नहीं नहीं, आपसे भी करते हैं ना, हमारे सामने ही ना, चले बताए क्या कहेंगे। लेकिन आपने कहा मोहब्बत क्या कहती है, मोहब्बत तो बेचारी कुछ भी नहीं कहती, हम पड़े हुए पीछे मोहब्बत के, वो तो कुछ भी नहीं
1: चाहती क्या है,
0: अच्छा चाहती क्या है, ये उससे पूछेंगे जरा,
1: इसका मतलब है।
0: अच्छा अच्छा, मोहब्बत चाहती क्या,
1: रोशनी डालना, और इस बात से जरा, ये क्या चाहती है मोहब्बत,
0: क्या चाहती है, ठीक है,
1: दूसरों को भी चाहती है और अपने आप को भी चाहती है, मतलब हर चीज को चाहती है,
0: बस मोहब्बत तो मोहब्बत ही करती है फिर,
1: हाँ
0: ना। चलें, और कुछ कहेंगे?
1: थोड़ा सा मुझे बताना, ठीक है,
0: थोड़ा सा बताऊंगा आपको अल्लाह से, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

एक और कॉल लेते हैं लेकिन बंद हो गई। कोई बात नहीं जनाब, आतिर अली सैयद कहते हैं मुझे जनाब, और एफएम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप इसके साथ साथ। आपके टेलीफोन कॉल्स भी हैं, कुछ एसएमएस भी होंगे और बातें भी होंगी। मोहब्बत का जिक्र हो गया जनाब आगाज में ही, और क्या कह रहा था मैं कि इश्क हो जाए तो कुछ और कहां होता है, कुछ नहीं होता वहां, इश्क जहां होता है। तो ऐसा ही है जनाब, ये मोहब्बत का जज्बा हमारी जात के अंदर वदियत किया गया जज्बा कुदरत की जानिब से हर इंसान की जात के अंदर पाया जाता है, बस उभर आता है किसी लम्हे में, और वो लम्हा इंसान के ऊपर किसी फजल का लम्हा हुआ करता है, और यकीनन फजल का लम्हा ही हुआ करता है जबकि उसको लगता है कि मैं होश में था तो फिर उस पर मर गया कैसे। ऐसा नहीं है जनाब, होश में हम इंसान रहते हुए भी कभी नहीं हुआ करते हैं। इस मोहब्बत ने जब डेरे डालने होते हैं ये डाल लेती है, मालूम नहीं पड़ता। जब चुने जाते हैं तो ये वारिद हो जाती है एक वक्त में दो लोगों पर, और इसका मान रखने वाले, इसका पास रखने वाले अपनी जिंदगी के इस सफर में, इस मुसाफत में, उन राहों को हासिल कर लिया करते हैं जो राहें हकीकत में उनके लिए दरकार होती हैं, और जिन राहों तक पहुंचाने के लिए यह मोहब्बत उन पर वारिद होती है। कुछ लोग देर कर दिया करते हैं, मेरी तरह हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। मोहब्बत तो क्या, हमेशा देर कर देता हूं मैं हर काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढारस बंधाना हो, बहुत दरीना रस्तों पर किसी से मिलने जाना हो, बदलते मौसमों की सैर में दिल को लगाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। किसी को मौत से पहले किसी दुख से बचाना हो, हकीकत और थी कुछ उसको जाकर यह बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। हमेशा देर कर देता हूं मैं। और यहां देर करने की गुंजाइश हुआ नहीं करती है, ये लम्हों का खेल हुआ करता है, और उन्हीं लम्हों में फैसला होता है जब जब ये मोहब्बत वारिद होती है, कौन सी राह चुननी है, किस राह पर चलना है। मोहब्बत खुद बताती है कहां किसका ठिकाना है, किसे आंखों में रखना है, किसे दिल में बसाना है, रिहा करना है किसको, किसे जंजीर करना है, मिटाना है किसे दिल से, किसे तहरीर करना है, घनौंदा कब गिराना है, कहां तामीर करना है, इसे मालूम होता है सफर दुश्वार कितना है, किसी की चश्मे गिरिया में छुपा इकरार कितना है, जो शजर जो गिरने वाला है वह सायादार कितना है। सफर की हर सोबत और तमाजत याद रखती है, जिसे सारे भुला डाले मोहब्बत याद रखती है। तो बस ऐसा ही है और इतना ही है, इतने का मान रख लिया जाए और इतना ही समझ लिया जाए तो रखते सफर बांधने में आसानी रहती है, क्योंकि आगे के सफर की सोबतें और तमाजतें ये जज्बा खुद सिखा दिया करता है इंसान को। इंसान जो कि अक्सर कहा करता हूं बड़ा सख्त जान हुआ करता है, जिस कयामत का तसव्वुर भी नहीं कर सकता, वो कयामत गुजर जाती है, बीत जाती है और सह लिया करता है। तो इंसान तो चले जाते हैं, इंसान तो गुजर जाते हैं, इंसान तो सह लिया करते हैं, इंसान तो जी लिया करते हैं। इंसानों के पास बहुत रास्ते हैं,
लेकिन क्या है कि इस जज्बे ने डेरे डालने होते हैं, इसने इसने ठहरना होता है। हमें हैरत से मत देखो अब ऐसा क्या किया हमने, हमें हैरत से मत देखो अब ऐसा क्या किया हमने। जमीन इश्क है साहब, दोबारा हो भी सकता है।

तुमसे पहले भी मोहब्बत तो मुझे थी, लेकिन ऐसी मुंह जोर न थी।

मोहब्बत तो उसकी सूरत प्यासी पंखड़ी के होंठ को सैराब करती है। गुलों की आस्तीनों में अनोखे रंग भरती है, शहर के झटपटे में गुनगुनाती मुस्कुराती जगमगाती है मोहब्बत और उसकी सूरत प्यासी पंखड़ी के होंठ को सैराब करती है। गुलों की आस्तीनों में अनोखे रंग भरती है, शहर के झटपटे में गुनगुनाती मुस्कुराती जगमगाती है मोहब्बत के दिनों में दस्त भी महसूस होता है किसी फिरदौस की सूरत मोहब्बत और उसकी सूरत मोहब्बत अब्र की सूरत दिलों की सरजमीं पे घिर के आती और बरसती है। चमन का जर्रा जर्रा झूमता है मुस्कुराता है, अजल की बेनमू मट्टी में सब्जा सर उठाता है। मोहब्बत उनको भी आबाद और शादाब रखती है जो दिल है कब्र की सूरत मोहब्बत अब्र की सूरत मोहब्बत आग की सूरत बुझे सीनों में जलती है तो दिल बेदार होते हैं। मोहब्बत की तपिश में कुछ अजब असरार होते हैं। मोहब्बत आग की सूरत मुझे सीनों में जलती है तो दिल बेदार होते हैं। मोहब्बत की तपिश में कुछ अजब असरार होते हैं कि जितना ये दहकती है और उसे जा महकती है। दिलों के साहिलों पे जमा होती और बिखरती है मोहब्बत जाग की सूरत मोहब्बत आग की सूरत मोहब्बत ख्वाब की सूरत निगाहों में उतरती है किसी महताब की सूरत। सितारे आरजू के इस तरह से जगमगाते हैं कि पहचानी नहीं जाती दिले बेताब की सूरत। मोहब्बत के शजर पे ख्वाब के पंछी उतरते हैं तो शाखें जाग उठती हैं। थके हारे सितारे जब जमीन से बात करते हैं तो कब की मुंतजर आंखों में शमें जाग उठती हैं। मोहब्बत में जलती है चरागे आपकी सूरत मोहब्बत ख्वाब की सूरत मोहब्बत दर्द की सूरत गुज़िश्ता मौसमों का इस्तारा बन के रहती है। मुंडेरों पर चरागों की लोएं जब थरथराती हैं, नगर में नाउमीदी की हवाएं सनसनाती हैं, गली में जब कोई आहट कोई साया नहीं रहता, दुखे दिल के लिए जब कोई भी धोखा नहीं रहता, गमों के बोझ से जब टूटने लगते हैं शाने तो ये उन पे हाथ रखती है किसी हमदर्द की सूरत। और गुजर जाते हैं सारे काफले जब दिल की बस्ती से फजा में तैरती है देर तक ये गर्द की सूरत मोहब्बत दर्द की सूरत मोहब्बत प्यास की सूरत मोहब्बत आग की सूरत मोहब्बत मोहब्बत आस की सूरत।

0: मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन है। 1 बजकर तकरीबन 5 मिनट हुआ चाहते हैं। 12 सितंबर 2026 की शब है। टेलीफोन कॉल्स हैं जनाब आपकी और एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कैसे हैं किदर शाह साहब?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ जी। जी हजूर।
1: नवाज बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक है,
1: मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ
0: अच्छी बात है।
1: और उम्मीद करता हूँ कि सभी सुनने वाले अपने रब ताला की अमान में होंगे।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: और अल्लाह ताला सबको अपनी कामरानी और कामयाबियों से नवाजे।
0: आमीन आमीन।
1: जो जो भी नेक दिली तमन्नाएं लिए फिरते हैं।
0: ऐसा ही है।
1: तो बहुत अच्छा कि बशा साहब आ जाए अपने टॉपिक रखा मोहब्बत।
0: मैंने नहीं रखा, खुद ही बन गया, ये बन जाता है। मैं टॉपिक कभी रखता ही नहीं, आपको पता।
1: कमाल होता है ना, कमाल आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं। शदी
0: ऐसे ही
1: सैयदों को कमाल होता है। अच्छा। कमाल आप करते हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि ये कायनात जो तखलीक की गई है ना, ये भी एक मोहब्बत के नाम पे तखलीक की गई है।
0: ऐसे ही है।
1: जैसा कि अल्लाह ने आदम को सजदा, फरिश्तों को बोला कि सजदा करो, ये भी एक मोहब्बत की तकाजा है ना।
0: सही।
1: तो इससे साबित होता है कि ये कायनात जो आज जिसमें हम रह रहे हैं, ये मोहब्बत के नाम पर ही मंसूब है। और इंशाल्लाह ता कयामत इसमें मोहब्बत ही रहेगी और मोहब्बत करने वाले शादो आबाद रहेंगे। शाह जी, मुझे पता है कि आप फरमाइश पूरी नहीं करते, लेकिन फिर भी हम आपके नन्हे और मासूम जो
0: ये
1: होते हैं ना, वो
0: दिल।
1: फिर भी आपसे बजिद होकर भी रिक्वेस्ट करते हैं।
0: हो सकता है मेरी प्लेलिस्ट में आ जाए, वो बताएं आप।
1: चले चले ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया।
0: अच्छा,
1: ये प्लीज अगर हो सके तो।
0: अच्छा,
1: आपकी नवाजिश होगी और दुआओं में आपको याद रखूंगा।
0: बड़ा बड़ी मेहरबानी जनाब।
1: सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: और आपके लिए स्पेशल दुआएं।
0: सलामत
1: अल्लाह ताला आपके खानदान को कायम दायम रखे।
0: आमीन, आमीन।
1: और हमेशा आपका खानदान तादम में, बल्कि ता कयामत शादो आबाद रहे,
0: सलामत रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। मोहब्बत की इतनी तारीफें करके तो फिर उसके अंजाम पर रोना आया। चले जी, वाकई में मासूम है। सिटी कोड 051। कुछ लम्हे हुआ करते हैं जिंदगी में जब कुछ चीजें रफ्त में आ नहीं रही होती हैं और यकीन जानिए वो बड़े खूबसूरत लम्हात हुआ करते हैं। इंसान की जस्तजू, इंसान का कोशिश करना और खुद को उसमें ढालना, वो एक कहानी बन जाता है। यही ख्याल आया। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा बोलिए हजूर।
1: वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है?
0: बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं
1: सर? वो पिछले से पिछले फ्राइडे वाला वो जो आपने किया था ना, कर रहा हूँ माशाल्लाह।
0: हजूर आपकी आवाज कट रही है, थोड़ी सी अपनी जगह तब्दील कीजिए जल्दी से।
1: सर अब क्लियर आ रही है?
0: आप ठीक आ रही है, आप ठीक आ रही है, आपको पता था। चले, क्या कह रहे हैं, दोबारा फरमाइए।
1: मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह शो ये भी बहुत प्यारा है, लेकिन मैं वो जो उस दिन आप हसमुख वाला कर रहे थे ना, वो शो मिस कर रहा हूँ। बहुत अब प्यारा शो था वो।
0: हसमुख वाला मतलब?
1: बड़े आप उस दिन बड़े खुशगवार मूड में थे, उस दिन शायरी वाला शायरी भी कर रहे थे, लेकिन शो बड़ा मुस्कुराने वाला।
0: आज
1: मैं ज्यादा आ रही थी, मैं उस दिन मैंने कॉल भी नहीं की जानबूझ के, मुझे वैसे बड़ा मजा आ रहा।
0: आपने कहा मैं कॉल करूंगा तो ये ना हो कि ये हंसी खत्म हो जाए,
1: मजा खराब कर लूं। मैं मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ लाहौर से।
0: ठीक है ठीक है
1: तो मैं वैसे शो माशाल्लाह आप जी भी बहुत प्यारा कर रहे हैं, लेकिन वो जो अंदाज है ना आप संडे को ठीक है करते हैं शायरी वाला, वो अंदाज भी आपका
0: आपको
1: बहुत
0: क्या लगता है कि
1: मतलब
0: संडे को मैं उदास होता हूँ और फ्राइडे को मैं खुश होता हूँ, आप कैसा?
1: समझ नहीं
0: नहीं मैं क्या कह रहा हूँ,
1: जी
0: आपको
1: जी
0: क्या लगता है कि संडे को मैं उदास होता हूँ और फ्राइडे को मैं खुश होता हूँ?
1: नहीं,
0: आपकी आवाज कटने लग गई है फिर से।
1: वो लय जो शायरी वाली चलती रहती है ना वो अच्छा होता है।
0: अभी मैं बड़ा बेरब चल रहा हूँ जनाब, अभी देखे कहाँ जाके किस करवट में बैठता है।
1: हाँ जी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा, लेकिन
0: अभी तो
1: उसमें
0: वक्त ही बड़ा
1: ना
0: मिल रहा
1: मुस्कुराहट माशाल्लाह, एक तो आप हमारे सरों के तालियां बजाते
0: हैं। यार ये क्या बात है, अच्छा
1: नहीं
0: आप मुझे
1: नहीं
0: फोन दादा वो बना रहे थे,
1: हंसी आपकी आ रही थी ना उस दिन, वो दिल कोई बाग बाग हो रहा था।
0: बाग बाग होगा जी, होता रहेगा, वो हंसी से भी होगा शायरी से भी होगा, वो
1: ये
0: हर
1: मेरी
0: चीज से
1: रिक्वेस्ट
0: होगा।
1: है मैं और
0: हाँ
1: दो चार लाइनें अगर इजाजत हो तो सुना
0: हाँ
1: देता
0: सुना
1: हूँ।
0: है सुना है सुना है सुना है।
1: कि तरसती आंखें उदास चेहरा, तरसती आंखें उदास चेहरा, नहीं लहजा बगैर तेरे, बिखरी जुल्फें लिबास उजड़ा, वजूद खस्ता बगैर तेरे,
0: बगैर तेरे, ठीक है।
1: अनेक जंगल गुप्त अंधेरा, डूबी सांसें ज़ईफ़ धड़कन, बरहना पाओ बेनजा बेनाम मंजिल निशान रास्ता बगैर तेरे,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: खामोश बुलबुल सर्द पतझड़, बेरंग मौसम वीरान गुलशन, न फूल खुशबू हवा न बादल, न कोई नगमा बगैर तेरे, उम्मीद मद्धम मिजाज बरहम, मायूस जीवन है आस हर दम, न कोई ख्वाहिश न कोई हसरत, न है तमन्ना बगैर तेरे।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा।
1: काली जुर्फे काली सुबह सुर्ख रातें, वक्त सा कम उदास शामे,
0: बहुत अच्छा।
1: हजार सदियों के है बराबर, हर एक लम्हा बगैर तेरे,
0: बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
1: तावीज उल्टे अधूरी मन्नत, वजीफे जादू नाकाम सारे,
0: ठीक है,
1: ना इफ्तखारा ही काम आया, न कोई धागा बगैर तेरे।
0: वो तो ठीक है, चार लाइनें कब पूरी होंगी?
1: चले ठीक है, ओके, ओके। दो लाइनें रह गई थी, चलिए
0: सुना दे दो लाइनें भी सुना दे।
1: लेकिन ये मुस्कुराहट, ये सर फ्राइडे वाला शो आप ना इस पे रख ले,
0: अच्छा।
1: संडे वाला बिल्कुल,
0: फ्राइडे वाले तो मुझे इत्तफाक से बुला लेते हैं कभी कभी जनाब, जब आएंगे और जैसे होंगे वैसे आ जाएंगे।
1: आए हमेशा आए, लेकिन ये दो दो शो हो जाएंगे ना बड़ा मजा आएगा।
0: चले ठीक है ठीक है, सलामत रहे सलामत रहे, आबाद रहे। मोहब्बत ना समझ होती है, समझाना जरूरी है। जो दिल में है उसे आंखों से कहलाना जरूरी है। असूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुद मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। और थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। और बहुत बेबाक आंखों में ताल्लुक टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना जरूरी है। और सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। और मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है। जरूरी है और मेरे होंठों पे अपनी प्यास रख दो और फिर सोचो कि इसके बाद भी दुनिया में कुछ पाना जरूरी है।

0: और सुना है, आप कैसे हैं?
1: क्या सुना हुजूर?
0: बस मैं तो शो सुन रहा हूँ, बाकी ये कि मेरे दोस्त सुन रहे होंगे, जमील साहब, सोहेल कनोली और राहिल कनोली।
1: जमील साहब तनोली नहीं है?
0: हाँ जमील साहब मेरे दोस्त है, पुलिस
1: वो तनोली नहीं है?
0: सिविल लाइन कराची में
1: यार
0: रहते,
1: सुनते ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ वो तनोली नहीं है जमील साहब?
0: नहीं वो तनोली नहीं है,
1: वो क्या
0: मुमन है, पठान है।
1: वो क्या है?
0: मुमन, मुमन एजेंसी के पठान है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चल तो अच्छा अच्छा उनको सलाम देना। चले ठीक है ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।

0: अच्छा जी, ऐसा है कि मोहब्बतों पर तो बात होती ही रहती है, और मोहब्बत हमें छोड़ती ही नहीं। लेकिन मुनाफकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है। खिजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना, मुनाफकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है। खिजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। मैं जब चलूंगा तो रेगजारों में उल्फतों के कमल खिलेंगे, हजार तुम मेरे रास्तों में मोहब्बतों के सराब लिखना। फिराक मौसम की चिलमनों से विशाल लम्हे चमक उठेंगे, उदास शामों में कागज़े दिल पे गुजरे वक्तों के बाब लिखना। वो मेरी ख्वाहिश की लोहे तशना पे जिंदगी के सवाल उभरना, वो उसका हरफे करम से अपने कबूलियत के जवाब लिखना। कई जमानों की दर्द किजलाई भूली बिसरी किताब पढ़कर जो हो सके तुमसे आने वाले दिनों के रंगीन ख्वाब लिखना। मुनाफकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना बहुत कठिन है। खिजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना। करते हैं इस पे बात जी इस कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह।
0: जनाब
1: सर, हम इंतजार कर रहे हैं।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं हजूर?
1: आप ठीक हैं?
0: मैं अच्छा हूँ।
1: आज आप फिर अचानक से आ गए हैं।
0: ये मुझे फिर अचानक से बुला लिया आज इन्होंने।
1: वैसे अचानक जो काम होते हैं बड़े मजेदार होते हैं। आशीर्वाद
0: ऐसा ही उनका
1: वो अचानक वाले काम वाकई बड़े जबरदस्त। तो मैंने पोस्ट देख ली थी आपकी,
0: उनका सुरूर और उनकी लज्जत अलग ही हुआ करती है अचानक वालों
1: की। हकीकत है, लेकिन आज आपकी बड़ी प्यारी तस्वीर लगी उसके साथ चाय की प्याली।
0: अच्छा ऐसा है, ठीक है। बिल्कुल सही, मैंने अभी तक देखी भी नहीं है वैसे मेरी कौन सी तस्वीर लगी हुई है। अच्छा अभी जाएंगे उस तरफ, फेसबुक की तरफ।
1: मैं आपको आज मैं अपने डायरी देख रहा था।
0: अच्छा।
1: डायरी की आप बहुत सारी डायरिया रजिस्टर में तीन डायरी में वो एक पुरानी गजल अभिषेक शुक्ला की
0: अभी आप कॉल मिला रहे होंगे। जो गजल मैंने पढ़ी है आफताब हुसैन साहब की एक गजल है, आपने सुनी है? मैं आपको उसका एक शेर सुनाना चाहता हूँ, पहला शेर।
1: जी, जी, जी, जी।
0: वो कहते हैं कि मुनाफकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों की किताब लिखना।
1: दोबारा पढ़ें।
0: मुनाफकत का निसाब पढ़कर। जी जी।
1: मुनाफकत का हिसाब
0: निसाब
1: मुनाफकत का निसाब
0: हाँ मुनाफकत का निसाब पढ़कर मोहब्बतों

0: की किताब लिखना
1: हाँ
0: बहुत कठिन है, खिजां के माथे पे दास्ताने गुलाब लिखना।
1: दास्ताने गुलाब लिखना है। अच्छा
0: हाँ, ये शेर मैं आपको सुनाना चाहता था।
1: अच्छा ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये
0: क्योंकि
1: मुश्किल बात है।
0: आप लिखने वाले हैं ना, तो मैंने कहा आप उस तक पहुंचेंगे, उसके एसेंस तक पहुंचेंगे।
1: सर
0: हाँ चले।
1: पहला तो अच्छा, शेर में सबसे बड़ी खूबसूरती है, अब आपने बात कर दी, इस बात को खोल देते हैं। मुझे किसी ने कहा शेर क्या होता है, तो
0: हाँ
1: मैंने कहा आप बताएं शेर क्या होता है, तो उन्होंने कहा तो कोई मिसाल दें। मैंने कहा मिसाल तो बड़ी आसान है इसकी, मैं कहा आप कोई भी शेर पढ़ लें, मैं उसकी भी आपकी मिसाल दिखा था, कोई भी पढ़ लूँ। मैंने कहा कोई भी पढ़, मैंने कहा ये बात याद रखिएगा, शेर वो पढ़िएगा जिसमें मतलब में दोनों में काफी आते हैं, एक शेर नहीं पढ़ना, गजल का कोई मतलब पढ़े।
0: हाँ
1: तो उसने गजल का कोई मतलब पढ़ दिया, तो
0: हाँ
1: मैंने कहा इसमें आपको समझ नहीं आ रही, कहता है इसमें समझ कैसे समझ आएगी। मैंने कहा याद रखिएगा, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा उसी की नफी होता है।
0: ऐसा ही है,
1: ऐसा ही है,
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है,
1: ये पहचान है शेर की।
0: बिल्कुल।
1: अगर ऐसे वो नहीं हो क्या दाग दिल जी की किसकी वो गजल है मेरे जहन में उनका, वो नहीं बड़ी खूबसूरत गजल है आतिर भाई, वो
0: जी,
1: उसकी गाई भी गया निजान ने, बड़ी खूबसूरती से उसको गाया भी है।
0: अच्छा।
1: आशियाने की बात करते हो,
0: हाँ, दिल दुखाने की बात करते हो।
1: देखो एक ही बात है,
0: हाँ
1: कोई कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या तेवर देखें, ऊपर आशियाना नीचे दिल है, लेकिन सारा एक ही है,
0: ऐसा ही है, ऐसा ही है,
1: यही शायरी है।
0: बिल्कुल ऐसे। आज आपको शायरी जनाब 4 बजे तक सुनने को मिलेगी, क्योंकि मेरे बाद मुज्तबा भाई भी बैठे हुए हैं और वो भी अपनी खूबसूरत आवाज का जादू चलाएंगे, तो आप ट्यून इन
1: मुस्तफा
0: करिएगा।
1: भाई वही है ना जो FM 101 से प्रोग्राम किया
0: जी जी
1: करते थे।
0: गुंचा शोक करेंगे इंशाल्लाह।
1: हाँ ये उसका मतलब है, वापस आ के उनको भी खुश आमदेद,
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए
1: आपके साथ बैठे हुए हैं।
0: वो इस टाइम मौजूद है, ड्यूटी अब आ चुके हैं स्टूडियो में, और मैंने कहा
1: 2 बजे
0: कि
1: के बाद प्रोग्राम करेंगे,
0: 2 बजे से उनका प्रोग्राम शुरू
1: हाँ
0: हो
1: उसके
0: जाएगा।
1: साथ भी हमने बड़ी बैठक की है शायरी की।
0: चले अच्छा, अब सुनाइए क्या कहेंगे।
1: मैं मनीष शुक्ला से आपने वो जो गजल मेरे जहन में थी वो आपके साथ शेयर करता हूँ, जो
0: जी
1: मैंने आज पढ़ी
0: इरशाद
1: दोबारा।
0: इरशाद इरशाद,
1: देखें वही बतले वाली बात, जो मुखालिफीन को हैरान करने वाला,
0: मुखालिफीन को हैरान करने वाला हूं।
1: मैं अपनी हार का ऐलान करने वाला,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, ठीक है,
1: कितनी
0: बहुत
1: बड़ी बात है,
0: बहुत अच्छी बात है,
1: कितनी सिंपल बात है।
0: बिल्कुल सही बात है, सही है।
1: मुखालिफीन को हैरान करने वाला हूँ, मैं अपनी हार का ऐलान करने वाला हूँ। शेर समाप्त किया कि सुना है दश्त में जैसे सुकून पाती है,
0: वाह वाह वाह वाह वाह, सुना
1: सुना
0: है।
1: है दश्त में जैसे सुकून पाती है, सो अपने आप को वीरान करने वाला हूँ,
0: सो अपने आप को वीरान करने वाला हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत
1: फिजा में छोड़ रहा हूँ ख्याल का ताहिर, फिजा में छोड़ रहा हूँ ख्याल का ताहिर,
0: ताहिर,
1: अर्श को गुंजान करने वाला हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: देखिए एक ही रिदम में हम चल रहे हैं कि सुकूते अर्श को गुंजान करने वाला हूँ, मिटा रहा हूँ खिद की तमाम तस्वीहें,
0: मिटा रहा हूं।
1: खिद की तमाम तस्वीहें,
0: अच्छा हाँ
1: खिद
0: हाँ खैर ठीक समझ गया, बिल्कुल।
1: जुनू का रास्ता आसान करने वाला
0: वाह
1: हूँ।
0: वाह
1: यार
0: वाह
1: क्या
0: वाह,
1: बात है,
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, जुनू का रास्ता आसान करने वाला।
1: कि मिटा रहा हूँ फिरत की तमाम तस्वीहें, जिंदगी का रास्ता आसान करने वाला हूँ,
0: ठीक है,
1: और हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं।
0: हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं।
1: हकीकतों से कहो होशियार हो जाएं, मैं अपने ख्वाब को मीजान करने वाला हूँ,
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा।
1: कोई खुदाए मोहब्बत को बाखबर कर दे,
0: कोई
1: कोई
0: खुदाए
1: खुदाए
0: मोहब्बत को
1: मोहब्बत को
0: बाखबर कर दे।
1: बाखबर कर दे, मैं खुद को इश्क में कुर्बान करने वाला हूँ।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे।
1: कोई खुदाए मोहब्बत को, या आपकी नजर है कि कोई खुदाए मोहब्बत को बाखबर कर दे,
0: बाखबर कर
1: मैं
0: दे।
1: खुद को इश्क में कुर्बान करने वाला हूँ। और इसका आखिरी शेर था, शेर था गजल का, कि सजा रहा हूँ तबस्सुम का एक नया लश्कर,
0: सजा रहा हूं तबस्सुम का एक नया, لشکر
1: دیکھیں تو سجا رہا ہوں تبسم کا ایک نیا لشکر کا نقصان کرنے والا.
0: واہ واہ واہ واہ, بہت اچھا جی, بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت.
1: تو وہ جب ہم شاعری کی بات کرتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے, بلکہ یہ میری اسپیشلی آپ سے گزارش ہے, تو ایک پروگرام ایسا رکھیں جو آپ شاعری کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں نا پروگرام کے حوالے سے, تو یہ ایک اسپیشل ایک آپ کا جو پروگرام ہے وہ شاعری کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, ہمیں بڑی اچھا اچھا کچھ سننے کو ملتا ہے. اس پہ آپ وضاحت ضرور نہیں ہے لیکن ایسی ایسی مطلب لوگوں کو اتنی گائیڈنس ہونی چاہیے کہ میں دیکھ رہا ہوں آج کل کوئی عجیب سا ایک معاملہ بن گیا ریڈیو پہ, اب ریڈیو ریڈیو نہیں رہا, شاعری کیا تھا.
0: اچھا صحیح صحیح صحیح,
1: وہ ڈرنگ روم ہو گیا.
0: وہ ہر چیز میں ہوتا ہے جناب, کبھی آپ اگر کسی ڈرامہ نگار سے پوچھیں گے وہ کہے گا ڈرامے ڈرامے نہیں رہے, آپ کسی فلم والے سے پوچھیں گے وہ کہے گا فلم فلم, کیونکہ حقیقت ایک بڑی تلخ حقیقت ہے, اور وہ میں اس میڈیم سے کہہ رہا ہوں کہ اکثر
1: آپ جس میڈیم سے بات چھپانا چاہ رہے ہیں میں اس میڈیم کے لوگوں میں بیٹھا بھی ہوں.
0: اچھا چلے پھر ٹھیک ہے,
1: جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں جو آپ نہیں کہیں گے
0: چلے جانے دیں جانے دیں جانے دیں,
1: پتا جو آپ نہیں کہیں گے میں یہ آپ سے جو ہمارے جو نئے لوگ ہیں جن کو شاعری کا شوق ہے یہ کم سے کم اتنی تو بات کہیں نا کہ یار یہ جو شاعری میں جو لوگ آ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب بھی سن رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا, وہ خود بھی میں نے دیکھا ہے وہ خود بھی شاعری ان کو شاعری کا شوق ہے وہ بھی کرتے ہیں, جن آدمی بھی کہیں نہ کہیں کی ہوگی, تو جن لوگوں کو شوق ہے خدا کے لیے اس فیس بک کی دنیا سے ہٹ جائیں, تھوڑا سا کتابوں کی طرف آئیں تاکہ آپ کو صحیح چیز سننے کو ملے.
0: چلے ٹھیک ہے, سلامت رہیے حضور, سلامت رہیے, خیال رکھیے گا, بہت شکریہ,
1: اللہ حافظ,
0: اللہ حافظ.

जी हाँ जरूर, मुझे कहते हैं आतिर अली सैयद, और एक कॉल शामिल करता हूँ जी, बंद हो गई, दोबारा कोशिश कीजिएगा। एफएम 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप, और एक बजकर तकरीबन हुआ चाहते हैं 31 मिनट, 2 बजे तक आपका मेरा साथ है इस महफिल में।

0: देख के मुझे को तेरे जहन आता
1: सुना दें, सुना दें आपको, आपने और सुनाना, सुना दें। अच्छा गा रही हैं इसलिए आपकी आवाज बहुत कम हो गया।
0: मेरी रुसवा

0: तेरे के से मेरे यारों को समाता क्या है,
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सलामत रहिए, आबाद रहिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। आपकी आवाज़ भी कम हो गई है, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज़।

अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इसमें अपनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर अना का मालिक कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक तुम्हारा मुखलिस तुम्हारा साथी तुम्हारा अपना, रहा ना इनमें से कोई दुनिया में जब तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। और तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं, तुम्हारा होने के फैसले को मैं अपनी किस्मत पे छोड़ता हूं, अगर मुकद्दर का कोई टूटा कभी सितारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो तमाम छोड़ो, बस एक कर लो जो इस्तखारा तो मैं तुम्हारा। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा। ये इस पे मबनी कोई तासर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहे लगाऊं बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा।

शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। तुम सरबसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। मैं अपने आप में ना मिला इसका गम नहीं। गम तो ये है कि तुम भी बहुत कम मिले तुम्हें। जो है हमारा एक हिसाब, उस हिसाब से आती है हमको शर्म के पे हम मिले तुम्हें। तुमको जहां ने शौक तमन्ना में क्या मिला, हम भी मिले तो दरहमों बरहम मिले तुम्हें। अब अपने तौर ही में नहीं तुम सो काश के, खुद में खुद अपना तौर कोई दम मिले तुम्हें। और इस शहर हीला जो में जो महरम मिले तुम्हें, इस शहर हीला जो में जो महरम मिले मुझे, फरियाद जाने जा वही महरम मिले तुम्हें। देता हूं तुमको खुशकिए मिजगां की मैं दुआ, देता हूं तुमको खुशकिए मिजगां की मैं दुआ। मतलब ये है कि दामने पर न मिले तुम्हें, और मैं उनमें आज तक कभी पाया नहीं गया। जाना जो मेरे शौक के आलम मिले तुम्हें, और तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया, तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया। शर्मिंदा है कि उसमें बहुत गम मिले तुम्हें। और यूं हो के कोई और ही, यूं हो के और ही कोई हवा मिले मुझे, हो यूं के और ही कोई आदम मिले तुम्हें। शर्मिंदगी है हमको बहुत, हम मिले तुम्हें। तुम सरबसर खुशी थे मगर गम मिले तुम्हें। तुमने हमारे दिल में बहुत दिन सफर किया, शर्मिंदा है कि उसमें बहुत गम मिले।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप, रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले बहुत मुख्तसर शामिल करना चाहूँगा। मोहब्बत से आगाज हो गया और हो जाया करता है खुद ही, क्योंकि हम चाहें ना चाहें ये मोहब्बत तो ज़ात के अंदर कहीं ना कहीं है ही और रहती ही है। इसका मकसद समझना होता है हमें कि ये हमारी ज़ात के अंदर क्यों मौजूद है। मुझे एक मजाज की शक्ल में हमारे सामने एक जज्बा उभर कर आता है, वो क्या बताने के लिए आता है। कोई कहाँ हुआ करता है और कोई कहाँ, और एक वक्त में दो लोगों पर वारिद होती है मोहब्बत। क्या पैगाम लेकर आती है, क्या सिखाने आती है। तो यूं है कि मोहब्बत के बिना कुछ भी मुकम्मल नहीं है इस कायनात में। हर शय में मोहब्बत ही है, झीलों झरनों में मोहब्बत है, आबशारों में मोहब्बत है, पहाड़ों में मोहब्बत है, इस बारिश के बरसने में मोहब्बत है, इस सूरज की तमाजत में मोहब्बत है। वो जो कहते हैं गौर व फिक्र करो, वो दिखा रहे होते हैं मोहब्बत जो उन्होंने बिखेर रखी है इस कायनात में। अपने अपनी मखलूक से मोहब्बत करते हुए उसको एक इम्तिहान में डाल के, वफा का इम्तिहान। लेकिन साथ ये कह दिया कि मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा, तुम मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, लेकिन इम्तिहान है, तुम सब्र करोगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा, बहुत जल्द कुछ ऐसा अता करूंगा कि तुम खुश हो जाओगे। ये कह दिया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, लेकिन इम्तिहान है, वफा को साबित करना है। जब इकरार कर लिया कि तू हमारा रब है, तो वो जो वादा अलस्त है उसका पास रखना है, ये इम्तिहान है। और वादा अलस्त लेकर हमारे हमारे जहनों से उसको महव कर दिया, ये इम्तिहान है। लेकिन निशानियां हैं, अगर अगर कहते हो कि हदनस सरातल मुस्तकीम, तो है जवाब, अलिफ लाम मीम से वन नास तक तलाश करो, मौजूद है, मिल जाएगा। अनमता अलैहिम वाले कौन है और मगजूब अलैहिम वाले कौन है, किन सफों में शामिल होना चाहते हो, सरापा इश्क बनना चाहते हो या नफरतों हसद कुदूरत का मंबा बनना चाहते हो। सब रास्ते हैं, इरादा इख्तियार है, मौजूद है, उसका इस्तेमाल करते हुए जो राह चुनना चाहो चुन सकते हो। और उसके साथ साथ एक हिस्से अखलाकियात रख दी हम इंसानों के अंदर, जो कि उन हिस्से खमसा से मावरा है, जो महसूस करवा दिया करती है जो हो रहा है, वो क्या है, वो अच्छा है, वो गलत है। कोई आवाज है जो अंदर से आती है, जो बता दिया करती है कि किस राह पर हो। वादा अलस्त अगर जहनों से महव करके हमें बता दिया गया, तो मंजिल दिखा दी गई। जब वो ये कहते हैं कि मैं तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाऊंगा, और फिर ये कहते हैं कि अल्लाह नूर समावाती वलर्स, तो मंजिल वाजे हो जाती है कि मंजिल क्या है। मंजिल तक पहुंचना है, एहतमाम करना है, रखते सफर बांधना है, राह भी दिखा दी है, मंजिल भी बता दी है, तो बस अब झूमते चले जाना है। दीवानावार उस मंजिल पर झूमता एक शख्स, राहों से मोहब्बत कर रहा होता है, क्योंकि मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, और मंजिलें खूबसूरत हों तो राहों से इश्क हो जाया करता है। और वो लोग
जो अपने हादसों के दुख छुपाए मुस्कुराते हैं, जो बंजर मौसमों में बारिशों के गीत गाते हैं, जो तितली फूल और खुशबू के मौसम साथ लाते हैं, जो जख्मी फाख्ता को घोंसले तक छोड़ाते हैं, जो बिछड़ी कूंज को फिर डार से वापस मिलाते हैं, उसे तन्हाइयों में मौत के दुख से बचाते हैं, जो शहरे बेवफा में भी क्या वादे निभाते हैं, जो करके हाथ जख्मी राह से कांटे उठाते हैं, वो जिनके हाथ में दिए दुआ के झिलमिलाते हैं, जो अपने नाम से इंसानियत को मोतबर कर दें, मोहब्बत की निगाह ऐसी कि जर्रे को गौर कर दें, जो पत्थर खाएं देखें मुस्कुराएं दरगुजर कर दें, जो अपनी जात की परछाई से आगे निकल जाएं, किसी की आंख के आंसू सितारों में बदल जाएं, वो जिनको देख के सब दर्द के सूरज पिघल जाएं, और वो जिनके अपने पांव में कई गिरदाब होते हैं मगर वो रूह की पाताल तक शादाब होते हैं, वो ऐसे लोग जो हर दौर में नायाब होते हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, वही लोग हैं सिरात मुस्तकीम वाले लोग, और वही लोग हैं अनमत अलैहिम वाले लोग, जहां मिले उनके नक्शे कदम पे चलने की काविश मुझ जैसे पायमाल कर लें जसारत। तो जिंदगी भी बदल जाए और आने वाला वक्त भी, तो जो दरकार हो वो तकसीम कीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए, रब तआला की नेमतों और बरकतों का नजूल होगा, कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद हो ना चीज को याद रखिएगा, कोई बात समा खराशी का बाइस बनी हो तो माज़े चाहूंगा, मेरे बाद आएंगे मुश्तबा, जरूर सुनिएगा खूबसूरत प्रोग्राम गुंजा शोक, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान आतिर अली सैयद को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।

जो आसमान की निलाहटों में जगमगाती रोशनी को उस्तवार करता है। जो कायनात की वसतों में कुछ इस अंदाज से गुम है कि जहानतों की बुलंदियां भी उसका इदराक नहीं कर सकती।

जो चट्टान में बसने वाली चींटी को भी रिस्क अता करता है और इस कदर तवाना बना देता है कि यही नन्ही जान हाथी जैसे अजीम जान के लिए वबाले जान बन जाया करती है।

जो इंसान के चरागे दिमाग में शमे अक्ल रोशन करता है और उसे जामियुल कमाल बनाकर यूँ संभाल लेता है, गोया कतरे को सदफ पारे में ढाल देता है।

मुस्कुराते जगमगाते सब हंसी चेहरों के नाम मुज्तबा। मुस्कुराते जगमगाते

प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा की तरह आपके लिए बहुत सारी दुआएं। सदा खुशखुर्रम रहिए, शाद व आबाद रहिए, सलामत रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चकमकाते चिलमिलाते रहिए।

आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बस यूँ करना है कि आप अपने मोबाइल से नंबर मिलाइए 051-111-000-101। और अगर आप हमें पैगाम भेजना चाहते हैं और उसके लिए आपको पैगाम में 101 लिखना पड़ेगा और उसको भेजना पड़ेगा 4471 पर, 4471 पर। अगर आप कमेंट्स करना चाहते हैं फेसबुक पर और आप चाहते हैं कि आपके पैगाम प्रोग्राम में शामिल किए जाएं, facebook.com/101 का ऑफिशियल पेज। और उस पर खाकसार की तस्वीर है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। तस्वीर के बारे में नहीं, बल्कि कोई भी अपने दिल की बात जो करना चाहते हैं

ये बज़्म सुखन है। और ये निगार खाना आप ही के लिए सजाया गया है।

रात के इन लतीफ़ लम्हात में कुछ वो हैं जो नींद से मुलाकात कर रहे हैं और कुछ वो हैं जो अपने आप से बात कर रहे हैं। कुछ वो हैं जो इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं और कुछ वो हैं जो जानते हैं कि ख्वाब देखने का ताल्लुक नींद के साथ नहीं है बल्कि तजुर्बात के साथ है। हर रत जगह अपने आप में एक तजुर्बा है।

ये जो जागने वाले हैं मालूम नहीं क्यों जाग रहे हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आप क्यों जाग रहे हैं, अपने इस वक्त जागने की वजह बताइए, तो वो यकीनन कहेंगे कि नींद आंखों पर उतरती तो है। मगर दिल में जलने वाली यादों के दिए उसे ठहरने कहाँ देते हैं।

ज़फ़र इकबाल कहते हैं, भरी रहे अभी आंखों में उसके नाम की नींद, भरी रहे अभी आंखों में उसके नाम की नींद। वो ख्वाब है तो यूं ही देखने से गुजरेगा,

सावीन, मोहब्बत वो कैफियत है जिसमें रात ढल जाती है मगर महबूब की याद नहीं ढलती।

तो जनाब रात यादों के लिए है। और यादें जिंदगी की असास हैं। यादें हैं तो जिंदगी है। कीजिए याद अपनों को। अपने हैं तो हम हैं,

समय याद बहुत अनमोल होती है, बहुत ही मासूम। हर तरह की मिलावट से पाक, हर तरह की कसाफत से पाक। कोई दिखावा नहीं है, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके दिल के साथ है।

और उन लोगों के साथ उसका एक ताल्लुक बन जाता है। फैज कहते हैं ना कि आके वाबस्ता है उस हुस्न की यादें तुझसे। जिसने इस दिल को परी खाना बना रखा था, जिसकी उल्फत में भुला रखी थी दुनिया हमने, दहर को दहर का अफसाना बना रखा था।

आशना है तेरे कदमों से वो राहें जिन पर उसकी मदहोश जवानी ने इनायत की है। कारवां गुजरे हैं जिनसे इसी रानाई के, जिसकी इन आंखों ने बेसूद इबादत की है। तुझसे खेली हैं वो महबूब हवाएं जिनमें उसके मलबूस की अफसुर्दा महक बाकी है। तुझ पे बरसा है उसी बाम से महताब का नूर, जिसमें बीती हुई रातों की कसक बाकी है।

तूने देखी है वो पेशानी, वो रुखसार, वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने। तुझ पे उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गंवा दी हमने।

आजजी सीखी, गरीबों की हिमायत सीखी, या सुहिरमान के दुख दर्द के माना सीखे। ज़ेर दस्तों के मसाइब को समझना सीखा, सर्द आहों के रुखे जर्द के माना सीखे।

जब कहीं बैठ के रोते हैं वो बेकस चिन के, अश्क आंखों में बिलकते हुए सो जाते हैं। नातवानों के निवालों पे झपटते हैं उकाब, बाजू तोले हुए मंडलाते हुए आते हैं।

जब कभी बिकता है बाजार में मजदूर का गोश्त, शाहराओं पे गरीबों का लहू बहता है।

0: सामिन जिनका दिल किसी की याद में सुलग रहा हो, उनको क्या जलाना। और देखते हैं आज हमारे साथ पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब जनाब, मिजाज कैसे हैं आपके?
1: आप सुनाएं, हमारे तो मिजाज वैसे हैं जैसे आप छोड़ कर गए थे।
0: जनाब मिजाज
1: तो
0: हम
1: थोड़े
0: भी
1: अरसे बाद आया उसने मुझसे, वो क्या किसी का शेयर था, तो उसने उसने मुझसे मेरा हाल पूछा है, इतना मुश्किल सवाल पूछा है।
0: वाह वाह,
1: बड़े अरसे बाद, काफी अरसे बाद आपसे बात हो रही है। मैं
0: ओ
1: भी जिक्र कर रहे थे आकर साहब, मैंने कहा उनके साथ बुरी नसीब रही है,
0: जनाब
1: कमेर हवा के दोष पे। तो
0: जनाब
1: जब आप शुरू में आए तो इतना में आपने लोगों का चुनाव किया, बड़ा खूबसूरत था। उसमें आपने रात का जिक्र किया और ख्वाब का जिक्र किया, तो
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैं वो बड़ा खूबसूरत और उसमें चलते आपके अल्फाज को लेकर मैंने कुछ एक नज्म लिखना शुरू कर दी। वो
0: जनाब
1: फिर किसी वक्त उसको जब पूरा करेंगे तो सुनाएंगे आपको। दिलगुदी हो रही थी लेकिन मैं बड़ा अच्छा लगा रात के इस पर आप दोबारा आए, और सुन के भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह दोनों को भी। तो
0: ممنون
1: ये रात है, ये दोपहर है, इसमें आपकी नज़र, क्योंकि आप रात पर उस पर बात कर रहे थे तो
0: इरशाद।
1: आपकी नज़र अपना एक शेर पे, शेर से आगाज करते हैं कि रात हिस्सों में बट चुकी है हमीद।
0: वाह
1: मेरा अपने इशारा कि रात हिस्सों में बट चुकी है हमीद, रत जगा नींद ख्वाब तन्हाई,
0: वाह वाह, क्या
1: रत
0: कहना।
1: जगा ख्वाब नींद तन्हाई। बार ये है, आपने सही कहा, आप कुछ सो रहे होंगे, कुछ जाग रहे होंगे, कुछ ख्वाब देख रहे हैं, हैं? तो कुछ ख्वाब देखने के चक्कर में नहीं है, ये नहीं आपने कहा।
0: जागती आंखों के ख्वाब।
1: हाँ जागती आंखों के, आपकी नजर एक शेर करते हैं।
0: चलिए हम आपकी बात यहाँ रोक के ना हम फरहत एहसास का शेर शामिल करते हैं। वो कहते हैं कि एक रात वो गया था जहाँ बात रोक कर, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रोक कर।
1: क्या खूबसूरत बात की आपने, वाह वाह वाह वाह,
0: और
1: दिल को लग
0: वसीम
1: गया।
0: बरेलवी कहते हैं कि रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है। तो जनाब रात तो बहरहाल जितनी भी लंबी हो ढल ही जाती है। अच्छा
1: तेज है ए गजल, पानी पिला पानी पिला।
0: हाय हाय,
1: अब आप देखते हैं कि गजलों में कितना पानी पिलाते हैं लोगों को, और आने वाले की कितनी जाग जुटती है, और आने वाला कितना इस पानी को बांटते हैं।
0: हम तो कोशिश कर सकते हैं सरकार। वो इरफान सिद्दीकी ने कहा था ना कि रात की जीत जो है वो उसके हवाले से उन्होंने कहा था कि रात को जीत तो पाता नहीं लेकिन ये चिराग कम से कम रात का नुकसान बहुत करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं
1: नहीं,
0: मोहब्बत
1: आपकी
0: बांटने
1: कोशिश
0: की।
1: रह नहीं जाएगी, ऐसी बात नहीं है, आपकी कोशिश बिल्कुल
0: जनाब आज क्या सुनाएंगे आप?
1: जमाने में मैंने आपके साथ इतवार बाजार के एक नज़्म शेयर की।
0: यकीनन उसको तो साल हा साल कितना अरसा हो गया?
1: आपको पता होगा, देख लें।
0: कबलुल मसीह में सुनाई थी आपने, लेकिन हमें याद है, हमें याद है सरकार। इशाद
1: तो
0: कीजिए।
1: शामिल करते हैं ये आजाद नज़्म में पाबंद नज़्म है, कहाँ कहाँ आजाद और कहाँ कहाँ पाबंद है ये आप देख लीजिएगा।
0: वैसे हम तो कहते हैं कि जो आजाद नज़्म होती है ना वो भी पाबंद होती है। भला किसकी, भला किसकी,
1: मैंने ठीक बात किया।
0: भला
1: वो
0: सवाल कीजिए ना
1: कर रहे हैं।
0: आप सवाल तो कीजिए, किसकी पाबंद होती है?
1: आजाद नज़्म बिल्कुल पाबंद नज़्म होती है, और शायद आप तो से मैं ये भी बात कर रही
0: जी जी
1: जिस वक्त शायरी आई तो उस वक्त शायरी वजन में नहीं आई थी, आजादी आई थी। आप पिछले यानी संस्कृत के जमाने से पीछे चले जाएं जहाँ से, तो उस वक्त भी जो यानी ये जो हम आजकल की जो गजल आ गई और फिर उन्होंने कहा ये नज़म है और ये पाबंद होगी और ये, लेकिन शायरी का जो शुरू हुई वो तकरीबन आज़ाद से ही थी। फिर आज़ाद में ये काफियों में आते आते आते आते गजल की सूरत जाके पाबंद हो गई, फिर वो बली तकरी से शुरू होता है सफर ना।
0: सही, हम तो ये मानते हैं कि जो आज़ाद नज़्म होती है ना वो बुनियादी तौर पे आज़ादी की पाबंद होती है, नहीं?
1: बिल्कुल,
0: और इसमें जो जज्बात हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं।
1: आप उसको ये कह सकते हैं कि आप एक ख्याल को लेके आगे तक आपको चलना पड़ता है, ये मुश्किल काम है। जबकि गज़ल में जब आप गज़ल के शेर लिखते हैं तो गज़ल में एक शेर जो है वो कहीं और पैराए में होता है, दूसरा कहीं और होता है, यानी एक गजल के पांचों शेर के पांचों ख्याल मुख्तलिफ होते हैं। ये गजल का कमाल है। लेकिन नज़्म तो आपको पता है फिर आप एक ख्याल के साथ पाबंद होके चल रहे होते हैं ना, कि आपने उस ख्याल को कहाँ पे जाके क्लाइमेक्स पे जाके छोड़ना होता है, फिर वो नज़्म मुकम्मल होती है।
0: जनाब इरशाद कीजिए जनाब। जी हाँ, वो मुनव्वर राना ने कहा था कि ये नहर दूध की हम भी निकाल सकते हैं, मज़ा तो जब है कि फरहाद शेर कहने लगे।
1: वो उनकी वो बड़ी मशहूर गजल है, दिया है खुद को बर्बाद शेर कहने लगे, जब आ गई तेरी याद शेर कहने लगे।
0: न देख इतनी हकारत से हम अदीबों को,
1: नहर की हम भी निकाल सकते हैं,
0: हाय हाय,
1: मज़ा तो तब है कि फरहाद शेर।
0: न देख इतनी हकारत से हम अदीबों को, न जाने कब तेरी औलाद शेर कहने लगे। हाय हाय,
1: लेकिन उसमें उन्होंने इल्ला माशाल्लाह उस्तादों की नजर में शेर दिया था, तो उस्तादाने अदब खुद को कहते थे कि बड़े बड़े को गुजारा है हमने हैराना, हमारे लहजे में उस्ताद शेर कहने लगे। तो किसी ने कहा ये महज काफिये का शेर है या ताली है? उन्होंने कहा नहीं बस ठीक है। उन्होंने कहा ये तो मैं उनके लिए कहता हूँ, अगर जी आपने पैसा देना हिंदुस्तान में शायरा था जमाने में, एक बहुत बड़े शायर थे, तो उनको खाम खाम की सरसत थी उनसे, तो वो उन्होंने कह दिया गजल तो उस्ताद तो हम है, तो ये पैसा क्या है, ये खुद को शायर कहता है, फिल्मों ने इसको मशहूर कर दिया और ये वो, मतलब उसको जेलसी थी। लेकिन कैसा तो कैसा थे, उनका जलवा ही बड़ा था, तो जिसको अल्लाह इज्जत दे देता है, तो वो पैसा को जब नाज़िम मुशायरा ने बुलाया उनसे पहले, जारी बात है उनको बुलाया गया, तो जब वो आए शरीफ आदमी थे, उन्होंने वो गजल पढ़ी, बड़ी वाह वाह हुई उस पर, शायद तो या कोई और मैं शायद जो इनको हासिल थी वो खाम खाम से हासिल कर उन्होंने गर्दन को मार की तरह धोखा कहते हैं कि जनाब दुकाने को सब लोग आते हैं, अल्लाह की मर्जी है किसी की चलाता है किसी की नहीं चलाता है। राजा जी जवाब था तो फैज अहमद फैज साहब ज्यादा बड़ा शायर को आप देखे ना, आज भी हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े नाम गुजरे, ये आपने मुनव्वर राना का जिक्र किया, मुनव्वर राना एक बड़ा नाम, लेकिन उन्होंने भी कहा कि फैज साहब जैसा बड़ा शायर मैंने नहीं देखा या फराज साहब जैसा बड़ा शायर मैंने नहीं देखा कहीं। तो ये जो पिछली सदी का जो सदी गुजरी है उसका सबसे बड़ा शायर मुस्तफा साहब अहमद फराज साहब को माना गया था, दूसरी कोई राय नहीं, लेकिन सबसे बड़ा शायर सदी का फराज साहब ही आए हैं। मतलब उन्होंने आज भी लोग जब पूछते हैं हिंदुस्तान में बात होती है तो या तो फैज अहमद फैज साहब का नाम लिया जाता है या फराज साहब का या फिर इन शातिर का जॉन एलिया का, ये तो चंद शोरा थे जिनके नाम बड़े मशहूर हुए और बाकी वो कमाल शायर थे इसमें कोई शक नहीं।
0: देखिए जनाब, हम तो इतना जानते हैं कि जो शायर होता है ना, शायर जो शायर होता है ना वो ज़माना साज होता है, और हर शायर कुछ ना कुछ ज़माने के लिए कर जाता है, कुछ ना कुछ अता करता है। अब हम किसी एक शायर की हमने अर्ज़ किया कि हम अगर किसी एक शायर को बड़ा शायर तसव्वुर करें और दूसरे शायर को हम उससे कुछ कद कामत में कम तसव्वुर करें।
1: बात समझिए, ये कि तकाबुल की बात मैं नहीं कर रहा।
0: जी हाँ,
1: मैं तकाबुल की बात
0: जी हाँ, आप खुद माशाल्लाह इतने अच्छे शायर हैं और आप कभी भी तकाबुल नहीं करेंगे, बस हम समझते हैं कि शायरी को इंसान जैसे महसूस करता है वैसे इंसान उस शायर के बारे में सोचता है, तो ये इंसान की सोच के ऊपर मुनासिर है कि वो किस मुकाम पर बात को समझ रहा है और कितना उसको महसूस कर रहा है। शायरी का ताल्लुक जो है ना वो महसूस करने से ज़्यादा है। जी हाँ, वो कहते हैं ना कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुम्हें, माओ ने तेरे नाम पे बच्चों का नाम रख दिया। जी हाँ, बहरहाल इस पे हम यकीनन बात करेंगे। सरकार कलाम सुनाइए। जी
1: वो किसी तंगीद की जरूरत नहीं है, मेरी नाम खुद बताए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सदर बाजार फुटपाथ पर किताबों को मिलेंगे। मुतबा साहब आप शायद भूल रहे हैं, मैंने आपको इस वक्त कहा था कि ये नज मैंने फुटपाथ पर बैठ के मंजर देख के सदर बाजार फुटपाथ पर किताबों को मिलेंगे, दुकानदार बहुत से रोशन सितारे देख
0: आए हाय,
1: दुकानदार बहुत से रोशन सितारे बेचने को लाए हैं, जरा देखो तो इन्हें क्या क्या इशारे बेचने को लाए हैं, गुजार का लिबास पहने हुए हैं, ये कलमी है खुद अपनी ही पहचान हुआ करते थे, उन्होंने अपने कलम से जो भी लिखा क्या खूब लिखा, जो भी कहा क्या खूब कहा, इन नामवर नडर बेबाक लोगों को दुनिया शायर भी कहती है। आओ तुमको मिलाता हूँ कुछ उनकी शायरी सुना, मुतबा साहब आओ तुमको मिलाता हूँ कुछ उनकी शायरी सुनाता हूँ, ये अपनी नज्म गजलों में अब भी जख्म गाते हैं। अब देखिएगा सफर के ये अपनी नज्म गजलों में अब भी जख्म आते हैं, इनसे मिलिए इनसे मिलिए, ये हैं आलिम साहब चश्मा, इनसे मिलिए ये है आलिम साहब चश्मा, ये एक इशारा है आफाक नाजहानी का, इसी जगह से परिंदों का पूछ कर जाए। आप तो सबसे नोट करते जाइए कि इनसे लीजिए ये है आलिम साहब चश्मा, ये एक इशारा है आफाक नाजहानी का, इसी जगह से परिंदों का पूछ कर जाना, और यह है मीर तकी मीर पराने मीर से आहिस्ता बोलो, चुप रोते रोते सो गया है। और ये है इंशाअल्लाह खान शाह, बड़ा गर्दिश फलक की चैन किसे किसे बड़ा गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं। और ये है बहादुर शाह जफर, उम्रे दराज मांग के लाए थे चार दिन, दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में। और ये है साहिब रिजवानवी, कौन किसी के लिए रोता है ऐ दोस्त, सबको अपनी ही किसी बात का देना आया। और ये है रईस अमरोही, तुम्हें शिकस्ता दिलों का ख्याल ही तो नहीं, ख्याल हो तो करम के हजार हाथ पहली। और ये है अजीज होशियारपुरी, जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन होंगे।
0: वाह वाह।
1: और ये है जॉन एलिया, मैं तो बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस तुमको तबाह कर लिया और मलाल भी
0: नहीं,
1: तुमको तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और जमी की गोद से मैंने शायर मशरिक को उठाया, इकबाल है इकबाल है इकबाल हमारा, गर्द आदि जिन बीमार वर्ग, इकबाल तेरी तस्वीर की आंख में आंसू, इकबाल तेरी तस्वीर की आंख में आंसू, फराज बोले काश तू भी आ जाए, काश तू भी कभी आ जाए मसीहाई को, लोग आते हैं बहुत जिनको दुखाने मेरे। और ये सुनते ही जोश मलिया आबादी कहने लगे कि अब कार के शहर में है गहमा गहमी, अल्फाज के मैदान में सन्नाटा है। तुम्हें अब कौन पढ़ेगा इस मशहूर दुनिया में, न जाने क्यों मुझे तुम्हारा जमाना अदब से खाली खाली सा लगता है, ये महसूस होता है ऐसा लगता है कि ये किताबें बस इस इंतजार में हैं कि कोई अदब चनास आए इन्हें यहाँ से ले जाए। किताबों के नीचे से मीर बोले मियाँ हमें यहाँ से ले जाओ, यहाँ की गर्द में हमारा दम घुटने लगा है, दम घुटने लगा है, सदर बाजार कुछ बात पर किताबों के मिले में, दुकानदार क्या दुकानदार बहुत से रोशन सितारे बेचने को लाए हैं, आप देखो तो इन्हें क्या क्या इशारे बेचने को।
0: क्या कहने क्या कहने, बहुत शुक्रिया हमीद साहब।
1: ये आप देखता था इसकी जी का, आपने हमने शहरों पे बात की, देखिए मैंने कितने उस्तादों को कितने सीक्वेंस के साथ उनको शामिल किया, वहाँ पे आ गए हैं हमारी किताब इस उस्ताद पे जा पड़ी है।
0: जनाब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आपने प्रोग्राम की खूबसूरती में और इजाफा किया।
1: इंशाल्लाह बात होती रहेगी, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, साधो आजाद रहें
0: जनाब।
1: अल्लाह हाफिज़।
0: खुदा हाफिज़।

जॉन कहते हैं ना कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रमज है, जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता।

आपके पैगाम शामिल करेंगे जो आपने फेसबुक पर अरसाल किए हैं, और टेलीफोन कॉल्स भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद।

समीन शायर किसी भी माशरे को जगाने वाला होता है, वो एक गैर मामूली शख्स होता है, वो कोई आम इंसान नहीं होता। और शायर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो सच्चा होता है, उसकी रूह तक सच्चाई होती है। तो अब हम अगर ये कह दें कि कोई शायर कम अच्छा था, तो आप यकीन जानिए कि उस शायर की सारी ज़िंदगी उस काम में गुजर जाती है जो काम हम तक पहुंचता है। वो कहते हैं ना कि जो खुलूस होता है वो अनमोल होता है।

और फिर आप जानते हैं कि हर चीज़ के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। किसी चीज़ के किसी एक पहलू पर गौर खौज किया जाए तो उसका अलग नज़र दौड़ाई जाए तो यकीनन वो काफ़ी मुख्तलिफ होता है। हम जानते हैं और हम मानते हैं कि शायर मोहब्बतें आम करने वाला होता है, और जो मोहब्बतें आम करता है वो आम नहीं होता। इस कायनात की सबसे बड़ी सच्चाई मोहब्बत है। ये पूरी दुनिया भी तो खुदा ने मोहब्बत ने बनाई है। खुदा का सबसे बड़ा तारुफ क्या है? खुदा वो है जो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है।

और फिर जब इंसान किसी एक के लिए जीता है तो क्या ही कहने। अदीम हाशमी कहते हैं कि तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए, तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए।

कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए।

तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए।

राहों में ही मिले थे हम, राहें नसीब बन गईं। वो भी न अपने घर गया, हम भी न अपने घर गए।

शेर सुनिए। क्या कहने, वो कहते हैं कि बारिश वसल वो हुई सारा गुबार धुल गया, बारिश वसल वो हुई सारा गुबार धुल गया, वो भी निखर निखर गया, हम भी निखर निखर गए।

उसके सुलूक पर अधीम अपनी हयात मौत है, वो जो मिला तो जी उठे, वो ना मिला तो मर गए।

उसके सुलूक पर अधीम। अपनी हयात तो मौत है, वो जो मिला तो जी उठे, वो ना मिला तो मर गए।

उम्मीद टूट जाए तो जिंदगी सजा बन जाती है। लेकिन इंसान उम्मीद टूटने ही क्यों दे,

इंसान कभी कभार भूल जाता है कि इंसान का कुछ भी नहीं है। इंसान तो खुद बेबस है। इतना बेबस के बस कुछ चीजें इंसान की नहीं होती, वक्त की होती हैं। और वक्त उन्हें अपने साथ ले जाता है। तो जनाब, चीज जिसकी थी उसके साथ चली गई। इसी का नाम जिंदगी है।

साइन आपके मैसेजेस, आपके पैगाम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। फिजा हमीद हैं हमारे साथ, प्रोग्राम को पसंद किया और कुछ हमारे बारे में लिखा है। फिजा बहुत शुक्रिया। गोया आप हमें पहले से जानती हैं। उसके बाद जी हमें FM 101 चैनल पाकिस्तान पे फेसबुक पेज, उस पर हमें पैगाम भेजा है आर के मुगल साहब ने। एक ट्रैक की फरमाइश की है, हम आपसे माजर चाहेंगे। आप कॉल कीजिए ना, आप कोई पैगाम दीजिए। बहरहाल आपने पैगाम भेजा, आपका बहुत शुक्रिया। ज़िया अंजुम साहब के लिए आपका सलाम भी है, और उसके बाद आप कहते हैं कि उनको शिफा मिले। हाँ जी बिल्कुल, उनके लिए हम सब दुआ करेंगे। जुगनू जूनियर ये हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई। अरे प्यारे भाई आपने लिखना था, आपने प्यारे भाई लिख दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। सत बिस्मिल्लाह जी आयनू, वेलकम टू द शो। अच्छा, सदा हंसते मुस्कुराते रहें, चहचहाते खिलखिलाते रहें, मोहम्मद इकबाल मुगल फ्रॉम अंदरून लोहारी गेट लाहौर। अच्छा जूनियर जी, आपसे छोटी सी बात करना है कि या तो जो प्यारे है उसको प्यारे कर दीजिए, या फिर लोहारी को लोहाड़ी कर दीजिए। सही है। एम मेरी गलती, कोई नाराज नहीं होएगा, ठीक हैगा। आगे जनाब हम आगे बढ़ते हैं कि ताहिर अजीज़ हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रदर, विश यू गुड लक राहत बानो मुआज़म फ्रॉम रावलपिंडी। जी बहना बहुत शुक्रिया। दुआ है हमारे साथ, मुझे एक इंसान को भूल जाने का तरीक़ा बता दीजिए। अच्छा और सानू अगर आंधा हो तो सानू दस दियो। लेकिन हम कहते हैं ना कि रस्म उल्फत ही, किसी शायर ने कहा था, रस्म उल्फत ही इजाज़त नहीं देती, वरना हम भी ऐसा तुझे भूलें कि सदा याद रहे। तो मेरे ख़्याल में भूल जाने का एक तरीक़ाकार ये भी है कि जुदा हुए हैं बहुत लोग, नासिर काज़मी ने कहा था ना कि जुदा हुए हैं बहुत लोग, एक तुम भी सही, अब इतनी बात पे क्या ज़िंदगी हराम करें। तो बहरहाल बहना आपने मैसेज किया, आपका बहुत शुक्रिया। हमीद गुल साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम वेलकम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सलामत रहें हमेशा। और उसके बाद आपने एक दिल बनाया है जी। वो अब्बास ताबिश ने कहा था ना कि ये जो है फूल हथेली पे, इसे फूल ना जान, मेरा दिल जिस्म से बाहर भी तो हो सकता है। अच्छा जनाब, एक ऑनलाइन स्टोर है, उनकी तरफ से मैसेज मौसूल हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम मोज तबा ब्रदर,
जनाब मेरा नाम है मुज्तबा। मुज्तबा माने चुना हुआ।

सलीम हनीफ साहब हैं हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम सलीम हनीफ फ्रॉम लाहौर। जनाब बहुत शुक्रिया। जुगनू जी फिर से आ गए और कहते हैं कि आगाज़ आम था मगर अंजाम मुनफरिद, जो तेरे नाम हो गई वो शाम मुनफरिद। जनाब आर के मुग़ल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको फर्स्ट टाइम सरगोधा से सुन रही हूँ, माशाल्लाह, क्या ख्याल है? दुआ ने फिर से मैसेज किया, कहते

0: हर शख्स शजर लगता है।
1: आए हाय।
0: इस पर चलते हुए सोचा था कि लौट आऊंगा, अब वो रास्ता भी मुझे शहर बदर लगता है। मुझसे तो दिल भी मोहब्बत में नहीं खर्च हुआ, तुम तो कहते थे कि इस काम में घर लगता है। वक्त लफ्जों से बनाई हुई चादर जैसा, वो लेता हूँ तो सब खाबे हुनर लगता है। और मकता है, क्या कमाल का शेर कहा।
1: हाय हाय।
0: एक मुद्दत से मेरी मां नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है।
1: हाय
0: हाय। ये अजब साफ से रुखसत है कि डर लगता है, शहर का शहर मुझे
1: रखता। मुनव्वर राना ने कहा था ना, हाशमी साहब, मुनव्वर राना ने कहा था ना कि खुदा ने ये सिफत दुनिया की हर औरत में रखी है कि माँ पागल भी हो जाए तो बच्चे याद रहते हैं।
0: क्या बात है, क्या माँ की जो ममता है ना, तो वो तो अल्लाह ताला की एक बस वज़ीयत की हुई चीज है। जिस तरह वो अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, आपने भी जिक्र किया, वो 70 माओं से ज्यादा हमें प्यार करता है। तो माँ की ममता तो कभी नहीं मरती, चाहे वो हमारी नजरों से उजल भी हो जाए।
1: और मुनव्वर राना का ही एक शेर है कि मुनव्वर माँ के आगे तुम कभी खुलकर नहीं रोना। मुनव्वर राना कहते हैं कि मुनव्वर माँ के आगे तुम कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। मुनव्वर माँ के आगे तुम कभी खुलकर नहीं रोना, जहाँ बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती।
0: क्या कमाल की शायरी।
1: और एक खाकसार का भी शेर सुन लीजिए इसी ज़िम्न में, कि जिसके होंठों पे,
0: आप भी शायरी करते हैं, कताल छपी आपकी कोई।
1: सुनिए ना, वो कहते हैं कि जरा शेर सुनिए, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम ऑन एयर हम नहीं कह सकते। बहरहाल सुनिए जनाब, के जिसके होंठों पे मोहब्बत की अजां होती है, हाँ वो माँ होती है। जिसके होंठों पे मोहब्बत की अजां होती है, हाँ वो माँ होती है, माँ होती है, माँ होती है।
0: क्या कहने, क्या कहने।
1: तो जनाब आप प्रोग्राम में, जनाब जनाब आप प्रोग्राम में,
0: आपका कोई मजबूरा कलाम छपा है।
1: काश मैं आपको बता पाता, काश होता, शायद ना।
0: मैं आपके पेज पे आऊंगा तो शायद पता लग जाए।
1: जनाब
0: मैं मार्केट से भी पूछूंगा, अगर आपकी किताब आई हुई हो तो।
1: जनाब बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में, हाशमी साहब आप प्रोग्राम में शामिल हुए।
0: आपका दुआओं में याद रखें, और आज हबीबपुर साहब ने काफी डिटेल में गुफ्तगू की, इस वाजा का भी जिक्र किया।
1: जी हाँ, बहुत ही फयाजी का मुजाहरा किया उन्होंने।
0: किताब मैंने बहरहाल मुझे लाहौर में नहीं मिली, मैंने पूरा उर्दू गुजार छाल मारा, मुझे उनकी किताब नहीं मिली। बहरहाल
1: यानी आप यूँ कह सकते हैं कि आप उनकी किताब की ताब नहीं ला सके, है ना। तो बहरहाल वो यकीनन बहुत अच्छे शायर हैं, वो अच्छे शायर हैं और अच्छे इंसान हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो हम सबके लिए दुआ करते हैं। हाशमी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया।
0: दुआओं में याद रखें।
1: जनाब।

0: कुछ नाम कहिए जनाब।
1: हेलो इस्तवा भाई, आपका शोर सुन रहा हूँ यार, सगल में भी बात कर रहा हूँ कराची से, गलत चलनी वाला
0: जनाब
1: ऑनलाइन स्टोर वाला यार, शादी शादी तो मुझे आती जाती है, ये नहीं खास बोलना पड़ती है कि मैं सुन रहा हूँ, मुझे सुनना अच्छा लगता है।
0: बहुत शुक्रिया।
1: और आपका शो सुन रहा हूँ, आपका शो आप अच्छा कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है आपका शो, आप बोल रहे हैं,
0: बहुत शुक्रिया। अच्छा तो नाम लिख देते हैं इस नाम में। आपका नाम क्या है?

तो जनाब, उसके बाद आपके पैगामात का सिलसिला जहाँ से टूटा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन स्टोर का एक बार फिर पैगाम कहते हैं कि मेरी जानिब से डॉक्टर शफीक इस्लामाबाद वाली निदा, मिस रियाज इज्जत कॉलोनी वाली, ढेर सारा प्यार, और मेरे दोस्त जमील साहब, सुहेल साहब, राहिल साहब को सलाम सलाम पेश किया आपने। जी, आपका सलाम पहुंच गया। दुआ कहती हैं, सर क्या आपका मज़मून उर्दू था? ना जी, खुशकिस्मती जानी है या बदकिस्मती जानी है, हमारा मज़मून अंग्रेज़ी है और था और है और रहेगा। दुआ कहती हैं कि तकलीफ़ ते यादें भूल जाना चाहती हूँ। अच्छा, फिर से भूल जाना चाहती हैं आप? ठीक है जी, हम दुआ करेंगे आपके लिए। दुआ साइन प्रोग्राम अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हमारा और आपका साथ चंद दकीकों का मेहमान है।

हामिद गुल साहब ने एक शेर लिख भेजा है, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ, मगर ये इश्क जो कमबख्त ठहरा। हाय

और फिर हमीद गुल साहब ने फेसबुक पे पैगाम भेजा है, एक शेर लिखा है, वो कहते हैं कि नाम में उसकी हाँ होती है, माँ तो यारो माँ होती है।

किसी शायर ने कहा था कि चलती फिरती हुई आंखों से अजां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी है, माँ देखी है।

अब बात चल निकली है माँ की, तो कौन है जो इस कैफियत से बाहर निकलना चाहेगा? खुदा की कसम नहीं, हम चाहते हैं कि वक्त थम जाए, जिंदगी रुक जाए। और जिंदगी की आखिरी सांस तक ये जिक्र चलता रहे। माँ तो माँ होती है,

0: जनाब, हम एक कॉलर को शामिल करेंगे और इस उम्मीद के साथ कि अब जो बात होगी वो माँ के हवाले से ही बात होगी। अगर आप इस बात पर कायम हैं, हमसे वादा करते हैं, तो हम आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
1: कैसे
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: हैं मुस्तफा भाई?
0: ठीक हूँ जनाब।
1: रावलपिंडी,
0: जनाब
1: बहुत खूबसूरत प्रोग्राम आपका सुन रहा था। इस वक्त अकेला तन्हाई में,
0: जनाब
1: और एक बात नहीं रोक पाई, आपने जब माँ का जिक्र छेड़ा तो मैंने चाहा कि आपको कॉल करूं।
0: शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने माँ की शान बयान की है। वो अपार ताबिश था, कहते हैं ना कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश।
0: हाय हाय।
1: मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है,
0: वो
1: तो
0: इसी एतबार से ना एक शेर है कि किसी ने कहा था कि जब भी कश्ती मेरी सैलाब में आ जाती है, माँ दुआ करती हुई ख्वाब में आ जाती है। खुदा सबकी माँओं को सलामत रखे।
1: मेरी आंखें नम हो गई है, तो माजर के साथ मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। अगर जितने लोग सुन रहे हैं,
0: इशाद
1: 2 दिन पहले मेरी वालदा साहबा, वो बुजुर्गी की आलमत चली चली, वो बैसाखियों के जरिए चलती है, तो इसी ऊंची जगह से वो उसका पैर फिर गया, तो वो गिरी है, तो उसकी बाजू जो है फ्रैक्चर हो चुकी है।
0: अल्लाह खैर करे।
1: तो अभी उनको वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, वो पट्टी वगैरह मरहम कर रहे हैं डॉक्टर वगैरह।
0: हम दुआ करेंगे।
1: सभी सुनने वालों से गुजारिश है कि मेरी वालदा के लिए स्पेशली दुआ कीजिएगा।
0: हाय हाय।
1: शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए, मेरी वालदा साहब ऐसे ही आप हो जाए।
0: हम उनके लिए दुआ करेंगे।
1: अल्लाह ताला जितनी जितनी सुनने वालों की वालदा हयात है, अल्लाह ताला सबका साया अपनी वालदा का उनका अपने सरों पे कायम और दायम रखे। ये बहुत खुश नसीब लोग होते हैं।
0: जनाब हम बहुत दुआ करेंगे उनके लिए।
1: इनके वालदैन हयात हैं और वो अपने वालदैन के साए में हैं।
0: और वो लोग कितने
1: बहुत
0: बदनसीब होते हैं जो अपनी माँ को भूल जाते हैं। किसी शायर ने कहा था ना कि शहर में आके पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। तो बहरहाल हम आपकी अम्मा जी के लिए दुआ करेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: वालेकुम अस्सलाम।

वो किसी ने कहा था ना कि ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है।

लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। तो जनाब हम कहते हैं कि दुनिया अगर रूठती है तो रूठ जाए, बस माँ राजी रहे और वो राजी रहे जो हमसे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है।

इस खाकसार की लिखी हुई एक नज़्म माँ के उन्वान पर। और ये नज़्म बरसों पहले FM 101 के ऑफिशियल पेज पर आवेज़ा हो चुकी है। आज वो कैफियत है तो बात कुछ यूं है कि जो खुदावंद की उल्फत का मकां है, जो खुदावंद की उल्फत का मकां है, माँ है, जिसके कदमों में बुलंदी जिना है, माँ है। गम आलाम के दरिया के थपेड़े खाकर, जिसके होंठों पे शिकायत न फुगा है, माँ है। नफ़रतों और मसाइब से भरी दुनिया में जो मोहब्बत का सहीफा है, अज़ा है, माँ है। जिस तरफ जाओ खसारे ही खसारे होंगे, एक ही हजरत इंसान की अमां है, माँ है। मौजज़ात और करामात खुदावंती का चश्मा जिस हस्ती की सूरत में रवा है, माँ है। इसके हिस्से में है सदियों की मुसाफत, लेकिन जिसके सदक़े में मोहब्बत भी जवां है, माँ है। बारहा शुक्र खुदा करने की नीयत लेकर माँ कहा और मुकर्रर कहा, माँ है, माँ है। कौन कहता है, कौन कहता है खुदा हमसे छुपा बैठा है, जिसके चेहरे पे खुदा खुद भी आया है, माँ है। जो शायरी को समझते हैं वो आखिर में जो काफिया है उस पे आपसे माज़रत चाहूँगा। आसमां वाले के दो रूप है मेरे घर में, मुज्तबा खुश हूँ के पास अपने कुरान है, माँ है। सामीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम तक पहुँचा। अपने मेज़बान मुज्तबा हैदर को दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने वफा की तो अगली जुमेरात और जुमे के बीच की जो रात है, शब जुमा, आप ही खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह निगहबान।